कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो इंडिया चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि एफएम रेनबो इंडिया पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं। प्रातः 6 बजे आपके साथ रहेंगी नेहा बेनवाल सुप्रभात कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आएंगे निखिल 7 बजे।

9 बजे निखिल कुमार के साथ आप सुन सकते हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। दस बजे आकाशवाणी से आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम, आपके साथ रहेंगी पूजा आनंद।

एक बजे आप सुनेंगे रेडियो हेल्पलाइन, आपके साथ होंगी बबीता त्रिपाठी। दो बजे का कार्यक्रम आशियाना लेकर आएंगे रंजन अरनेजा।

रेडियो डॉक्टर 3 बजे के इस कार्यक्रम का विषय है नेत्रदान स्पेशल ऑन आई डोनेशन फोर्टनाइट। आपके साथ रहेंगी सुषमा शर्मा। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना, युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूती देने पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने अधिक मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को रोकना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है सुप्रभात, मेरा नाम है नेहा। सुबह के 6 बज चुके हैं और इस एक घंटे में हम और आप मिलकर करेंगे जिंदगी की बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हम किसी और के साथ नहीं कर पाते। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जितनी भी जिंदगी की बातें होती है समेट कर ले आती हूँ और जब जब शो होता है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह हो जाती हूँ। अब इस सुबह के बारे में अगर बात करें तो सुबह का वक्त कितना खास होता है ना? चारों ओर एक नई ताजगी, वातावरण में एक नई ऊर्जा और मन में एक नई शुरुआत का एहसास हमारे होता है। हर सवेरा हमें एक छोटा सा अवसर देता है कल से बेहतर आज को बनाने का। इसीलिए सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नई उम्मीदों और नए संकल्पों की शुरुआत भी है। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए अपने आज के सकारात्मक ऊर्जा से भरे और मुस्कान से भरे दिन को हम यहीं शुरू करते हैं प्यारे से गीत के साथ और बहुत

बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर लोग प्यार क्यों करते हैं भाई, ऐसी क्या ज़रूरत है कि प्यार करना पड़ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत यह एहसास है और इसको ज़रूर हर किसी को अनुभव ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर करना चाहिए। और अगर थोड़ा बात करें इस विषय पर कि मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, प्यार आखिर क्या है, क्या बला है ये, तो शायद इन शब्दों की कोई एक परिभाषा तो नहीं है मेरे दोस्त। मोहब्बत वो एहसास है जिसमें हमें किसी की खुशी अपनी खुशी लगने लगती है, और इश्क वो जुनून है जिसमें किसी का ख्याल अपनी खामोशियों में भी मौजूद रहता है, और प्यार शायद वो सुकून है जिसमें किसी के साथ होने के लिए हर बार शब्दों की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती। प्यार सिर्फ किसी को चाहना नहीं है, प्यार किसी को समझना, उसकी इज्जत करना, उसके होने की कदर करना और उसके साथ रहते हुए भी खुद को बेहतर इंसान बनाना है। कभी मोहब्बत हमें हंसाती है तो कभी यही मोहब्बत हमें बहुत रुलाती है, कभी हमें तोड़ देती है और कभी यही एहसास हमें खुद से फिर मिलवा देता है। शायद इसीलिए प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि ये हमें सिर्फ किसी और के करीब नहीं लाता बल्कि हमें अपने दिल के करीब भी लेकर आता है। तो प्यार का ये जो खूबसूरत एहसास है, मैं चाहूँगी कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ या फिर खुद के साथ ज़रूर आए और उसको हम महसूस करें।

0: सुबह के 6:22 लीजिए 23 मिनट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और कार्यक्रम सुप्रभात में आज मैं हूँ नेहा, आपके साथ जिंदगी से जुड़ी बातें हम करते हैं इस कार्यक्रम में। और अब वक्त आ गया है छोटे से अंतराल का, आप कहीं ना जाए, मोहब्बत की बातें हो रही हैं तो मोहब्बत भरे एहसास के साथ कुछ ही देर बाद फिर लौटेंगे। गीत संगीत होगा और बहुत सी बातें होंगी सिर्फ आपके साथ प्रोग्राम सुप्रभात में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: खेतों से

0: आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सुबह के 6:30 और ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी चोरी चोरी, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। आप सुन रहे हैं सुप्रभात, मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। साथियों, व्हेन लाइफ ब्रिंग्स रीजंस फॉर सोरो, आंसर विद इवन मोर रीजंस टू स्माइल, है ना, काम की बात है ना। अब मुस्कुराने की वजह तो हमें जरूर ढूंढनी चाहिए। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। कभी कोई दिन बेवजह भारी सा लगने लगता है, तो कभी कोई बात भीतर तक उतर जाती है, और कभी बस मन करता है कि आज किसी से कुछ ना कहें, थोड़ी देर बस शांत बैठें, कोई बात नहीं करनी। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि मुझे किसी के सामने भी नहीं जाना। लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि उदासी के बीच भी कोई छोटी सी बात मुस्कुराने की वजह बन जाती है। एक प्यारा सा मैसेज, किसी की आवाज, चाय का एक अच्छा सा कप और सुबह की धूप का यूं ही चेहरे पर पड़ जाना और आपका मुस्कुरा देना। हर दिन खुशियों से भरा हो जरूरी तो नहीं है, बस इतना अच्छा है कि हर दिन में खुशी हमें मिल जाए और कोई छोटी छोटी सी वजह हमें मिल जाए जिसे हम ये कहें देख कर के, भाई मुस्कुराने के लिए मेरे पास कोई ना कोई वजह।

0: भाई मुझे लगता है ये एक लौती ऐसी बीमारी है, मैं चाहूंगी कि सबको होनी चाहिए। और कैसा इश्क आपको होना चाहिए, कैसी मोहब्बत आपको होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा एड ब्रेक है और उसके बाद लौट कर आते हैं प्रोग्राम सुप्रभात में। मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

6:43 बाय द रेनबो क्लॉक और सुप्रभात में बातें हो रही हैं जिंदगी के बारे में, और जिंदगी में प्यार बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है जिसमें खुशियां भी होती हैं, गम भी होता है, और इट्स लाइक खिचड़ी, यू नो. आपको लगेगा क्या बात करी है नेहा ने, भाई खिचड़ी की तरह होती है, उसमें सारे स्वाद होते हैं और कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि भाई हम प्यार में हैं, है कि नहीं. अब इतना नहीं सोचना कि हमने गलत किया या सही किया, अब जो किया बहुत बढ़िया किया. लेकिन जब भी प्यार करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूं कि तुम्हें जो मोहब्बत मिले वो सुकून वाली मोहब्बत मिले, तुम्हें ऐसी मोहब्बत मिले जहां तुम्हें सुना भी जाए और समझा भी जाए, जहां प्यार जताने के लिए बड़े वादों की नहीं छोटी छोटी परवाह की जरूरत हो, जहां साथ में सुकून हो और बातों में अपनापन हो, और रिश्ते में इतना भरोसा हो कि दिल को हर पल कुछ खोने का डर न रहे. ऐसी मोहब्बत जो जिंदगी को मुश्किल नहीं, थोड़ा और खूबसूरत

6:54 बाय द रेनबो क्लॉक और अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। और आपको ये बता दें कि अगले घंटे और उसके बाद कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे, तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक सुबह 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार। आपको अवगत कराएंगे हम कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके बाद 7 से 8 के बीच में प्रोग्राम रहेगा गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का पहला घंटा। निखिल कुमार इस कार्यक्रम में आज आपके साथ रहेंगे, और मैं नेहा उसके बाद यानी कि 8 से 9 के बीच में समाचार

समाचारों के साथ साथ जानकारियों का पिटारा लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में आपके साथ जुड़ जाऊंगी और फिर 9 से 10 के बीच में फिर से होंगे समाचार और उसके बाद आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने और साथियों ऐसे ही आगे भी हर घंटे कार्यक्रमों का सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा। रोजाना जैसे होता है वैसे ही आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण चलता रहेगा। फिलहाल 6:55 हो गए हैं सुबह के और मैं नेहा आपसे अनुमति लेती हूं और चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत आपकी ओर आ रहा है श्रेया घोषाल और अभिजीत भट्टाचार्य की मधुर मधुर आवाजों में फ्रॉम द मूवी बेशरम। और आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और हाँ आकाशवाणी दिल्ली के साथ बने रहिएगा, यहां मिलती है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साथ में बहुत सारा एंटरटेनमेंट। नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा IFS के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना, युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को रोकना है। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के साथ तैनात शांति रक्षकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में इथियोपिया के एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने अधिक मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। और अंत में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। आज

भी आज के दिन भारत पोलो का विश्व विजेता बना था और वर्ष 1977 में आज के दिन सर एडमंड हिलेरी का सागर से हिमालय अभियान हल्दिया बंदरगाह से शुरू हुआ था। वर्ष 1980 में आज का दिन था जब जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। आपको बता दें कि वर्ष 1991 में आज के दिन ही बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था और वर्ष 1997 में मासूमा इफ्तिकार ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई थी। वर्ष 2001 में आज के दिन ही लंदन में ऑस्ट्रेलिया के जाने माने लेग स्पिनर शेन वॉन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने थे। कितनी खास बात है ये उनके लिए, हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी थी वो आज भी याद की जाती है। बहुत ही शानदार गेंदबाज रहे हैं। और श्रोताओं आपको बता दें कि वर्ष 2011 में आज के दिन ही श्रीलंका की सरकार ने देश में घोषित आपातकाल को 30 वर्ष के बाद वापस ले लिया था। तो ये थी ऐसी प्रमुख घटनाएं जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलियांस, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। एंजॉय कीजिए इस मस्ती भरे ट्रैक को।

हर्षित, तो आपको बता दें कि ओणम केरल का प्रमुख और प्रसिद्ध फसल उत्सव है, जिसे मुख्य रूप से मलयाली समुदाय बड़े उत्साह के साथ मनाता है। ये त्यौहार आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आता है, जो लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। फिलहाल ये मनाया जा रहा है। ओणम का संबंध राजा महाबली से माना जाता है, जिनके स्वागत में लोग अपने घरों को सजाते हैं। इस अवसर पर घरों के सामने फूलों से सुंदर पोक्कलम बनाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक ओण संध्या नामक विशेष भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें केले के पत्ते पर अनेक प्रकार प्रकार के शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं। ओणम के दौरान प्रसिद्ध वल्लम कली यानी नाव दौड़ और पारंपरिक नृत्य और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। जी हाँ, केरल में इस अवसर पर एक ऐसा माहौल होता है जो लगातार कई सारे उत्सवों को मनाए जाने का प्रतीक बन जाता है। और आपको इसकी खास बात बता दें, जो वल्लम काली है, ये माना जाता है कि बहुत पुरानी परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। फिलहाल दिल्ली का मौसम कुछ इस तरह से है कि भाई ये गाना तो आज के लिए बनता है, इसे आप सुने और एंजॉय करें इस मस्त वाले ट्रैक को, क्योंकि जिस तरह के हालात मैं देख रहा हूँ दिल्ली में, उसके हिसाब से भी ये गाना

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी का FM रेनबो 102.6। और शुभ आपको बता दें कि हम मना रहे हैं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, जो कि हर साल 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इसको मनाने की अगर हम इसकी पीछे की वजह की बात करें तो आपको बता दें कि इसका उद्देश्य है लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना, ताकि कॉर्निया की किसी भी बीमारी के कारण जो दृष्टिहीन लोगों को समस्या होती है, उस समस्या को दूर किया जा सके, उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान की जा सके। इस दौरान यानी कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जब मनाया जाता है तो अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से कई जागरूकता रैलियां निकाली जाती हैं, शिविर आयोजित होते हैं, पोस्टर अभियान लगाए जाते हैं, जनसभाएं होती हैं। और सबसे खास बात यही, किसी व्यक्ति को अगर कॉर्निया दान दे दिया जाता है तो उसके जीवन में रोशनी आ जाती है। यानी कि नेत्रदान से किसी भी व्यक्ति को उसकी आवश्यक आँखों के उपयोगी ऊतक, विशेषकर कॉर्निया की हम बात करते हैं, प्रत्यारोपित करके उस व्यक्ति को दृष्टि बहाल करने में मदद मिल सकती है। और ये ऐसा अभियान है जो लोगों में मानवता, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है। आप भी इस अभियान में भाग ले सकते हैं। यदि आप इस संबंध में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य

शुदा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त अक्षय निखिल के साथ में। और अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है नील आर्मस्ट्रांग की, जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी और परीक्षण पायलट थे, जिन्हें चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म अमेरिका के ओहायो के वेपाकोनेटा में हुआ था और बचपन से ही उन्हें उड़ान और विमानन में रुचि थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 16 साल की उम्र में ही उन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। जिस वक्त हम लोग 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा में होते हैं, उस समय उन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था और उन्होंने अमेरिकी नौसेना में पायलट के रूप में काम किया और कई युद्धों में भी भाग लिया और बाद में परीक्षण पायलट बने और फिर नासा के साथ जुड़ गए थे। वर्ष 1969 में उन्हें अपोलो 11 मिशन का कमांडर बनाया गया, जिसमें बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के साथ उन्हें इस मिशन पर भेजा गया था। 20 जुलाई 1969 को वो खास दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा और इतिहास रचा। इसके बाद बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे थे, लेकिन माइकल कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में ही रहे थे। और चंद्रमा पर उतरते समय आर्मस्ट्रांग ने ये बात कही थी, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट जियांट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी कि एक ऐसी घटना जिसने मानवीय इतिहास को बिल्कुल बदल करके रख दिया था। अपोलो 11 के दल ने चंद्रमा पर लगभग 21 घंटे बिताए और फिर वैज्ञानिक नमूने और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के पृथ्वी पर सकुशल लौट आए थे। और शो तो आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं हरिभाव उपाध्याय को, जो कि भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, पत्रकार और प्रमुख गांधीवादी नेताओं में से एक थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद उन्होंने राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार के प्रयास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए और पत्रकारिता के माध्यम से भी लोगों को कई सारे आंदोलन से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था। आज उनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम याद कर रहे हैं। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए रेनबो पर, एंजॉय कीजिए।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

हर्षित, तो आपको बता दें कि आज जयंती है विजयकांत की, जो कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता थे, और उनका मूल नाम था विजयराज अलगार स्वामी। उन्होंने 1979 में तमिल फिल्म एन्निकम एल्लामाई से अपने अभिनय की शुरुआत की और लगभग 154 फिल्मों में काम किया। पूलन विसरनाय, कैप्टन प्रभाकरम, चिन्ना गाउंडर, वन्ना थिपोल्ला और रमन्ना जैसी उनकी कई चर्चित फिल्में शामिल हैं। वर्ष 1991 की फिल्म कैप्टन प्रभाकरण के बाद उन्हें लोकप्रिय रूप से कैप्टन कहा जाने लगा था और वो राजनीतिक भी रहे, और 2005 में देशीय मोरोपोक्कु द्रविड़ कड़गम नामक राजनीतिक पार्टी की उन्होंने स्थापना की, और 2006 और फिर 2011 में तमिलनाडु विधानसभा में वो गए थे। उन्हें 2024 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और श्रोता, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं राजीव कपूर को। राजीव कपूर जी की आज जयंती है। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और कपूर परिवार के सदस्य थे। राजीव कपूर ने वर्ष 1983 में फिल्म एक जान है हम से अपने अभिनय की कर शुरुआत की। उसके बाद 1985 में उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मुख्य भूमिका निभाई और विशेष लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में भी काम किया और प्रेम ग्रंथ 1996 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने निर्देशन और निर्माण का काम किया था। और आपको बता दें कि 9 फरवरी 1921 को 58 वर्ष की आयु में ही मात्र उनका हृदयाघात के कारण निधन हो गया था। और उन्हें हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसी कल्ट फिल्म में अभिनय के लिए जाना जाता है जो आज भी खूब पसंद की जाती है, जिसे हम सभी 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली के नाम से जानते हैं। उन्हीं की एक फिल्म का गीत आपके लिए।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: हर्षिता, मैं लेता हूं फिलहाल कुछ देर के लिए आपसे अनुमति। आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ

भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यिंग के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को रोकना है। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के साथ तैनात शांति रक्षकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में इथियोपिया का एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। केरलम में आज उथरादम उत्सव मनाया जा रहा है। ये 10 दिन तक चलने वाले ओणम उत्सव का अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेजिक थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने अधिक मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। और अंत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना। ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 6 5 4 3 2 1 let's start the fun.

वही बात बिल्कुल ठीक है कि मौसम का जादू है कि मौसम कभी भी कुछ भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। अब देखिए, सुबह जब मैं स्टूडियो के लिए आ रही थी तो ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि बारिश होगी। हालांकि कल बारिश थी तो दिन में बारिश होने का जो अनुमान था वो तो था ही, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी तेज बारिश होगी कि एक दो घंटे में भाई साहब कितनी जबरदस्त बारिश हुई है। और अब देखिए आप, बाहर धूप निकल रही है, तो मौसम सच में बहुत जादू जानता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8 बज ही चुके हैं और अब हम बातें करेंगे दिल्ली एनसीआर की कुछ खास खबरों के बारे में। और मेरा नाम है नेहा, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। और अब क्योंकि मौसम के बारे में बात हमने शुरू की है, तो भाई जान ले कि आज का तापमान क्या रहने की संभावना है। तो फिलहाल दिल्ली का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। और क्योंकि जब धूप निकलती है और बारिश होती है और ये जो एक तालमेल बना रहता है तो इससे उमस बहुत हो जाती है, तो उससे आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें। और साथ ही जो हमारा मौसम विभाग है उन्होंने बहुत सारी एडवाइजरी जारी की हुई है, जैसे कि सड़कों पर जल भराव होगा भाई, फिसलन भी हो जाती है और विजिबिलिटी काफी लो हो जाती है। तो ऐसे में आप अगर अपने काम पर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा समय हाथ में लेकर चलें और सुरक्षा का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखें। आप वो सारी चीजें अपने साथ रखें जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि आपका छाता, आपका रेनकोट, और हाँ, बी वेरी केयरफुल अबाउट द फुटवेयर दैट यू आर वेयरिंग टुडे। आप लेदर वगैरह ना पहने क्योंकि वो फिर देखिए खराब हो जाता है जैसे ही पानी में पड़ता है। सो हैव समथिंग

जो वाटर फ्रेंडली हो और वाटर प्रूफ हो। इसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर जाता है, जैसे कि अंडरपास है, और साथ ही बिजली और पानी जैसी जो सेवाएं हैं वो भी बाधित हो सकती हैं जब इस तरह से तेज बारिश होती है। तो आप केयरफुल रहें, और साथ ही सड़क के साथ साथ रेल और हवाई यातायात में भी देरी की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आप हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, और साथ में अगर लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए तो डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई मौसम ऐसा हो रहा है, रास्ते रुक गए हैं, तो आप टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे। सो विद दिस वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्व्स जैसी भी सिचुएशन आती है। और हाँ, अगर आपको तुरंत जानकारी चाहिए कि क्या हो रहा है किस क्षेत्र में, तो आप आकाशवाणी दिल्ली के साथ बिल्कुल जुड़े रहें, हम आपको ट्रैफिक अपडेट भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा दिल्ली NCR में क्या हो रहा है वो भी हम आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और हाँ, म्यूजिक का हमेशा ही हमारे हर कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो चलिए एक अमेजिंग सा गाना यहाँ पर सुनते हैं फ्रॉम द फिल्म सरफरोश, क्या बात है, कुमार सानू अलका याग्निक की मधुर मधुर आवाजों में ये बहुत ही मैजिकल सा गाना सिर्फ आपके लिए ऑन द शो गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR विद मी नेहा।

सुबह के 8:21 हो गए हैं। बारिश का मजा लेते हुए आप पहुंच चुके होंगे अपने गंतव्य तक, आप अपने ऑफिस तक पहुंच गए हैं, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो भाई देखिए क्या कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिव रूट ज़रूर अपनाएं, इख्तियार करें, और साथ ही अपना टाइम थोड़ा सा अच्छे से बिताने के लिए आप आकाशवाणी पर ट्यून इन कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जूनियर और सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 29 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली के शिवाजी कॉलेज में किया जा रहा है, और 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में स्कूल, कॉलेज और क्लब स्तर की टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। तो अगर आप शिवाजी कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस इवेंट में आप अच्छे से पार्टिसिपेट करें और एंजॉय भी करें, और आकाशवाणी के साथ बने रहें। अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: भाई गुमसुम होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफएम रेनबो दिल्ली है ना, सुबह के 8:27 और 5 सेकंड आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सेकंड आवर मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा। अब देखिए कई हिस्सों में तो बारिश रुक गई है, मैं बाहर देख रही हूं तो आकाशवाणी के यहां तो बारिश फिलहाल नहीं है, धूप निकल रही है और बारिश रुक सी गई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर में जहां अभी भी बारिश हो रही है और कुछ देर पहले भी हो रही थी। जैसे कि हमारे पास कुछ देर पहले एक मैसेज आया था सोनिया त्यागी का दिल्ली द्वारका से, और उन्होंने बताया कि वहां बहुत तेज बारिश हो रही है। सो थैंक यू सोनिया त्यागी जी, आपने हमें इन्फॉर्म किया और ऐसे आप भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक अपडेट आप दूसरों तक शेयर करना चाहते हैं कि भाई कोई रास्ता ऐसा है जहां से निकलना मुश्किल है लेकिन आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट भी एक सजेशन के तौर पर है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर, ताकि हमारे माध्यम से हम बाकी सभी लिसनर्स को अलर्ट कर सकें। और अब फिलहाल वक्त है कुछ एड ब्रेक का, उसके बाद लौट कर आएंगे और आपको बताएंगे गुरुग्राम में क्या चल रहा है। आप कहीं ना जाएं, सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
7: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
6: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
7: हैं? इतनी जल्दी?
6: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

इट्स 8:30 बाय द रेनबो क्लॉक। और अब आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम ने आज 25 अगस्त यानी कि मंगलवार के लिए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ऐसे मौसम में जब इतनी बारिश है, और साथ ही वहाँ पर सड़कों की मरम्मत का काम भी करना है। तो ऐसे में जो हमारे प्राइवेट ऑफिसेज हैं, साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ तक कि स्कूल्स भी, वहाँ पर भी वर्क फ्रॉम होम का आज ऑर्डर जारी किया गया है। साथ ही बच्चों की जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो ये इंफॉर्मेशन है सभी गुरुग्राम वासियों की।

लिए या फिर जो दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे हैं किसी ना किसी काम से, तो आपके लिए थी ये इन्फॉर्मेशन। और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप आकाशवाणी दिल्ली के साथ बने रहें। अगला गाना जुबिन गर्ग की आवाज में, क्या बात है, जाने क्या चाहे मन बावरा।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

शायद बहुत से भाइयों ने कहा होगा मुझे बहने दे, मुझे बहने दे। हाँ, तो बहुत सारी बहने मिल गई और रक्षाबंधन का त्योहार हमारे जिंदगी में आ गया। हाँ, क्या बात है, देखा मैंने कैसे कनेक्शन बनाया गाने से बहने दे तक, अंग की बिंदी लगा दो और आपका देखो कैसे मतलब बदल जाता है। चलिए जोक सपाट, 8:45 हो गए हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार और रक्षाबंधन इज राउंड द कॉर्नर। बस फ्राइडे को हम ये बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और ऐसे में बहुत से हमारे लिसनर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्थान से दूसरी जगह जा

करते हैं, अपनी बहनों के पास जाते हैं या फिर बहनें अपने ब्रदर्स के पास जाती हैं, तो ऐसे में आपको रेल का सफर देखिए जरूर करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली और आसपास के स्टेशनों से कई विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इनमें अनारक्षित के साथ आरक्षित सुपर फास्ट विशेष ट्रेनें भी शामिल हैं। ये ट्रेनें दिल्ली को मेरठ, मुजफ्फरनगर, पानीपत, अंबाला, शामली, कानपुर, मथुरा, अलीगढ़, झांसी और खजुराहो जैसे कई शहरों से जोड़ रही हैं। तो अब मैं आपको हर ट्रेन के बारे में तो नहीं बताऊंगी, वो आपको रेलवे स्टेशन जाकर ही पता करना होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि राखी से एक दिन पहले यानी कि 27 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच ये अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग ट्रेन चल रही हैं। इनके समय क्या है, कौन सी ट्रेन है, क्या ट्रेन संख्या है, ये सारी बातें आप समय से पहले रेलवे स्टेशन पर जाकर जरूर आप जानकारी ले लें, और उसके बाद ये प्यारा सा बंधन आप सभी के जीवन में प्यारा सा फेस्टिवल मनाए आप, और बहुत सारी खुशियों के साथ भाई बहन का ये प्यार बना रहे। इसी के साथ एक प्यारा सा गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ, रूप कुमार राठौड़ की आवाज है भाई। मौसम जब इस तरह का हो जाए ना थोड़ा सा, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा स्लो है बट वेरी वेरी मेलोडियस एंड ब्यूटिफुल।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

सुबह के 8:54 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और अब मैं नेहा आपको बता दूं कि आप आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली पर सुनेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार होंगे, उसके बाद आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। निखिल इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं हमारे उन प्रोग्राम्स के बारे में जिनमें आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। तो दोपहर 1 बजे समाचारों के बाद रहेगा कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, इसमें आज का विषय रहेगा सस्टेनेबिलिटी डूज एंड डोंट्स। हमारी एक्सपर्ट होंगी प्राची गुंथी और सस्टेनेबिलिटी एंथुजियास्ट हैं आप, इस पर बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात मेरे श्रोताओं ये है कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये पुनः प्रसारित होगा, और आप कार्यक्रम के दौरान फोन और मैसेज ना करें। जो पहले बातचीत रिकॉर्ड हुई है उसके जरिए आप अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोपहर 3 से 4 के बीच में प्रोग्राम रहेगा रेडियो डॉक्टर, इसका सीधा प्रसारण आप सुनेंगे, जिसमें आज का विषय होगा स्पेशल प्रोग्राम ऑन आई डोनेशन फोर्टनाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। हमारी आज की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सरिता बेरी, डायरेक्टर प्रोफेसर ऑप्थमोलॉजी डिपार्टमेंट नई दिल्ली से। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने और अपनी जानकारी में आप जरूर जरूर कुछ ना कुछ एडिशन करें। साथ ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी यहां पर फोन और मैसेज के माध्यम से शेयर करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, निखिल आ चुके हैं स्टूडियो में, अब मैं ये सीट और ये माइक उनके हवाले करती हूं। आप सभी

ना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन रहे और आने वाले त्योहार रक्षाबंधन की मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार और ढेर सारी खुशियों के साथ इस त्योहार को आप मनाएं और हमारे जीवन में हमारे भाई और हमारी बहनों का जो महत्व है उसको एक बार फिर से हम जीवित करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ नेहा को दे अनुमति, नमस्कार, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है।

हैं। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों को विदेश निर्यात का रास्ता खुल गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ बन चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग ई के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व की सभी संभावित रास्तों को रोकना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। केरल में आज उत्तरादम उत्सव मनाया जा रहा है। ये 10 दिन तक चलने वाला ओणम का अंतिम दिन है और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। और एक ख़ास बात आप तक पहुंचा दूं, वो ये है कि भारत का डिजिटल भुगतान यानी कि यूपीआई अपने देश में भुगतान क्रांति का एक बड़ा चेहरा बन चुका है। आज के दिन इसने अपने संचालन के 10 साल पूरे कर लिए हैं। और इस ऐतिहासिक सफ़र की अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि यूपीआई ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आज के समय में ये नागरिकों में सुरक्षित और रियल टाइम भुगतान का बहुत ही अधिक लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। और ख़ासतौर पर ये है कि नकदी पर जो हमारी पहले निर्भरता रहती थी आज से 8-10 साल पहले, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। जी हाँ, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में यूपीआई की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसने बैंक खाते में पैसे भेजना आसान बनाया है, किसी को पैसे लेने देने के लिए बड़ा ही आसान काम कर दिया है। व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यापारी, दोनों तरह के भुगतान इसमें हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसे 24 घंटे सातों दिन यानी कि कभी भी कहीं भी किसी भी समय भुगतान कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके अगर आंकड़ों की हम बात करें तो आप ये समझिए कि 2016-17 में यूपीआई के जरिए 1,78,00,000 लेन देन किए गए थे, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गए हैं। यानी कि 10 साल में लेन देन की संख्या करीब 13,000 गुना बढ़ी है। और इस अवधि में लेन देन का मूल्य 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 314,00,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि इसमें भी 4,000 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। और हर दिन नए कीर्तिमान इसमें स्थापित हो रहे हैं। लगातार हर महीने ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जहां पर 2016-17 में सिर्फ 44 बैंक यूपीआई से जुड़े थे, अब वही ये संख्या 2025-26 में 703 हो गई है। यानी दुकानदारों, कारोबारियों और आम व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान के माध्यम से एक भुगतान की व्यवस्था को इतना आसान बना दिया गया है कि आप कभी भी कहीं भी कोई भी सामान आराम से परचेज कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। और यूपीआई भारत के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव सहित 11 देशों में काम कर रहा है। और लगातार भारत इस विस्तार को करता ही जा रहा है।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

0: आप सुन रहे हैं दिल के पुराने नए पुराने FM रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जान।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल,
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

हर्षित, आपको बता दो, मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे? तो मेरे से ठीक बाद पूजा आनंद आपके साथ होंगे, वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर लेकर के 10 बजे से, और फिर 11 बजे से आप सुन पाएंगे बबीता त्रिपाठी को बॉलीवुड ट्रेल्स में, और पूजा आनंद एक बार फिर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लेकर के आएंगे प्ले इट कूल आपके लिए 12 बजे से, और फिर बबीता त्रिपाठी के साथ आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी डूज एंड डोंट, जिसमें एक्सपर्ट है प्राची गुंथी जो कि स्पेशलिस्ट हैं, और फिर आशियान आप सुन पाएंगे रंजन अरनेजा के साथ दिन में 2 बजे से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, हम लोग फिर मिलेंगे, आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर, बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: Okay, now that's my new favorite. Touch Me When We Are Dancing by the Carpenters. Hi, you with me, Pooja Anand, and we are bringing out those songs which you thought you had forgotten somewhere, somehow, and yet you get to listen to them once again only on the Matchless Music Hour, daily from 10 to 11 a.m.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में

0: जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
0: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल आइसलैंड के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन, निवेश प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को रोकना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। केरलम में आज उथरादम उत्सव मनाया जा रहा है। ये 10 दिन तक चलने वाले ओणम उत्सव का अंतिम दिन है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर ये समय है बीटी विद बीटी का यानी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ। तो ढेर सारी बॉलीवुड की अपडेट्स और बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए है ना तैयार। क्या है आपके फेवरेट स्टार्स की खबरें, कौन सी फिल्में आ रही हैं, कौन सी आने वाली हैं, उनकी क्या अपडेट्स बाहर आ गई हैं, इन सब के साथ साथ ढेर सारा डांस, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी बातें और हाँ बॉलीवुड सरताज कौन बनेगा आज। चलिए ठीक है, उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको बस बताती हूँ, लेकिन चीकी विकी कर लेते हैं उसके बाद।

चिगी विगी करिए, डांस करिए, मस्ती करिए, एंजॉय कीजिए, और साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि बॉलीवुड ट्रेल्स बनना है, बॉलीवुड ट्रेल्स में अगर बॉलीवुड सरताज बनना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं बातों में छुपा है आज के सवाल का जवाब, और उस सवाल का जवाब अगर आपने दे दिया तो बस बॉलीवुड सरताज बनने से आपको आपकी किस्मत नहीं रोक सकती है। वैसे किस्मत से आगे क्या है, लेकिन क्या बताएं, बॉलीवुड सरताज हम किसी को भी बना देते हैं, और क्या पता आज की आज आप ही लकी हो, आपको बॉलीवुड सरताज बनना हो तो बिल्कुल मिस मत करिएगा मौका। अगर बॉलीवुड सरताज नहीं भी बने तो आपका मैसेज तो जरूर ही शामिल होगा, अगर आपने उसी तरह से लिखा जैसा मैंने बोला है, यानी अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद भेज देना है। जो मैं नंबर बताऊंगी वो भी कब बताऊंगी, 11:30 बजे, तो उस नंबर पर अगर आपने भेज दिया तो आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा और आपका नाम शामिल जरूर होगा, और बॉलीवुड सरताज क्या पता आज आप ही बने और हमसे बात करने का आपको मौका मिले। और रही बात जवाब देने की, तो जवाब आपको सही अगर नहीं भी मालूम है ना, तो अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना है तो हो ही जाएगा आपका काम। लेकिन आपको बता दूं कि एंजॉय करते करते ये मत भूल जाइएगा कि अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर आ जाइए। और किस तरह से आज आप काम आ सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल एक अपील है जो मैं आपसे करना चाहूँगी और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि रक्तदान की एक अपील है, और अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। एक महिला मरीज है जिनके लिए 2 यूनिट रक्त की तत्काल आवश्यकता है, और स्थान कौन सा है, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धर्मशिला मार्ग, वसुंधरा इनक्लेव, डल्लूपुरा, न्यू दिल्ली, और यहाँ पर न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के सामने, ये जो सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो ये है। और अस्पताल के आसपास रहने वाले इच्छुक रक्तदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि आगे आकर रक्तदान कर मरीज की मदद करें, तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। कैसे, किस नंबर पर संपर्क करना है आपसे बता देती हूं, नंबर ध्यान से सुनिए, 8800444799, एक बार फिर से 8800444799। आपका रक्तदान किसी के जीवन की उम्मीद बन सकता है। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

देखिए सोने वाला माहौल भी नहीं है आज, आप सोए हैं या नहीं सोए हैं आपको फ्रेश जरूर महसूस होगा क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना हुआ पड़ा है दिल्ली एनसीआर का। और अभी मैं देख रही हूँ किस जगह पे, जब मैं घर से चली तो कोई बारिश नहीं थी और आकाशवाणी के बाहर आई तो पता चला यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले और पानी भरा हुआ था। मुझे वही लगा कि ये बारिश इतनी ज़्यादा, यहाँ इतना सारा पानी क्यों भरा हुआ है चारों तरफ, लेकिन पता चला कि बारिश हुई है। तो ये जो खेल है ना हमारे इंद्रदेव का, ये एंजॉय कीजिए। और फिलहाल आपको बता दूं फ्रेश महसूस कर ही रहे हैं तो आकाशवाणी रेनबो के साथ और ज्यादा इसके रंग में रंगिए और एंजॉय कीजिए। यहां पर बॉलीवुड की बातें हो रही हैं, बॉलीवुड सरताज बनने के लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना भी जरूरी है। 11:30 बजे आपके लिए सवाल जो आना है। चलिए आपको बता दूं कि थिएटर्स में क्या चल रहा है। थिएटर्स में वैसे 28 को एक मूवी रिलीज होने वाली थी, अगर आपको लग रहा हो कि वो मूवी आएगी या नहीं आएगी, अगर आपको नहीं बताओ तो बता देती हूँ कि नहीं आएगी। कौन सी मूवी की बात बता रही हूँ, जीवन बीमा योजना, ये मूवी आने वाली थी। ये कोई जीवन बीमा आपको करवाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, कहीं भाग मत जाइएगा। आपको बता दूं जीवन बीमा योजना एक मूवी आ रही थी, इसमें अरशद वारसी डबल रोल में धमाल मचाने वाले हैं और पहली बार डबल रोल में आने वाले हैं, तो मुझे भी इंतज़ार था आखिर क्या करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, बस एक हफ्ते का, तो बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार आपको नहीं करना होगा। ये मूवी 28 अगस्त को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने डिसाइड किया है कि इसको थोड़ा सा टाल दिया जाए। अब किस लिए डिसाइड किया है ये तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन अब ये जरूर पता चल गया है कि 4 सितंबर को ये मूवी रिलीज होगी, यानी

लगभग एक हफ्ते ये मूवी टल गई है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना तो हम इंतजार कर ही लेंगे। डायरेक्टर अभिषेक डोगरा है और इसमें जो अरशद वारसी का रोल है वो डबल है, जीवन और भीमा क्या जबरदस्त कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर्स कर क्या रहे हैं ये देखने के लिए आपको 4 सितंबर का इंतजार करना ही होगा, हमें भी इंतजार रहेगा। वैसे इसका एक नया पोस्टर भी आया है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ये आकाशवाणी है, यहाँ पर सुनाई देता है, दिखाई नहीं है।

जब मुझे बात बतानी होती है ना तो मुझे लगता है कि मैं ही गालूं फटाफट और उसके बाद आगे अपनी बात बताऊं। मेरे पास बातों का ना बड़ा पिटारा रहता है और बॉलीवुड रील्स में तो ना बॉलीवुड की बातें करने में बड़ा मजा ही आता है। और मुझे अभी पता चला है ना कि ब्रह्मास्त्र 2 आने वाली है, चर्चा गर्म है। अब चर्चा के साथ ये भी चर्चा गर्म है कि भाई रणबीर के अपोजिट होगी कौन। आलिया भट्ट तो बिल्कुल नहीं, मना ही कर दिया गया।

मतलब ऐसी खबर आई, मैंने तो नहीं मना किया, लेकिन हाँ उसके बाद खबर आई कि दीपिका पादुकोण हो सकती हैं इस मूवी में। अब खबर आ रही है कि वो भी इस मूवी में नहीं है, तो आखिर हैं कौन, होंगी कौन? तो जो उड़ती उड़ती खबर आई है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। और वो खबर है अभी सैयारा की, जो फेमस अभिनेत्री सैयारा से जिन्होंने बहुत नेम और फेम

हम तक पहुंच गई और जो बात मुझे पता चलती है मैं आपको चुपके से बता ही देती हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, आपको बहुत सारी खबरें ऐसे ही मिलती रहेंगी एडवांस में।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

सवाल पूछने के लिए एकदम मैं बेताब हूँ जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, लेकिन अभी कैसे, अभी तो थोड़ा सा टाइम बाकी है। उससे पहले अगर आपके लिए एक खबर बता दूं, आपके लिए खुशखबरी वाली खबर बता दूं तो कैसा रहेगा। वैसे आपके लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि आपके फेवरेट अजय देवगन एक मूवी की एक और मूवी की खबर आ रही है। यस, मोहनलाल की दृश्यम की जो फ्रेंचाइजी है ना, उसको ज़बरदस्त सफलता मिलती गई, इसका तीसरा पार्ट तक हिट हो गया और अब खबर ये है कि चौथा पार्ट भी बनेगा। भाई कंफर्म कर दिया है इसके प्रोड्यूसर एंटनी ने, और उन्होंने कंफर्म किया कि चौथी फिल्म पर काम चल रहा है और मोहनलाल इसमें लीड रोल में वापसी करेंगे। और ये तमिल फिल्म की बात कर रही हूँ, मतलब जो साउथ इंडियन इसका वर्जन है वो आएगा और साथ में हिंदी में तो आएगा ही आएगा। और उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि ये कन्फर्मेशन उनके दिल से आई है, तो प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा जल्दी, क्योंकि दिल की बातें जल्दी पूरी होती हैं। तो आप भी तो सुन रहे हैं ना,

आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। तो फिलहाल ये गाना सुनिए, मैं हूँ आपके साथ बबीता त्रिपाठी, शो चल रहा है बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, इसलिए कहते हैं इसे बीटी विद बीटी।

जतू चौथा तू और इस तरह से सो ऑन। फिलहाल आप सुन रहे हो बीटी विद बीटी और समय हो गया है आपके लिए एक सवाल पूछने का जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज और हमसे बात करने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं बने तो भी आप मैसेज जरूर कीजिए क्योंकि आपका नाम तो शामिल होगा ही। तो चलिए आपको जैसा मैंने कहा कि मेरी बातों को अगर फॉलो करेंगे तो ही नाम शामिल होगा। कैसे आपको आंसर देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना नाम, फिर उसके बाद अपने शहर का नाम, फिर आंसर देना है, बस इतनी सी बात। व्हाट्सएप मैसेज करके आंसर देना है और नंबर बताऊं उससे पहले सवाल तो बता दूं। सवाल है कि आने वाली एक मूवी जिसकी बात मैंने की और रिलीज डेट के लिए भी इंफॉर्मेशन जो चेंजेस आए थे वो बता दिए हैं और मूवी है जीवन बीमा योजना। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि इस मूवी में किस एक्टर का डबल रोल है, उस एक्टर का नाम, बस इतनी सी बात है। आपको व्हाट्सएप मैसेज करके भेजना है 9868107070 पर 9868107070। सबसे पहले अपना नाम, शहर का नाम, फिर ये नंबर। आंसर के बाद भाई ऑब्वियस सी बात है, सुन रहे हैं आप बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

अंगारों पर है अरमा किसके, उबलमा आई मीन अक्षय कुमार के। अक्षय कुमार इस वक्त बड़े ही मतलब जोश में पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो नए जॉनर का, नए कैरेक्टर वाला रोल, नए चैलेंज के साथ कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने लिखा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, विवान आहूजा ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने ही लिखा है। और अब बात कौन सी मूवी की कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मूवी समुख की, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। और अभिनेता ने कहा कि जैसा कहा उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके कैरेक्टर का नाम है विवान आहूजा। वैसे इतनी बात मायने नहीं रखती क्योंकि अब सवाल तो पूछा जा चुका है जिसका जवाब भी आपने देना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं आज के लिए बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। फिलहाल आपको बता दूँ, अक्षय कुमार ने उससे पहले भी कौन सी मूवी उनकी आने वाली है बता दूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है, उससे पहले जो मूवी आने वाली है उसके बारे में ही बताऊंगी, बस इस गाने के बाद बताऊंगी, इतनी भी जल्दी क्या है। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ।

0: देखिए मेरा भी कुछ कुछ दिल बड़ा ही है, छोटा नहीं है, इसलिए सवाल दोहरा देती हूँ। मेरठ से शिव कह रहे हैं कि मुझे लगा ना कि आप यही वाला सवाल पूछेंगी, और आपने वैसे वही वाले सवाल का जवाब दिया है, बट सवाल एग्जैक्टली वही नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। उस फिल्म में किसका डबल रोल है ये पूछा था मैंने शिव। उनके यहाँ लाइट चली गई थी, ऐसे आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार आप लेट ट्यून इन करते हैं, तो आपने भी शायद सवाल ना पूछ सब सुना हो कि आज बॉलीवुड सरताज बनने के लिए कौन सा सवाल पूछा गया था। तो एक बार दोहरा देती हूँ, अपकमिंग जीवन बीमा योजना में किस एक्टर का डबल रोल है, ये है आज का सवाल बॉलीवुड सरताज बनने के लिए, जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देना है 9868107070 पर। अगर नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा, और बॉलीवुड सरताज बनेंगे तो हमसे बात करने का मौका भी मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि अक्षय कुमार की कौन सी मूवी की बात मैं करने वाली थी, बात मैं करने वाली थी हैवान मूवी की, जिसमें सैफ अली खान भी उनके साथ होंगे, और इस मूवी का की खास बात यह है कि इसका ट्रेलर भी लॉन्च होने ही वाला है आज। अब चर्चाएं एक साथ गर्म है, ढेर सारी अपडेट्स आ रही हैं, अब ट्रेलर आएगा तो काफी कुछ और साफ हो जाएगा। सैफ अली खान के साथ लंबे दौर के बाद, लंबे टाइम के बाद जब अक्षय कुमार नजर आएंगे एक साथ, तो इस मूवी में क्या धमाल और कमाल होने वाला है ट्रेलर से कुछ पता लग जाएगा। और क्या पता लगेगा, बॉलीवुड सरताज आप सुनते, अरे बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुनते रहेंगे रेगुलरली ना, तो जरूर पता लगेगा। आप सुनते रहिए इस वक्त बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ। बॉलीवुड सरताज बनने के लिए ज्यादा टाइम का इंतजार नहीं है, फिलहाल आपको क्या करना है, आपको जवाब दे देना है, अगर अभी आप तक आपने नहीं दिया है तो। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और लौट कर आती हूँ।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी

0: नेपाल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

अजी बदलने तो जिसको जो बदलना है, हम तो जब भी बदलेंगे आपके फायदे के लिए ही बदलेंगे, मतलब अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ही बदलेंगे, ऐसा हमारा मानना है और हमारे जो लिसनर्स हैं वो सब भी ऐसा ही मानते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि बॉलीवुड सरताज बनने के लिए कोशिशें कितने लोगों ने की है, पता नहीं कितने लोगों ने की है, लेकिन जिन्होंने अपना नाम, अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखा है और आंसर तो सभी ने सही दिया है, उन सबका नाम मैं शामिल कर लेती हूँ जैसा मैंने वादा किया था। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं, कान्हा मेरठ से लिख रहे हैं, अरशद नहीं, ये अपना नाम पहले क्यों नहीं लिखा भाई, राशिद आपने कहाँ से लिखा है, जगतपुरी से, हरीश गौर मेरठ से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज भी ऐसा ही कुछ है, अपना नाम पहले नहीं लिखा है। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं, विजय कुमार कहाँ से लिख रहे हैं, ये कुछ लंबी जगह का नाम, कुछ कुनाली बिहार से, और अरुण सेन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं, बसंत तोमर मेरठ से लिख रहे हैं, दिनेश का मैसेज दिख रहा है, ये कहीं पर लंबा चौड़ी जगह लिखी हुई है, लास्ट में जाके दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली से ही कहीं से लिखा है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, सुकलाला बाला वेस्ट बंगाल से, और वाराणसी से, अंश सोनिया बिहार से,

ये वाराणसी अंश सोनिया विहार, ये समझ नहीं आया मुझे नाम इसमें कौन सा है। फिलहाल आपको बता दूं, जोया का मैसेज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया है, राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और अनूप साहू का मैसेज भी दिख रहा है, ये कासगंज से लिख रहे हैं, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, और कांठ से मोहम्मद फुरकान लिख रहे हैं, और अगला मैसेज दिख रहा है विनोद सोनी का मैना चौक बठिंडा से, और रोहतक से मिसेस धर्म भाटिया का मैसेज, और अगला मैसेज दिख रहा है मुझे खयाला से उमेश कुमार का, और अगला कोकिला अग्रवाल गाजियाबाद से लिख रहे हैं, लिख रही हैं राजीव कुमार मेरठ से लिख रहे हैं, गौतम कुमार समस्तीपुर बिहार से, और हर्षद वारसी, अच्छा ये इन्होंने आंसर देने की कोशिश की है। नेक्स्ट मैसेज छत्तीसगढ़ से दिख रहा है, और नाम समझ नहीं, नेताम नेताम भुवनेश्वर नेताम जगह का नाम है शायद, और अपना नाम कहाँ पे बीच में डाला है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यही गलती करते हैं जिससे नाम शामिल नहीं होता फिर हमें दोष देते हैं। दीपक कुमार का मैसेज आ रहा है, ये उत्तराखंड से मैसेज है, और न्यू दिल्ली से विष्णु का भी मैसेज दिख रहा है, और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है शालिनी का देहरादून से, मोकिद बिहार से लिख रहे हैं, और ऋतिक कुमार का भी मैसेज कहीं से तो आ रहा है, सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी दिल्ली से, और अगला मैसेज किसका है नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आपने कमाल कर दिया, अपना नाम अभी भी सबसे पहले नहीं लिखा है, शहर का नाम पहले नहीं लिखा, तो हम क्या करें, आपका नाम शामिल नहीं होगा, लेकिन हाँ अगली बार इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं बॉलीवुड सरताज को ढूंढने जाती हूँ, आप सब गाना एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए बीटी विद बीटी। बॉलीवुड सरताज बनना चाहते हैं तो नेटवर्क में जरूर रहेगा, क्या बताओ आप ही को कॉल जा रही हो, फटाफट उठाइएगा, बात करते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी रेनबो आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी। शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स यानी बीटी विद बीटी चल रहा है और ऐसे में जब समय हो गया है बॉलीवुड सरताज से मिलने का तो हम सब की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो क्या करें, बॉलीवुड सरताज को बुला लें, चलिए बुला ही लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: ऋतिक कुमार मैम। नमस्कार मैम।
0: ऋतिक कुमार कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार
1: जी, मैं शामली यूपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर और कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉलीवुड सरताज बनने के लिए और सही जवाब देने के लिए।
1: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत।
0: कैसा लग रहा है ऋतिक
1: जी? मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे सिलेक्ट किया है।
0: तो ऋतिक रोशन वाली फीलिंग आ रही है ऋतिक।
1: मुझे तो ये भी नहीं था कि मेरा नाम भी अनाउंस करोगे।
0: नहीं क्यों, ऐसा ऐसी उम्मीद आपको क्यों नहीं थी?
1: नहीं पहले वो मैंने अपना नाम नहीं लिखा था ना, आंसर भेज दिया और एड्रेस भेज दिया, नाम नहीं लिखा था, फिर दोबारा से नाम सेंड किया था मैंने।
0: देखा आपके जो ये अथक प्रयासों की वजह से मैं आप तक पहुंच पाई हूँ। आज बॉलीवुड सरताज ढूंढ कर लाई हूँ। तो चलिए ऋतिक आपको बहुत बहुत मुबारक। उससे पहले मैं दे देती हूँ, जब ऑन एयर भी आपसे एक बार सवाल दोहरा के आंसर ले लेती हूँ, क्योंकि ऑफ एयर तो ऑलरेडी ले चुकी हूँ, मैसेज के जरिए आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो चलिए पूछते हैं, आने वाली मूवी जीवन बीमा योजना में किस एक्टर का डबल रोल है? ये है आज का सवाल, आंसर आप बताइए।
1: जी अरशद वारसी इस फिल्म को मेंटेन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और ये मूवी 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इसके बारे में अपडेट मैं ऑलरेडी काफी कुछ दे चुकी हूँ। फिलहाल आपसे बात करते हैं, तो एक बार फिर से मुबारकबाद और कैसा लग रहा है? आपने बता ही दिया है, अब आप मुझे ये बताइए आप क्या करते हैं और क्या योजना है भविष्य की?
1: जी मैम मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने 12th के एग्जाम क्लियर किया अपने यूपी बोर्ड से ही।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, मेरा सपना तो एनडीए ज्वाइन करने का है।
0: बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और जो सपना देखिए उसको पूरा करिए, और पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत होती है, वो भी करिए। कर रहे हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल मैम, मैं लगा पढ़ाऊँ, अपने सब प्रयास कर रहा हूँ।
0: क्या क्या प्रयास कर रहे हैं आप?
1: जी अभी तो मैं एडमिशन लेना सोच रहा था देहरादून में एनडीए क्लासेस के लिए।
0: चलिए बहुत अच्छी
1: अभी
0: बात
1: मैं वहाँ पे
0: है, पूरी प्लानिंग कीजिए और जरूर अपने सपनों को साकार करिए। ठीक है अमित,
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए इसी तरह से दिल से दिल तक। ठीक है
1: जी मैम, बहुत समय हो गया सुनते हुए, बाय।
0: ओके बाय। तो ये थे अमित आज के बॉलीवुड सरताज और उसके बाद अब बात करते हैं, ये ऋतिक थे एक्चुअली, ऋतिक कुमार, और इनसे हमने बात की आज के बॉलीवुड सरताज। और इसी के साथ मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को इजाजत दीजिए, लौट कर आऊंगी जल्दी, आपसे मिलूंगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। फिलहाल प्ले इट कूल पूजा आनंद के साथ।

0: Okay, that was of course Billy Ray Cyrus with Achy Breaky Heart. But you know our number, 9868107070. A time when you can just sit back, relax. Because you know for the next 1 hour, I've got some amazing tracks lined up. Let's go in for a short break. We'll be back in just a couple of seconds.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: Okay, that's your favorite ABBA with Does Your Mother Know You're On? But at the moment, I got to take a short break. Stay close, stay tuned. We'll be back in just a couple of seconds.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: Well, heart by heart, if you're close to my heart, you'll stay close to the channel. The only place where you get to listen to some amazing Western music is Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. My name's Pooja Anand. This is the Play It Cool Show, a show meant totally and entirely for you. All you have to do is message us in the number that's close to your heart and I'll play it for you. 9868107070. 9868107070 is our number. Okay. Now the weekend's coming up. Yes, it's going to be a long weekend. Looking forward to Raksha Bandhan and celebrating the weekend with my friends and family. I'm intending to do just that. What about you? What are you planning? What's your plan? What's your idea? What do you intend to do on the weekend? Just chill out, relax, or just spend some time with your friends and family? Do you intend to go out of station or stay here? Well, if you're going out of station towards the hills, do remember it's raining and pouring out there. Lots of landslides and bridges being washed away. So do get to know what are the situations on the ground there before you take your chance. And yes, if you are indeed just staying here in the city, then just let your hair down and enjoy. Make out some time together with movies and picnics and just chilling time. It's so much fun when the whole family gets together and you get to chat about the old days or the days that are going to come. About an impromptu session of maybe a board game and if the weather allows, a cricket match outside. Well, whatever you do, you know, we with you 24/7, 365 days a year. This is the place you gotta be. This is FM Rainbow. Right now, let me take a break. I'll be back with Priyanka Chopra in my city, going out very specially for someone from Assam.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
10: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल आइसलैंड के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन, निवेश प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGCTEC के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ईरान ने कहा कि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए उसके पास 2 साल की योजना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। केरलम में आज उथरादम उत्सव मनाया जा रहा है। ये 10 दिन तक चलने वाले ओणम उत्सव का अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज 18 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें विलंब से चल रही हैं। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुदूर रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, डे टू डे की लाइफ में हम कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए कई बार हम नोटिस करते हैं कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल हमारी बातों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने सस्टेनेबल शब्द को अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा। आज के आधुनिक युग में सस्टेनेबिलिटी दुनिया के हर कोने में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पर जोर देते हुए सस्टेनेबिलिटी को अपने जीवन में अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और करते रहे हैं। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल हैबिट्स, आखिर सस्टेनेबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, जानेंगे आज हम रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। आज का विषय है सस्टेनेबिलिटी, डूज एंड डोंट्स। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सस्टेनेबिलिटी एंथुसियास्ट प्राची। वो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राची।
3: नमस्कार जी। सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार
2: जी। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा शब्द है जो अपने आप में ही डरावना लगता है, तो ये क्या है सस्टेनेबिलिटी?
3: जी, सस्टेनेबिलिटी नाम सुनकर जितना बड़ा लगता है उतना बड़ा नहीं है। और जहां तक मैं बात करूंगी भारत की, हमारे भारतीय कल्चर में ये बहुत सालों से रह रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी का सिंपल अर्थ होता है संधारणीयता। मैं समझ सकती हूँ ये शब्द शायद अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, जिसका मतलब है सतत विकास। और भी सिंपल शब्दों में कहूं तो टिकाऊपन, यानी कि जो रिसोर्सेस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उनमें ही अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को हम संरक्षित यानी कि कंजर्व कर सके। और ये जो स्थिरता है ये हमारे समाज की आज की नहीं बरसों से क्षमता रही है कि भविष्य में जीने के लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक संसाधन, फिर वो कोई भी हो सकते हैं, तो उनको हमें इस तरह से संभाल के इस्तेमाल करना है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आए। तो अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में, जैसे इंग्लिश में भी मैं अगर कहूं, बीइंग अवेयर ऑफ योर रिसोर्स कंजम्पशन, जो भी रिसोर्सेज आपके आसपास है उसके लिए आप सचेत रहें, इसी सचेतना को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, कि हम अननेसेसरी वेस्ट कैसे कम कर सके। और वो वेस्ट फूड का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, ऐसे कई तरह के वेस्ट हैं जिनको कम करना इस सस्टेनेबिलिटी को, सचेत रहने को या टिकाऊपन को हमें सिखाता है।
2: जी बिल्कुल, यानी कि अगर पृथ्वी पर जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें सचेत रहकर जीवन जीना होगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी, बहुत इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। आप क्या जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, प्लीज हमें लिख भेजिए 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसी के साथ दो लाइन्स बिल्कुल स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, आप कॉल कर भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और एक्सपर्ट से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 011-234-2108-4, 011-234-2108-0। सस्टेनेबिलिटी क्या है, कैसे हम इसे अचीव कर सकते हैं, जानेंगे आज रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में।

दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उन चीजों का, उन वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो जीवन के लिए नुकसानदायक होती है, खतरनाक होती है। कहीं तो थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ी सी सहूलियत के लिए हम सचेत होकर जीना छोड़ देते हैं या फिर भूल ही जाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, कैसे सचेत होकर जीवन जीते हुए, जीवन में कार्यों को करते हुए हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया और एक

0: जीवन की कल्पना करते हुए उसे अचीव कर सकते हैं। और आज हमारे साथ है सस्टेनेबिलिटी एंथुजियास्ट प्राची। प्राची, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये इतना बड़ा वर्ड है सस्टेनेबिलिटी, तो इसके जो पिलर्स रहते हैं वो कौन से पिलर्स हैं? 8 R की बात आप अभी कर रहे थे, तो उनको जानना चाहेंगे।
1: जी जरूर। जहां तक मैं समझती हूँ, शायद लोगों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 R तो हम कई बार सुनते हैं, बिकॉज ये हर जगह इसका लोगो भी बना हुआ है। इसके अलावा मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी में कुछ और भी आर्स हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है और जो आजकल चल भी रहे हैं। रीथिंक, यानी कि किसी भी चीज को लेने से पहले एक बार सोचना। रिफ्यूज, मतलब किसी भी चीज को नहीं लेना है तो मना कर देना, सिर्फ इसलिए ले लेना कि वो अच्छी लग रही है, नहीं। उसके बाद रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल ऑफकोर्स है। रिपेयर, इसको मैं इसलिए पसंद करती हूँ बिकॉज इंडियन इकोनॉमी रिपेयर इकोनॉमी है, जो कि अब थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है, तो उस पर जरूर मैं चाहूंगी कि रिपेयर इकोनॉमी को बने रहने दिया जाए। रॉट, यानी कि कंपोस्टिंग करना, जो घर का वेट वेस्ट होता है उसे हम बहुत आसानी से कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है रीपर्पस या रिफिल करना, जो चीज का फिर से उसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस चीज को हम फिर से भराव दे सकते हैं उसे रिफिल करना या उसको किसी और रूप में रीपर्पस करके प्रेजेंट करना, दैट इज अ रीपर्पस। तो ये मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी अगर आपको फॉलो करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, मैं फिर से अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी, ये बहुत ही सिंपल से चीज है जिसमें आपको सिर्फ सचेत रहना है इन 8 R के लिए कि हमें कब क्या करना है, ये चीज लेनी है, नहीं लेनी है और क्यों नहीं लेनी है। तो ये सोचना, इन 8 R को फॉलो करना ही सस्टेनेबिलिटी है।
0: जी बिल्कुल। ऋतु का मैसेज आया है दिल्ली से, गुरुग्राम से। वो लिखती है कि जब हम घर में नजर दौड़ाते हैं तो हर जगह प्लास्टिक की चीजें होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये प्लास्टिक है, और जीवन के लिए और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत नुकसानदायक है। ऐसे में हम प्लास्टिक को कैसे अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं, कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं? मुझे लगता है वो सब्जेक्ट को पहचानते थे, जानते थे, उन्होंने 3 word लिख के भेजे हैं।
1: बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ये जानती हैं और ये करना चाहती हैं प्लास्टिक के यूसेज को कम। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए प्लास्टिक कम नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्लास्टिक बना था वो चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उसका सिंगल यूज रूप आया, जब उसका डिस्पोजेबल रूप आया, उसने चीजों को खराब करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हमें प्लास्टिक के यूसेज को कम करना है तो हमें सतर्क और जागरूक, ये दोनों रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्जियां ठेले पर भी मिल रही हैं, सब्जियां ऐसी जगह पर भी मिल रही हैं जिसे हम अपने बैग में ले सकते हैं, तो प्लास्टिक में बंद थैलियों में सब्जी को क्यों लेना है? उसके बाद आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, शैम्पू है, सोप है, उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, वो आप कोशिश करिए लेने की। अब जैसे मोबाइल है, घड़ी है, ये चीजें मैं समझ सकती हूं कि अवॉइड नहीं की जा सकती, और इसका प्लास्टिक ड्यूरेबल भी है। आपको अगर अवॉइड करना है तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जो कि हम अमूमन देखते हैं फंक्शन, शादी ब्याह, बाकी सब जगहों पर भी, जो थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल कटलरी है,
0: प्लास्टिक के जो कप्स रहते हैं,
1: जी, मेरा कहना है आप उसको जितना हो सकता है कम इस्तेमाल करें। उसे कम हम जितना कर देंगे तो हम उस वेस्ट को आई थिंक काफी परसेंट तक कम कर देंगे, बिकॉज आप पहले भी देखिए हमारे बचपन में भी स्टील की कटोरियां चलती थी, लेकिन आजकल डिस्पोजेबल प्लास्टिक एक तो सहज रूप से मिल जाता है, धोने का जो आलस होता है सस्ता होता है, धोने का आलस आता है, सिर्फ इन चीजों की वजह से हम सस्टेनेबल की जगह हम डिस्पोजेबल को चूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम अगर थोड़ी सी कोशिश करें, आजकल कई क्रॉकरी बैंक्स चलाने वाले लोग हैं, घरों में भी इतनी स्टील की प्लेट्स अवेलेबल होती हैं कि हम आराम से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ धोना ही तो है। मुझे लगता है कि वो लैंडफिल में प्लास्टिक जमा हो उससे ज्यादा धो लेना ज्यादा आसान है। उसके बाद घर से बाहर निकलता है इंसान, गाड़ी की चाबी उठाता है, मोबाइल तो उठाता ही उठाता है, एक कपड़े का थैला और उठा लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है उस थैली को उठाकर निकलना, और कोई स्टेटस सिंबल से भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मॉल में जाकर ना वो 5-10 rupees देना लोगों को आसान लगता है। जैसे ही हम बिलिंग करा रहे होते हैं, आप थैली लेंगे? हाँ हाँ, हम थैली लेकर नहीं आए। एक थैली लेकर चलना कितना मुश्किल हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। और कपड़े की थैली तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग बरसों चलती है। एंड जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि पहले टाइम पर तो जैसे जीन्स होती थी या पापा की पैंट, उसकी तक बैग्स बन जाती थी, बट आजकल ना कहीं हमारे दिमाग को कमर्शलाइजेशन ने, शो ऑफ की चीजों ने, प्रेजेंटेबल गुड्स ने बहुत ज्यादा धर लिया है। उसकी वजह से हम एक बैग लेने जाते हैं ना, हमें लगता है अरे यार ये कपड़े का बैग है, नहीं कुछ फैंसी आइटम होना चाहिए। उस चीज को जब हम अपने दिमाग से निकालेंगे, आई थिंक प्लास्टिक का यूसेज उसी समय कम हो जाएगा। आप जब कोई चीज ऑर्डर करते हैं, आजकल मॉल्स में भी कई जगह दाल चावल ये सब चीजें ना आपको किलो के भाव से या ज्यादा मिल रही हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप हमेशा वो 250 ग्राम आधा किलो का पैकेट लें। आप जाइए वहां पर, वो पैकेट्स देते हैं, उसमें भरिए या आप अपना पैकेट लेके जाइए तो

0: करवाइए, पैसे दीजिए और घर आइए। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ढूंढने पड़ेंगे। लाइक मैं खुद बता रही हूँ कि मैं लोकल बेकर से ब्रेड लेती हूँ, शुरू शुरू में वो मुझे क्लिंग फिल्म लगा के देते थे, मैंने उन्हें मना किया, उन्होंने खुशी खुशी मुझे क्लिंग फिल्म लेना बंद कर दिया। मैं अपना एक घर से मेरा ब्रेड बॉक्स है वो उनको देती हूँ, उसमें मुझे ब्रेड डाल के भिजवा देती है, या फिर वो उनके पास जो कागज का लिफाफा पड़ा होता है रीयूज करने के लिए वो उसमें मुझे रख कर देती है, और वो बहुत खुश है इस चीज को करके, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ कोई तो है जो अवेयर है, कोई तो है जो इस प्लास्टिक की क्लिंग फिल्म को यूज नहीं करना चाह रहा है।
1: बिल्कुल। और अगर हम एंसियंट या फिर अपने दादा दादी के टाइम की ही बात करें, तो उस वक्त जो फंक्शंस होते थे, शादियां होती थी, उनमें जो प्लेट्स यूज करते थे वो पत्ते की यूज करते थे।
0: बिल्कुल।
1: और उत्तराखंड में भी करते हैं, बिहार में भी करते हैं, यूपी में करते हैं, महाराष्ट्र
0: में, ऑल ओवर इंडिया ही है, इवन साउथ में बनाना लीफ है, हर जगह सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है।
1: और अब तो जो मकई के छिलके होते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, उसकी प्लेट्स, कटोरी और कप्स बनने लग गए हैं, चम्मच बनने लग गए हैं, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: आप अगर अपने लोकल इसमें गूगल से सर्च करेंगे तो ऐसी कई कंपनीज और एजेंसीज हैं जो आपको ये प्रोवाइड कर सकती हैं, जो पत्तल के बने हुए इक्विपमेंट्स, पत्तल के बने हुए कटोरी प्लेट्स हैं, पत्तल ही नहीं, बनाना लीव्स हैं, बैम्बू की बॉटल्स, बैम्बू के स्ट्रॉज, ऐसी कई चीजें अवेलेबल है। थोड़ा सा वही मैंने कहा ना, रीथिंक करने की जरूरत है, जिससे कि हम इस प्लास्टिक को रिफ्यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अगर कोई घूमने जा रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, तो वहां बैम्बू की बहुत खूबसूरत बॉटल्स मिलती है, वो खरीद के ला सकते हैं।
0: स्ट्रॉज एंड बॉटल्स दोनों बैम्बू की बहुत अच्छी हैं, और मतलब मैं कहूंगी टिकाऊ हैं, जिसे हम टिकाऊपन की बात करें तो वो बहुत चलती हैं, दे आर नॉट डिस्पोजेबल कि एक दो यूज के बाद आपको उनको फेंकना पड़े, कई दिनों तक चलती हैं वो।
1: जी जी बिल्कुल। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की। आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। हमारे दो फोन लाइन हैं जो बिल्कुल स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, नंबर है 0112342108400112342108।

आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम हमारे साथ एक्सपर्ट प्राची। आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, क्या चीजें हैं जो हम करें और क्या चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करके हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, एक बेहतर समाज बना सकते हैं, एक बेहतर पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं। अगर शब्द सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए तो आज ये एक चॉइस नहीं है बल्कि ये एक नीड बन चुकी है, एक नेसेसिटी बन चुकी है। सस्टेनेबिलिटी में हम उन तौर तरीकों को अपनाने पर जोर देते हैं, उन तौर तरीकों के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं जिससे कि प्रकृति पर्यावरण

0: बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें अब घर के लेवल की, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी पानी की बोतल घर से लेकर चलिए, ताकि आपको डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतल ना खरीदना पड़े। अब दूसरी बात आती है रेन की। बहुत सारा पानी आता है, कई बार हम चाह कर भी उसको कंजर्व नहीं कर पाते। आप अपने घर में, जिनके लिए संभव है वो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा लेते हैं, बट हर घर के लिए, हर कंस्ट्रक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक हम बाल्टियों में भरकर, या जैसे कि हम बात कर रहे थे, छत को अपनी साफ कर लीजिए एंड उस पर जो पानी आता है उसको हम यूज कर सकते हैं, बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। वो आप ही की छत से आया हुआ पानी है, कोई बहुत अलग पानी नहीं है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा आरओ, बिकॉज आजकल फिल्टरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कभी कभी कि आरओ की एक बॉटल भरने में 4 बॉटल पानी वेस्ट भी जाता है। अब वो पानी ड्रेन से डाउन हो जाता है, वॉट कैन बी डन। मैं खुद अपने घर में उस पानी को जमा करती हूँ। आप हो सकता है एक छोटा सा टैंक उसमें लगा लीजिए, बाल्टी में जमा कर दीजिए, और उस पानी को आप पोर्च धोने के लिए, टेरेस धोने के लिए, पोछे
1: धोने के लिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीजों के लिए से बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बिकॉज वो पानी आ तो टंकी से ही रहा है, आप निकाल एक बॉटल रहे हैं लेकिन निकल 4 बॉटल रहा है। उसके बाद हम जो सब्जी धोते हैं, चावल दाल धोते हैं, इस पानी को भी हम सिंक से जाने देते हैं, आप उसे भी रोक लीजिए। वो पानी पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा है, एक तरह से उनको न्यूट्रिएंट्स से मिल जाएंगे। तो आप जब भी सब्जी दाल कुछ धोते हैं तो उस पानी को उसी पतीले में जमा करिए, या आप अपने सेटअप कुछ इस तरह से करिए सिंक में कि इस तरह का पानी एक तरफ जमा हो जाए जो पेड़ पौधों के लिए काम आ सके। तो मुझे लगता है छोटी छोटी सी चीजें करके भी हम अपने टंकी के पानी को, आप अगर रियलाइज करेंगे कि अगर सुबह का पानी शाम को नहीं आ रहा है, आप देखेंगे कि हम इस तरह से अगर छोटी छोटी चीजों को रोक लें तो वो पानी आपका खुद कंजर्व होगा एंड आप खुद ही उसको रीयूज कर सकेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। और एक और बात है प्राची, जब हम देखते हैं कि कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में तो बहुत सारा पानी लगता है और अधिकतर हम उसे बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको भी रीयूज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो मैं जानना चाहूंगी आपके मुख से और आपके शब्दों से कि कैसे हम कर सकते
0: हैं। मैं बहुत साफ सी बात कर रही हूँ, सुनकर कई बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो पानी निकलता है मशीन का, मैं इससे खुद अपनी छत भी धो लेती हूँ, या फिर आपके पास अगर नीचे का लॉन है तो एट टाइम्स वो पानी बुरा नहीं है, टॉयलेट धोने के लिए वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पानी को रीयूज करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज, इंडियन सेटअप में ना सन ड्राइंग ये बहुत अच्छी चीज है। सो एक तरह से आप ड्रायर का इस्तेमाल ना कम से कम करिए। जैसे कि पुराने टाइम पर होता था कि कपड़ों को हम सिर्फ हाथों से खंगाल के, उसको स्क्वीज करके हम टांग देते थे, ये सन ड्राइंग भी कहीं ना कहीं वाटर भी सेव करता है, एनर्जी भी सेव करता है। बिकॉज रिंसिंग जो 2 बाल्टियों में हो जाती है, मशीन में वो आई थिंक 10 से 15 बाल्टी
1: बहुत ज्यादा पानी लगता है।
0: यस। एंड जैसे आपने अभी कहा गाड़ी धोने के लिए, हम रियलाइज नहीं करते कि गाड़ी अगर हम पाइप से धोने बैठेंगे 15-20-25 कितनी बाल्टियां निकल जाती है, लेकिन अगर हम इसी में आरओ का पानी है या इस तरह का पानी जो रेन में हमने सेव किया है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आई थिंक वी कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर।
1: अगर आपके पास भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें लिखें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। हम बार बार फोन कॉल्स के नंबर्स भी बता रहे हैं लेकिन कॉल्स नहीं आ रही, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत से अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें और अवेयर हों, जागरूक हों।

0: भूल मुझे। आकाशवाणी रेनबो रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम विषय सस्टेनेबिलिटी डूज एंड डोंट्स, और हमारे साथ है सस्टेनेबिलिटी एंथुसियास्ट प्राची। प्राची बहुत खूबसूरत स्माइल के साथ आप बहुत कुछ बताने वाली हैं। पानी के बारे में हम ऑफ जब थे, गाना चल रहा था तो बात कर रहे थे, और एक बहुत ही खूबसूरत योजना आप बताने वाले थे, प्लीज उसे हम जानना चाहेंगे।
1: आपने गांवों की बात की तो मैं राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। तो जैसे हमारे जो मित्र गांव में हैं, वो जैसे आपने कहा कि जो भी संबंधित अफसर हैं उनसे बात कर सकते हैं, बिकॉज जल मिशन के अंतर्गत क्या है कि जल संसाधनों को प्रोवाइड करने के लिए उसी के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग तभी होती है जब हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसको भरते हैं। सो इस संबंध में अगर वो अपने अफसरों से बात करें तो वहां पर उनको वाटर वेस्टेज को कैसे रोकना है, वाटर को किस तरह से कंजर्व करना है, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, इस सब के बारे में ना गवर्नमेंट की तरफ से ये नॉलेज उनको प्रोवाइड की जाती है, एंड दे हेल्प यू कि हम वाटर को कैसे कंजर्व करें। जैसे कि आपने कहा लेक्स है, अगर एक इंसान है जिसको नहीं पता है, किसी के पास कुआं है उसे नहीं पता है उसे रिचार्ज कैसे, रिचार्ज इन द सेंस रेन वाटर को हम वहां पर उसको फ्लिक्स, तो इसके लिए जल मिशन के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। एंड जल मिशन का जैसे एक एम जो मैंने भी पढ़ा था, दैट इज कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब वही है कि बारिश के उस पानी को लीजिए, उसको कंजर्व कीजिए और उसको फर्टिलाइज कीजिए।
0: क्या बात है, तो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। प्राची एक मैसेज आया है मेरठ से, वो लिखते हैं कि पैकेजिंग जब हम करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे शादियों में जो गिफ्ट्स आते हैं या फिर कोई रिसेप्शन होती है, बर्थडेज रहते हैं, तो उसमें जो गिफ्ट आते हैं उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल लगा रहता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत बड़ा वेस्ट के तौर पर नजर आता है, तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है
1: नजर
0: या रीयूज किया जाता है, रीथिंक करते हैं।
1: सिर्फ रीथिंक ही नहीं, यहाँ पर रिफ्यूज, रीथिंक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, हर चीज इसके साथ की जा सकती है, बिकॉज पैकेजिंग ऐसी चीज है, सिर्फ शादी ब्याह ही नहीं, मुझे लगता है आजकल हम लोग सभी ऑनलाइन परचेजेस भी करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा पैकेजिंग आती है। अब इसको अवॉइड करने के लिए देर आर कंपनीज हु आर वर्किंग जो कि पेपर के सब्स्टिट्यूट्स के साथ आ रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं के जो देने वाले डिलीवरी वाले हैं वो अपने बैग में सामान लेकर आते हैं और आपको सिर्फ बाय हैंड दे देते हैं। दिस इज अ गुड थिंग, दे आर अवॉइडिंग द बिगर प्लास्टिक, उस प्लास्टिक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आती है गिफ्ट पेपर्स की, तो गिफ्ट पेपर जरूरी नहीं है प्लास्टिक का लेना, आजकल उसके भी कई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पत्तल की बात की थी, तो मैं खुद कुछ लोगों को जानती हूं जिनको मैंने देखा है केले की रैपिंग्स पत्तल के पेपर इसमें रैप करते हुए, और कुछ नहीं है न्यूज़पेपर, जो चीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लास्टिक पेपर पड़ा है, कुछ पड़ा है, आप उसी को रीयूज कीजिए रादर देन कि एक सुंदर सा फैंसी सा दिखने वाला एक प्लास्टिक पेपर को ले आइए। रीजन बीइंग ये जो गिफ्ट पेपर है हम उस समय फाड़ के उसको फेंक के डस्टबिन में डाल देते हैं, इट ओनली इंक्रीजेज योर कार्बन फुटप्रिंट, बिकॉज आप उसको फेंक तो दे रहे हैं, आपके घर की काली थैली में डस्टबिन में जाकर वो बाहर तो निकल जा रहा है, लेकिन वो सफर वहां खत्म नहीं होता, वो सफर जाता है जब वो लैंडफिल में जाकर जमा हो जाता है। तो लुक फॉर सब्स्टिट्यूट्स, जो कार्डबोर्ड है या पेपर है, ऐसा मटेरियल जो रिसाइकल हो सके। इसके भी कई टर्म्स हैं जो आपको आपके मटेरियल जब लेने जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है।

0: रिसाइकलेबल और नॉट, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, उन चीजों को ऑप्ट कीजिए. एंड अगेन जैसे आपने शादी ब्याह में प्लास्टिक की बात की, तो सबसे बड़ी बात जो उसमें आती है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स. तो एक पहले का जमाना था जब शादी ब्याह में भी ग्लासेस चलते थे, पानी आकर डाला जाता था जग से, आई थिंक वो फिर से किया जा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है. मुझे नहीं पता वो प्लास्टिक की बॉटल इतनी फैंसी क्यों लगती है, बिकॉज कई बार आप अगर किसी रिसेप्शन में जाते हैं ना, कभी अगले दिन सुबह 5-6 बजे जाकर वहां पर जो कचरा इकट्ठे करने आते हैं ना उन लोगों को देखिए, वहां पर लाखों की संख्या में सिर्फ बोतलें पड़ी होती हैं, बिकॉज हर एक घूंट के लिए आप प्लास्टिक की बोतल खोल रहे हो, आधी खुली आधी बंद, कुछ यूज हुई कुछ नहीं, सिर्फ ढेर लगा हुआ है. वो पानी है, मुझे लगता है लोकल पानी भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना बोतल का पानी है, बरसों से पिया ही जा रहा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और अगर हम मीटिंग्स की बात करते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स की बात करते हैं, उसमें भी जो रिफ्रेशमेंट आती है, पानी की बॉटल्स आती है, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट को ज्यादा बढ़ाती ही है. आपने एक आर्मी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, मैं उसे जानना चाहूंगी और हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे.
0: जी, हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जब हम ऐसे किसी ग्रुप को या कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई ड्यूटी पे लगे हुए लोग होते हैं, तो उनको देने के लिए पानी है, भोजन है, देना पड़ता है. बट ऑब्वियसली तो कई बार ये होता है कि उसमें प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं, प्लास्टिक की 10-12 बोतलें रख दी जाती है, प्लास्टिक की पैकिंग है, थर्मोकोल की पैकिंग है. मुझे लगता है उसको अवॉइड करने के लिए बड़े टिफिन बॉक्सेस, बड़े जो कैंपर्स होते हैं पानी के, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है. बिकॉज एक बड़े कैंपर में 10 से 15 लोगों का पानी है, बड़े टिफिन में 10 से 15-20 लोगों का खाना बहुत आराम से आ सकता है. तो मुझे नहीं लगता कि वो थर्मोकोल की पैकिंग या प्लास्टिक की पैकिंग की कोई भी जरूरत है. बिकॉज आप 10 लोगों के लिए अगर 20 रोटी है या कुछ सब्जी या दाल दे रहे हैं, बड़े टिफिन ये काम बहुत अच्छे से करते हैं. और मैंने मतलब वही जैसे आपने हर जगह वही जाता है, बिकॉज हर जगह इस तरह से हम प्लास्टिक देने लग जाएंगे तो वी विल जस्ट पाइल अप ऑन वेस्ट, और कुछ नहीं होगा. सो वही है कि जैसे हम कहते हैं ना, रीथिंक करने की जरूरत है. हमें सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि क्या इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. आसानी लगती है प्लास्टिक को दे देना, बिकॉज उसको फेंका जा सकता है, धोए कौन. मैं बिल्कुल मानती हूं कि आजकल ना बहुत कंफर्ट जोन वाली जो लाइफ आ गई, उसमें हम धोने से भी आलस करते हैं. सिर्फ उसके चलते ये चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, और वही है, डिमांड है तो सप्लाई हो रही है. तो जब तक हम उस डिमांड को कम नहीं करेंगे, हम उसके इस्तेमाल को कम नहीं करेंगे, ये सप्लाई चलती रहेगी. तो हमें उसके लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि हाँ, ये सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी इस हरी भरी भूमि के लिए अच्छी नहीं है, तभी कुछ हो सकता है.
1: बिल्कुल. और अक्सर हम देखते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं कुछ लोग. कौन है वो लोग? जी हाँ, जो सिर्फ आराम चाहते हैं और कंफर्ट जोन में रहकर उन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी के जीवन के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक होती है. और इसमें अभी अगर एक वर्ड और जोड़ दिया जाए तो वो है ई वेस्ट. ई वेस्ट क्या है और इसको कैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, या फिर रिफिल कर सकते हैं, या रीयूज कर सकते हैं.
0: ई वेस्ट मतलब ये होता है ना कि आजकल टेक्नोलॉजी जहां पर डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आ रही हैं. प्रॉब्लम आती है जब उन चीजों में हमें और ऑप्शंस मिलने लगते हैं, और ज्यादा ब्रांड्स आने लगते हैं, हम उन ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हम पुरानी चीजों को उठाकर सिर्फ डस्टबिन में डाल देते हैं. वो गलत है. ई वेस्ट क्या होता है? हमारी तारें, बैटरीज, पुराने इक्विपमेंट, बिल्कुल चार्जर्स, लैपटॉप्स, पुराने कंप्यूटर्स, सेटअप, स्पीकर्स, जी ये सारी चीजें आप सीधे उठाकर डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं. बिकॉज उसको बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज हुए हैं, उनको बनाने के लिए जो चीजें, उनको जब आप मिट्टी में डाल देते हैं तो दे जनरेट गैसेस विच आर हार्मफुल फॉर द अर्थ. तो ई वेस्ट के लिए ये नहीं है कि घर की रिमोट की बैटरी बदली तो सीधे उठाकर डस्टबिन में डालिए. नहीं, यहां पर ही आपको थोड़ा सा सोच है. कई एजेंसीज है, अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने गूगल आसपास करेंगे तो देयर आर पीपल हु आर रेडी टू कलेक्ट दीज ई वेस्ट फ्रॉम यू. बहुत सी कंपनीज है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है. आप उन्हें कॉन्टेक्ट कीजिए, आप अपने घर के ई वेस्ट को जमा करिए. बैटरीज है, मेरे घर में खुद इस समय 15 से 20 बैटरीज है. मेरा बेटा खुद एक डब्बे में जमा करके रखता है. वी वेट कि वो बैटरीज को, जब कोई तार है, कोई पुराना लैपटॉप है, हम उस लोकल एजेंसी को कॉन्टेक्ट करते हैं, वो ले जाते हैं. बिकॉज उनको पता है कि उसको डिसमेंटल करके उसमें से कौन सा जरूरी हिस्सा जो यूज किया जा सकता है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे सोल्डरिंग करके या जिस भी प्रोसेस से वो उसको रीयूज कर सकते हैं. सो ई वेस्ट इज समथिंग जिसको मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज उठाकर डस्टबिन में मत डाल दीजिए. बिकॉज आपके पुराने मोबाइल फोन्स, आपके बैटरी चार्जर्स, आपकी ये बैटरीज, ये सब प्लास्टिक है. ये लैंडफिल में जाकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं. आप सोचिए कि एक प्लास्टिक की क्लिंग फिल्म अगर आपके मुंह पर बंदी हो, आप सांस नहीं ले पाएंगे. द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ अवर अर्थ.

0: तरह से ये जो प्लास्टिक का पूरा जो हम लेयर बना चुके हैं जिसकी वजह से अर्थ सांस नहीं ले पा रही है, तो उसको सांस लेने देने में मदद करनी है तो इस ई वेस्ट को प्लीज डस्टबिन में मत डालिए, बल्कि अपनी लोकल एजेंसीज को कॉन्टेक्ट करिए। एंड ई वेस्ट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो गूगल पे सारी जानकारी है। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि किसको फेंक देने से नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक की कोई भी चीज उठाकर घर से जस्ट ऐसे ही मत फेंक दीजिए, सोचिए एंड देन कॉन्टेक्ट करके फिर उनको दीजिए।
1: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया, वो लिखते हैं कि जितने भी घर में डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम प्लास्टिक के होते हैं, तो उनको किस तरीके से हम जिंदगी से हटा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के फूल्स हैं और वॉल हैंगिंग्स रहते हैं। एक वक्त था जब हमें स्कूल में मैच बॉक्सेस से या
0: SVPW की क्लासेस जो होती थी,
1: हाँ, उसमें वेस्ट से गुड थिंग्स बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि डेकोरेटिव आइटम्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है।
0: यहाँ पे भी अगेन बात आ जाती है, बिकॉज जस्ट बिकॉज ये प्लास्टिक की चीजें बहुत सस्ती है ना, इसलिए हम उनको लुक्रेटिवली पिक कर लेते हैं। आप सोचिए, हमारे बचपन में लकड़ी के खिलौने होते थे, सडनली खिलौने सब प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गए। हम लोग मतलब स्टील के बर्तनों से खेलते थे, वो सारी चीजें आजकल वो सारी चीजें दिखना बंद हो गई हैं। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि अब हम प्लास्टिक से हटकर लकड़ी, स्टील, इन सब चीजों पर वापस आए, ताकि प्लास्टिक की चीजें, ऐसी चीजें जो खासकर कुछ दिन यूज इस्तेमाल करके फेंक दी जाती हैं, उसको ना इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के फूलों की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर में अच्छा गमला लगाइए, प्यारा सा पौधा लगाइए, उसे रखिए। क्या जरूरत है प्लास्टिक के फूल की, या प्लास्टिक के छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स। अगेन मैं कहूंगी, आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो ऐसा सामान खरीदिए ही मत ना जो प्लास्टिक का है। कोशिश कीजिए कोई चीज आप अपने घर में खुद बना लीजिए, अगर आप DIY जैसे कि डू इट योरसेल्फ कहते हैं, खुद आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, ऐसी चीजें लीजिए जो तकलादू नहीं है, जो ज्यादा लंबे टाइम तक चलेंगी। लकड़ी की बनी हुई चीज, स्टोन की बनी हुई चीज, ऐसी चीजों को लीजिए जो लंबे टाइम तक चलेंगी भी एंड प्लास्टिक को कम कर सकती हैं।
1: क्या बात है प्राची, अब वक्त हो चला है कि हमें विदा लेनी होगी, और जब अच्छी बातें हो रही होती है ना तो वक्त चलता नहीं है, फ्लाई करता है। तो चलते चलते आप हमारे लिस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे प्लीज?
0: जी बिल्कुल, हमारे टॉपिक का नाम था डूज एंड डोंट्स, मैं सिर्फ कुछ डूज एंड डोंट्स जरूर फिर से बताना चाहूंगी। डू में मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, घर की निकलने से पहले जब मोबाइल और चाबी उठाते हैं ना, एक कपड़े का थैला, एक बोतल और एक रुमाल, इसको लिए बिना घर से ना निकले। टिश्यू पेपर, डिस्पोजेबल बॉटल्स, इन सब का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। प्लास्टिक की रैपिंग पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल्स की जगह कपड़े का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और अपनी फूड वेस्ट को रिड्यूस करके कंपोस्ट करने की कोशिश करें।
1: थैंक यू सो वेरी मच प्राची, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दे रही। हमें आशा है कि आगे भी हम इसी तरीके के प्रोग्राम्स करते रहेंगे और एक बेहतर जीवन, एक बेहतर पृथ्वी की बारे में जो कल्पना है उसे साकार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच AR FM का फिर से मेरा धन्यवाद। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
9: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
10: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
11: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
10: म्यूजिक मस्ती।
12: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
13: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
10: म्यूजिक मस्ती।
14: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे मन कस्तूरी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवेन्यू।
2: हाँ तो भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

एफएम स्टूडियो घड़ी में समय दोपहर के 2:02 बज चुके हैं। लीजिए पेश हैं आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल आइसलैंड के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन, निवेश प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग यानी IRIGC टेक के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने साइबर आतंकवाद से जुड़े गुजरात मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए उसके पास 2 साल की योजना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश की संभावना। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज 18 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें विलंब से चल रही हैं। तो ये थे आकाशवाणी रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, स्टेशन ऑफ द नेशन, आपके दिल तक पहुंच रहे हैं हम, दिल्ली के दिल से। और इस आवाज को तो आप जानते ही हैं, मैं हूं आपके साथ रंजन। आज है मंगलवार और मंगलवार की दोपहर 2 बजे हम कार्यक्रम लेके आते हैं आप तक आशियाना। और आशियाना होता है आज विमेन स्पेशल। विमेन स्पेशल क्योंकि नारी जो है वो पुरुषों पर भारी है। आज नारी शक्ति की हम बात करते हैं, इक्वेलिटी की बात करते हैं और चाहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को, नारी को, उनका वो सब हक मिले जिसकी वो हकदार हैं। लेकिन इस सब भाग दौड़ की दुनिया में सब चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते एक अच्छे करियर के लिए या फिर फैमिली को पूरा टाइम देने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पीछे चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं। ऐसे में बहुत से सवाल होंगे आपके दिमाग में या फिर दिल में, और ये जद्दोजहद, ये लड़ाई, ये छोटी मोटी नोकझोंक दिल और दिमाग की चलती रहती है। ऐसे में आपने क्या सुनना है? आपने सुनना है ये सवाल जो इस गीत में बयां हो रहा है। ढेर सारी बातें करेंगे आपसे, तो फिर जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग, सुनते रहें रेनबो स्टेशन।

और शालमली की आवाज में आपने गाना सुना फ्रॉम द मूवी शहजादा 2023 की रिलीज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम आशियाना। 2026 में दिन है आज, मंगलवार का तारीख है 25 अगस्त। 25 अगस्त वैसे तो देखिए बहुत सी चीज़ों में मायने ही रखता है, बट ऐसे ही मेरा नज़र पड़ी हमारी इस नई बिल्डिंग का जब उद्घाटन हुआ था, इसको भी बड़े साल हो गए, वो 23 अगस्त को हुआ था, है ना। तो मतलब ऐसे ही जानकारी आपसे शेयर करने का मन किया, काफ़ी साल हो गए, एग्जैक्ट बता दूँ 21 साल 2 दिन ऊपर से, ओके 23 अगस्त को हुआ था न्यू बिल्डिंग का। खैर, तो विमेन एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो महिलाएं जो हैं आमतौर पे क्या होता है कि पूरी फैमिली की जो नीड्स होती हैं उसको गौर में करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कई दफ़ा अपने न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा केयरफुल नहीं रहती हैं। क्या आप भी उनमें से एक महिला हैं, या फिर आप भी सुबह उठती हैं तो नाश्ता नहीं करती और ऑफिस के लिए देर हो रही होती है, चाहे आप खुद ऑफिस जा रही हों या फिर आप एक होम मेकर हैं और आपके घर में बाकी सदस्य जो हैं वो स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, और फिर हाँ वो माँ बाबू जी की वो एक प्याली चाय भी तो बनानी है। कितना कुछ है इस संसार में जिसे आपने देखना है, जिसके बारे में आपको ख्याल रखना है, और इस बीच आप कहीं ना कहीं भाग दौड़ में ये भूल जाती हैं कि आपका ख्याल आपने कब रखना है। एक लहर की तरह आप आगे बढ़ती जाती हैं, साहिल से बेपरवाह बेखबर

जी आप सुन रहे हैं आशियाना आकाशवाणी रेनबो पर। ये वो स्टेशन है, ये वो रेडियो है जो आपके दिल के करीब है। यहाँ पर रहते हैं हर तरह के, हर फ्लेवर के कार्यक्रम, चाहे आपकी हेल्थ से जुड़ी बात हो, आपकी पढ़ाई, करियर, एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट, दिन भर गाना, मौज मस्ती। 90 वर्षों से ज्यादा ये सफर यूं ही लगातार चलता जा रहा है और हम जानते हैं कि आपका भी सफर यूं ही चल रहा है। हो सकता है इस समय दोपहर आप अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि दिन भर आजकल लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, दिन से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात, रात से फिर अगला दिन, ना जाने कौन किस फील्ड में कहाँ है। और ऐसे में कई दफ़ा आप जागने के लिए, सतर्क रहने के लिए कॉफ़ी का सहारा ले लेते हैं, चाय का सहारा ले लेते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा है या नहीं है ये आप जानते हैं उसके बावजूद, बिकॉज वी आर लिविंग इन सच अ फास्ट पेस्ड लाइफ जहाँ पर टारगेट्स पूरे करने हैं, बॉसेस आपसे रोज मीटिंग में पूछते हैं कितनी उम्मीद होती है कि कंपनी का सारा दारोमदार आपके नाजुक कंधों पर है, लेकिन जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो ना जाने वो बॉस कहाँ फुर हो जाता है।

0: जी हाँ, दुनिया आपको आपकी नजरों से देखे ऐसा जरूरी तो नहीं। दिल की मांगी हर ख्वाहिश हो जाए पूरी, ऐसा भी तो जरूरी नहीं। तो फिर मैं बात कर रहा था इंक्रीमेंट की। अगर ऑफिस में आपको कहा जाता है कि भाई यू आर सो ब्राइट, आपके बिना तो ऑफिस में काम ही नहीं चलता, लेकिन इंक्रीमेंट के समय आपको पता चलता है कि भाई ये तो सिर्फ बातें थी, हवा हवाई और बॉस की बातों में हमें इतना भी नहीं आना चाहिए, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम करना चाहिए। और देखिए, कई ऑफिसेज में होता है जहां आपको खुद एक फॉर्म भरना होता है, फिर आपके बॉस को उसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, फिर वो हायर अथॉरिटीज़ एचआर तक जाता है। क्या आप भी उस जद्दोजहद से निकले हैं और आपके मन में कभी आया है कि बस अब मुझे दूसरे जॉब ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे टैलेंट की कदर नहीं है, मेरे काम के प्रति यू नो इतने पैसे में इतना ही चोगा, वो वाला फीलिंग आया है? अगर आया है तो कोई बात नहीं, यू आर थिंकिंग राइट। खैर, हम लौट के आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपसे यूं ही बातें, ढेर सारी बातें करनी है आपके करियर की, आपकी फूड हैबिट्स की, और वो क्या चीज़ है जो आप बहुत मिस करते हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं दैट रियली मेक अप योर मूड ऑल्सो ऑन अ बैड डे। This and lots more, जुड़े रहें आकाशवाणी के संग।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिला।

0: जाती हैं।
1: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
2: इग्नोर नहीं, याद करो।
3: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ, कुड़ी नू नचने दे, आज लगाने दो चुमके। बिकॉज ये देखिए, ये सक्सेस का जो कलर्स हैं, सफलता के जो ये रंग हैं, उसमें आपका नाचना बनता है, खुश होना बनता है, उमंग के साथ अपने पर फैला के, पंख फैला के आकाश की ऊंचाइयों को छूना बनता है। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, वो सिर्फ किचन में कोई अच्छी सी डिश ही नहीं निकाल सकती, ना सिर्फ इतना सा काम, बल्कि आकाश की बुलंदी को छूते हुए फाइटर पायलट तक बनती हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसी ही आकांक्षा

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और हमारा जो स्टेशन है वो है आकाशवाणी का 102.6 मेगाहर्ट्ज दिल्ली और आसपास। इसके अलावा आप ढेरों फ्रीक्वेंसीज पे हमें सुन सकते हैं। हमारा जो ऐप है वो न्यूज़ ऑन एयर ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर पूरी दुनिया में हमारे संग रहिए। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, कहीं नहीं जाएगा।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

सुन रहे हैं आशियाना, और बस समय हमें अब और इजाजत नहीं दे रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम यहाँ पे आपसे विदा लेंगे। मैं हूँ रंजन, आपसे मिलूंगा वापस से 4 बजे एक अलग कार्यक्रम में। अल्फा जनरेशन की बातें होंगी ढेर सारी, तो जुड़े रहिएगा। 3 बजे से आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर। टॉपिक रहेगा आज का स्पेशल ऑन आई डोनेशन फोर्टनाइट। तो फिर महिलाओं, लड़कियों, गर्ल्स, मन में उमंगों को बहने दें, सपनों के पीछे दौड़ें, उन्हें यूं ही ना छोड़ें, क्योंकि जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करता है। ठीक है, बाय बाय।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
2: जी।
3: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
3: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
2: जी
3: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
2: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
3: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
2: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
3: जी हाँ, तो श्रोताओ आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओ, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
2: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
3: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हों तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे
2: जी।
3: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
2: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
3: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग के योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
2: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
3: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
2: जी,
3: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
2: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
3: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
2: जी,
3: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
2: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
3: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
2: सरितपुर की कहानी।
4: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी
5: का क्या हो रहा है, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा। अरे
4: हमारे खेतों से पानी भर गया, सारे
6: फसल बह गई।
7: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे

0: फंसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
5: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते, उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी।

0: पेड़ कट गए थे, इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: हमारे घर का सारा सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: क्या?
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल
2: भगवान, सारी फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो
1: सारा सामान
2: जल्दी
1: से ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी जल्दी चलो
2: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
6: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
1: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: वरिष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
1: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगीं और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
0: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
1: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
1: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
0: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
1: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
0: वर्ष था 1977 का जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
1: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं।

0: उठा पाऊंगी।
1: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
0: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
1: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
0: आ, सर।
1: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
0: ओह, थैंक यू सो मच सर।
2: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
3: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश के पीटी उषा जो भाग ले रही हैं।
5: इस तीरंग से ऊंचा हो जाएगा। देखो, शुरू हो गए।
4: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे वो पहुंच गए विजय रेखा पर, जीत गए भाई, जीत गए।
2: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
3: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
2: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
3: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
2: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
3: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
2: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
3: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन

0: राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं नमस्कार। नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट या राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है, इस पर बहुत सारी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि आंखों का महत्व हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए हम इसकी सुरक्षा भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि ये दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी है। आंखें न केवल हमें रोशनी दे सकती हैं बल्कि हमारे मरने के बाद वो किसी और की जिंदगी रोशन कर सकती है। ऐसा नहीं कि लोग नेत्रदान के महत्व और आवश्यकता को नहीं समझते हैं। हमें से बहुत लोग मरणोपरांत नेत्रदान करना भी चाहते हैं, किंतु कैसे करें, कहां करें, ये जानकारी ना होने के अभाव से वो चाहकर भी नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और इसके बारे में और जानकारी विस्तृत रूप से हमें देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता बैरी, आप डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और साथ ही आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विभाग में भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ही। तो पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता बैरी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: शुक्रिया।
1: तो डॉक्टर साहब, हमने जो ये आज बहुत विशेष जो एक आयोजन इस कार्यक्रम में किया है रेडियो डॉक्टर में, ये एक विशेष अंक है हमारा और हम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले जाने कि ये जो नेत्रदान होता है, आई डोनेशन होता है, क्या है एक्चुअली।
2: आई डोनेशन का मतलब है कि जो हम मरणोपरांत आंख का डोनेट करते हैं, जो कि हमारी आंख जो बनी हुई है उसका सिर्फ अगला हिस्सा जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा, यही लिया जाता है और इसी का इलाज होता है आई डोनेशन से। हम ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि जो आंख के रेटिना ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स हैं वो आई डोनेशन से ठीक नहीं होती हैं, परंतु हमें आगे का जो हिस्सा है जो सारे एटमोसफेयर में भी होता है उसी में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अल्सर हो गया, इवन विटामिन ए डेफिशिएंसी, चोट लग गई उसके कारण इसमें जब ओपेसिटी आ जाती है तो बिल्कुल दिखना कम या बंद हो जाता है, दोनों आंखें इन्वॉल्व हो जाएं तो अंधापन आ जाता है, उसके इलाज आई डोनेशन से हो सकता है।
1: जी, तो आपने ये कारण बताए दो तीन, इसके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं जिससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकती है।
2: कुछ एक जमांद्रु बीमारियां भी होती हैं जो जन्म से ही कॉर्नियल ओपेसिटी के साथ जन्म लेते हैं बच्चे। और भी जैसे है कि कई बारी जब सफेद मोतिया का ऑपरेशन होता है उसकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसके कारण हमारा कॉर्निया खराब हो जाता है। कुछ लोगों को काला मोतिया इतना ज्यादा हो जाता है कि जो आगे की परत कॉर्निया है उसमें खराबी आ जाती है, और चोट लगना, विटामिन ए डेफिशिएंसी, कॉर्नियल अल्सर, ये तो मैंने बता दिया है। पहले एक ट्रकोमा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता था जो अब ज्यादा से ज्यादा

0: निकल गया है,
1: निकल गया। अब नहीं
0: इतना ट्रकोमा नहीं होता है भारत में।
1: तो इन सब जो बीमारियों को जो आपने बताया जो कि कॉर्निया की हो सकती हैं, उसमें आई डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताइए।
0: जैसे मैंने बताया है कि आगे का जो कंचा है उसमें अगर सफेदी आ जाएगी तो जो हमारे आगे की रेज हैं वो हमारे अंदर नहीं जा पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। ये जो कंचा है ये जब मरणोपरांत यही कंचा निकाल के बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि इसकी जो हमारी देखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारी रेज है वो अब अंदर जा सकेंगे आंख के अंदर, तो आगे का कॉर्निया बदला जाएगा और उसमें हम देख पाएंगे।
1: जी, तो मरने के बाद अगर आंख का कॉर्निया लेकर आप किसी को दान दे सकें और उससे किसी और की जिंदगी में उजाला आ सके, इससे नेक काम मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। और आज इस पर बहुत सारी जानकारी दे रही हैं हमारी आज की गेस्ट, हमारी आज की विशेषज्ञ, आज की रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर सरिता बैरी। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और लौट कर आएंगे, ढेर सारे सवाल हैं हमारे पास, आपके पास भी होंगे, तो जुड़िए रेडियो डॉक्टर के साथ।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज हम नेत्रदान पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये तो जाना कि क्यों इम्पोर्टेंट है नेत्रदान करना, क्यों जरूरी है, पर कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे मिथ्स इसके साथ जुड़े होते हैं और जिसके कारण लोग जानते हैं कि ये बहुत नेक काम है, हमें करना चाहिए, पर उन मिथ्स के कारण या सोशल जो लोग चीजें आपस में बात करते हैं उनकी सही जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे उन्हें लगता है कि अगर मैं आंख दान दे दूंगा तो अगले जन्म में अंधा हो जाऊंगा या कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप?
1: ये मिथ्स बिल्कुल हमें खत्म करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डोनेशन में मिथ्स ही है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने आंख को दान कर दिया तो अगले जन्म में उनकी आंखें शायद ना हो, ये तो बिल्कुल गलत है। सब कुछ आपको मालूम ही है, जल जाता है या दफनाया जाता है तो आंखें तो चली ही जाती है, परंतु जो आप इतना नेक काम करके जाएंगे आपके अगले जन्म में जरूर फलित होगा। पहले तो आप ये समझ लें। दूसरा है कि इसमें शरीर के ऊपर कुछ भी कोई विकार कुछ नहीं आता है। जब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसको कैसे निकाला जाता है तो आप समझ जाएंगे, तो बिल्कुल कोई विकार नहीं आता है और बिल्कुल सेफली किया जा सकता है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को इसका जागरूकता होनी चाहिए कि कहाँ फोन करना है, कैसे बुलाना है
0: जी, और कुछ जी ये बात भी हम करेंगे कार्यक्रम में आगे जैसे से बढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास मैसेजेस आए हैं, कुछ वो मैं लेना चाहूंगी। ये मैसेज लिखा है, नमस्कार, मेरा नाम सुरेश पाल है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूं और मैं दिल्ली सुल्तानपुरी से लिख रहा हूं। जैसा मालूम हो मैम, बचपन से ही मैं दिव्यांग हूं और मैं अपनी आंखें ठीक कराना चाहता हूं, क्या मेरी रोशनी वापस आ सकती है? ये इनका प्रश्न है।
1: अगर आपकी रोशनी आंख के कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है, सिर्फ तभी ही आप आई डोनेटेड आई से आप इसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो पर्दा या पीछे का नस में कोई प्रॉब्लम है तो इसका इलाज डोनेटेड आई से नहीं हो सकता।
0: तो ये कहीं जाकर चेकअप करा सकते हैं?
1: बिल्कुल, आप चेक करा सकते हैं
0: जी,
1: तब पता चल जाएगा कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है या कोई और कारण है
0: जी। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में?
2: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: नमस्कार चट्ठा जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
1: सादर प्रणाम
2: डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल हैं।
0: हाँ जी।
2: पहला ये कि क्या कोई व्यक्ति जीते जी अपनी आई दोनों या एक डोनेट कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है? नंबर टू, अगर कोई आई डोनेट करना चाहता हो लेकिन अचानक उसकी डेथ हो जाए तो क्या उसके परिवार वाले उसकी आई डोनेट कर सकते हैं? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
0: नमस्कार, बहुत अच्छे प्रश्न आपके चट्टा जी, और आप रेडियो पर सुने डॉक्टर साहब जवाब दे रही हैं
1: जी। जो पहला प्रश्न है कि आप जीवित अवस्था में इसको दान नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है और कोई भी इसका दान लेगा ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न जो है कि अगर आपकी अचानक मौत हो जाती है तो बिल्कुल, अगर आपके परिवार वाले इसको फॉर्म भर के उसमें उनको रजामंदी देनी होती है, इसमें दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप अपना ही डोनर फॉर्म भर के अपने रिलेटिव्स और बैंक में, आई बैंक में जमा कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपकी डेथ हो तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये आपकी विश थी, ये आप चाहते थे कि आप अपने आईज डोनेट करें। और आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट टू किन जिसको कहते हैं, बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार, वो ही इसका फॉर्म भर के आपकी आईज डोनेट कर सकते हैं। नेशनल आई बैंक में भी इन्फॉर्म करना, जो भी आई बैंक आपके पास में है कहीं पे भी भारत में, वहां पर अगर आपने कार्ड दिया हुआ है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी अपनी रजामंदी दे रखी है, तो वो आके आपका आंख का दान ले लेंगे
0: जी। तो दान कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत लोगों के प्रश्न थे कि किस तरह से हम करें, तो ये भी मैडम ने क्लियर किया कि एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है,
1: ये गूगल पे भी आप जाएंगे, प्लेज फॉर्म, वो आपको बिल्कुल आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म कोई भी फॉर्म हो, किसी भी आई बैंक का हो, वो फॉर्म एक तो उस बैंक में आपके नजदीकी आई बैंक में देना चाहिए और दूसरा अपने रिलेटिव्स को भी बताना चाहिए कि ये फॉर्म मैंने भर दिया है और ये मेरी इच्छा है
0: जी। और जैसे इन्होंने अभी प्रश्न किया था चट्टा जी ने कि अगर वो करना चाहता है, हो सकता है उसने डिस्कस किया हो कोई भी कि मैं आई डोनेट करना चाहता हूं, पर फॉर्मली वो फॉर्म भरकर नहीं कर पाया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो क्या सिर्फ फैमिली के कंसेंट से हो सकता है?
1: बिल्कुल, फैमिली ही कंसेंट देती है, वो ही साइन करती है कि हमें डोनेट करना है।
0: अच्छा, तो ये हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है
0: जी। एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो
3: हेलो
0: जी।
3: हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार
3: शालिनी।
0: नमस्कार,
3: जी मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला हरियाणा।
0: हाँ जी जी, स्वागत है मिसेस बेदी कार्यक्रम में आपका।
3: थैंक यू जी। बात सुनिए, ये प्रोग्राम मैंने इतना मेरे दिल के करीब है कि देखो, मैं उन लोगों में से, हमारी फैमिली है जो कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, उसको हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो हमने एक फैमिली लिगेसी बनाई हुई है आंखें दान करने की और बॉडी दान।
0: अरे वाह।
3: मेरे मदर 83 के गए थे, उनका वो स्टिचेस वाला ऑपरेशन हुआ था सालों पहले। 50 साल वो डायबिटिक रहे, पर पीजीआई वाले कहते आपकी आंखें ठीक हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसी भी हालत हो मेरी आंखें जरूर देना। उनकी आंखें दी और मेरे को हो गए 15-16 साल अपनी बॉडी डोनेट किया हुआ है पीजीआई को।
0: ओके। बहुत तो अच्छी बात।
3: मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे वहाँ कुछ ऐड कराना पड़ेगा? एक तो अगर मेरी आईज लेंगे, ले सकते हैं तो वो लेंगे, और दूसरा मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी पे स्टडी हो, तो क्या मुझे वो वहाँ ऐड कराना पड़ेगा पीजीआई में?
0: सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मिसेस बेदी आप जुड़ी हैं कार्यक्रम में और इतनी प्रेरणादायक अपने बात बोली है। हमारे सभी सुनने वालों के लिए आप एक मिसाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैं तो लोगों को कहती हूँ वहम वगैरह छोड़ दो। इसी के मारे मेरे मन में गुस्सा है, जब क्रीमेशन होते, जब आंखें, चार आंखें चली जाती है, मेरे को बहुत दुख लगता है, तो मैं जाना

0: छोड़ दिया क्रीमेशन पे, कोई भी डेथ हो क्लोज की किसी चीजों में जाती नहीं, तो इसलिए लोगों से आप कहेंगे तो शायद लोग मान जाएंगे।
1: नहीं, हमारी कोशिश यही है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अवेयरनेस लाएं, और जो बात आप कह रही हैं उसी का ही उद्देश्य लेकर हम इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो ये भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स हैं, वो बिल्कुल ब्रेक हो,
0: वो चली जाए।
1: जी जी, और हमारे साथ
0: के लिए मैं आपको बहुत मुबारक,
1: थैंक यू सो मच। आप इस तरह से सुनती हैं,
0: वहां से एम्स से भी जो डॉक्टर आए थे, मेरी कॉल नहीं मिली, उनके लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया था, और ये डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा बता रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ यहाँ लेकर आते हैं जिनकी बात आप सब समझते हैं, तो डॉक्टर सरिता बेरी उनमें से एक हैं। आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं।
0: मैं 8 साल काले मोतिया में रही, 8 साल, 9 साल हो गए मुझे SLT कराए हुए।
1: जी,
0: जब मेरा काला मोतिया डिक्लेयर हुआ, मैंने सबसे पहली बात अपने डॉक्टर से पूछी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आंखें दे सकती हूँ। हमारे मन में ये दान की भावना बहुत ज्यादा है।
1: बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब जो आपका प्रश्न है हम वही प्रश्न चाहेंगे कि डॉक्टर साहब सबको बताएं उसका जवाब।
0: जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस बेदी, आप मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जागरूकता फैला रही हैं और उत्साहित भी कर रही हैं सबको। तो आपने दो बोला है, नेत्रदान और देहदान, ये सबसे महादान है। और नेत्रदान तो जैसे आपने बताया कि दोनों आपने PGI में प्लेज कर रखे हैं, और ये आपके जो बिल्कुल नजदीकी एक रिश्तेदार हैं उनको पता होना चाहिए कि आप ये आपकी ये इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा वही आपकी पूरी करेंगे। तो इसलिए
0: एक मिनट टोक रही हूँ आपको, मैं अकेली हूँ, मेरे को यहाँ किसी को नहीं बताने की जरूरत
2: नहीं। देखिए,
0: मैंने फिर भी ना अपने मंदिर के एक बुक में रखा हुआ है, मेरे नेबर है बड़े क्लोज, उनको बोला हुआ है कि जब हो मेरे नेत्रदान भी चाहिए और बॉडी भी चाहिए देने के लिए, बेटा जब आएगा तब तक मेरी मॉर्चरी में बॉडी रख देना।
1: तो किसी को तो बताना पड़ेगा ना मिसेस बेरी।
0: बता दिया मैंने ऐसे जी, तो उनको
1: बता जी, यही डॉक्टर साहब का मतलब है। जी जी,
0: हाँ जी, हाँ जी, जी। तो डॉक्टर PGI में फिर मैं वहाँ इन्फॉर्म करूँ क्या?
2: नहीं, आपको जो आपने करना था वो आपने कर दिया, अब तो हाँ मरने उपरांत आपके जो रिश्तेदार हैं वो ही बताएंगे कि इस टाइम तक ये कर सकना है, देहदान कब करना है, है ना? हाँ जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज देहदान नेत्रदान खुल के कीजिए, डरिए मत।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस बेदी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ी और ये मैसेज आपने सब सुनने वालों तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच
1: जी, थैंक यू। और ये हमें एक मैसेज भेजा है, लिखने वाले हैं सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर से, और साथ ही साथ मोहम्मद इम्तियाज नई दिल्ली से लिख रहे हैं कि शालिनी मैम गुड आफ्टरनून, एंड डॉक्टर साहब आपको भी गुड आफ्टरनून। आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आई डोनेशन तो मैं करूंगा जरूर, और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी मैं इसके लिए जागरूक करूंगा। मेरा एक सवाल है, मेरी लेफ्ट आई के पर्दे में प्रॉब्लम है जिससे मुझे विजन बहुत कम है, या चीज बहुत छोटी दिखाई देती है, या करीब कभी कभी नहीं दिखाई देती या खराब दिखाई देती है। एम्स में भी दिखाया है, डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। मैम प्लीज बताएं क्या कुछ हो सकता है क्या?
2: ऐसा है जो आपने बताया कि आपके पर्दे में प्रॉब्लम है, इसी कारण आपकी निगाह कमजोर है। तो जैसे मैंने बताया है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस सिर्फ आगे का जो कंचा है उसी को बदल के निगाह को ठीक किया जा सकता है। पर इसमें मैं एक यह बात बता दूं कि अगर पर्दे की भी प्रॉब्लम है तो भी आप डोनेशन करके किसी को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ठीक कर सकते हैं। आपकी ना ठीक हो तो परंतु किसी दूसरे की आंख ठीक कर सकते हैं आप।
1: ऐसे ही एक प्रश्न आया है यूपी हकीमगंज से, आसिफ अंसारी लिख रहे हैं, मुझे आंखों से कभी कभी धुंधला दिखाई देता है, बाकी समय सही दिखता है, ऐसा क्यों हो रहा है आप मुझे बताइए, और मैंने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मेरी उम्र 24 साल है, तो कभी कभी धुंधला किस कारण से हो सकता है?
2: ये आपको जो कभी कभी धुंधला दिखता है, हो सकता है कि आपको चश्मे की जरूरत हो। तो सबसे पहले तो आप आंख के डॉक्टर को दिखाइए, तो चश्मा जांच होता है इसमें सबसे पहले, काला मोतिया भी रूल आउट करना पड़ता है, तो इसमें जरूरी नहीं, ये तो सब कुछ आपका ठीक हो सकता है। और कई बार ड्राई आईज, जब आप कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आंख में थोड़ा सा सूखापन आ जाता है, उसकी दवाइयां होती हैं, वो सब आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं।
1: जी, तो ये एक आम समस्या आपने आंख की जो आज आपने लिखी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज का हम कार्यक्रम जो है वो आई डोनेशन पर, यानी नेत्रदान पर कर रहे हैं, तो नेत्रदान से जुड़ी अगर कोई बात आप करना चाहें, कोई प्रश्न करना चाहें तो उस पर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम तब इस पूरे टॉपिक को ज्यादा कवर कर पाएंगे। एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
3: हाँ जितेंद्र जयपुर से।
1: जी जितेंद्र जी, बताएं।
3: अच्छा कोई वेबसाइट है क्या आई डोनेशन का कि जिससे सारा स्टेट का और सारा वो चीज मिल जाए? पहला प्रश्न तो ये है। और मैडम क्या जैसे कि जानवर की आंख से भी क्या दिख सकता है क्या आदमी को
1: जी?
3: अगर उसका मतलब वो ट्रांसफर किया जाए तो क्या जानवर की आंख से भी दिख सकता है?
1: अच्छा, एनिमल टू ह्यूमन आप चाह रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैम ने सुन लिया है, मैम जवाब दे रही हैं।
2: जो वेबसाइट आप कह रहे हैं तो अगर आप आई बैंक पे जाएंगे तो वेरियस स्टेट्स के आई बैंक के नंबर आ जाएंगे आपके पास। वेबसाइट आई बैंक आप गूगल करेंगे तो आपको आई बैंक्स ऑफ वेरियस स्टेट्स आपको पता चल जाएंगे। जो आपके सबसे नजदीकी आई बैंक है उसको कॉन्टैक्ट करके अपना प्लेज फॉर्म दे सकते हैं। दूसरा जो आपने बताया है कि ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है, क्योंकि हमारे जो जीन्स होते हैं, डीएनए जो होता है, वो हमारे कॉर्निया वो एक जानवर से या किसी और चीज से नहीं जा सकता। ये सिर्फ ह्यूमन ट्रांसप्लांट ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है, इसीलिए इसका डोनेशन बहुत जरूरी है। और ये लेबोरेटरी में भी नहीं बन सकता है, ये अभी सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन है। लेबोरेटरी का भी बहुत सारे प्रशिक्षण रिसर्च चल रही है कि लेबोरेटरी से कुछ ऐसा बन जाए, पर अभी तक सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन डोनेशन ही पॉसिबल है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान पर। नेत्रदान क्यों जरूरी है, क्यों इसे महादान कहा जाता है, और डॉक्टर सरिता बेरी हमारे साथ हैं। आप निदेशक हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और साथ ही निदेशक प्रोफेसर हैं नेत्र विभाग में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और प्रश्न अगर दिमाग में कोई आ रहे हैं तो जरूर झिझकिए नहीं, 4 बजे तक हमारे जो ये कार्यक्रम है आप सुन सकते हैं। प्रतिदिन 3 से 4 एफएम रेनबो पर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: और श्रोताओं को एक बार पुनः बता दें, हमारे वो श्रोता जो देर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम नेत्रदान पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर सरिता बैरी। आप डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और डायरेक्टर प्रोफेसर हैं नेत्र विभाग में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं वो फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या इनके प्रश्न हैं जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्ते,
1: मैं दीप कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ फरीदाबाद से
0: जी।
1: मेरी राइट आई में थोड़ा रिंग दिखता है हमेशा मुझे, और अंधेरे में थोड़ी लाइट सी चमकती है। मैंने पर्दा वर्दा चेक कराया तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका जेल कम हो गया है पर्दे के पीछे, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्या?
2: ऐसा है, जो आपको एक मकड़ी का जाला दिखता है जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपके निकाह के सामने घूमता है, और
1: जी हाँ, जी हाँ।
2: और एक आपको बिजली सी कड़कती है, अंधेरे में भी कड़कती
1: जी
2: है।
1: जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये जो हमारे आंख के आगे और पीछे का हिस्सा एक जो बॉल की तरह होता है, उसके अंदर एक जेल होती है जिसको विट्रस कहते हैं। वो विट्रस जब डिजेनरेट हो जाता है उम्र के साथ या कुछ और कारण भी होते हैं, तो ये एक मकड़ी का जाला दिखता है। तो इसके लिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार डॉक्टर को दिखा लिया, उन्होंने देख लिया कि आपका पर्दा ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इस रिंग को।
1: लेकिन वो हमेशा दिखता है डॉक्टर, वो कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, वैसे ही रहेगा आपका,
2: वो दिखता रहेगा। आप उसको इग्नोर कर देंगे तो वो आपके आपको दृष्टि में कोई विघ्न नहीं डालेगा।
1: और अंधेरे में जाते हैं तो लाइट सी मारता है बार बार, जैसे बिजली चमक रही है,
2: वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा।
1: अच्छा
0: जी, धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो,
3: मेरा नाम किशन लाल है जी, मैं वजीराबाद दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी। अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
3: प्रश्न ये है जी कि जैसे कोई स्पॉट है जैसे 10 फीट पे या 20 फीट पे मेरे को 3-3 दिखाई देते हैं,
0: और क्या बताना चाहेंगे?
3: मैंने अपने लड़के की भी आंखें दान की हुई है और मैं अपनी भी करूंगा, क्या ये क्या बीमारी है जी, कुछ बता सकते हैं
0: जी? डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको, आप तो रेडियो पर सुने जी।
2: आप जो बता रहे हैं कि आपको एक चीज के 2 या 3 इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आंख से 2-3 दिखती हैं या दोनों आंखें खुली हो तो 2-3 दिखती हैं?
3: दोनों से।
2: तो इसको सकता,
3: राइट वाली में तो बहुत कम रोशनी है,
2: तो इसका मतलब आपको हो सकता है कि मोतिया आ रहा हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है 2 या 3 दिखने के। और दूसरा होता है कि हो सकता है आपको चश्मे का नंबर आ गया हो, तो आप अगर विशेषज्ञ को दिखाएंगे तो सबसे पहले वो चश्मा जांच कर लेंगे देखने के लिए कि आपको ये 2-3 क्यों दिख रहे हैं। ये आंख के पर्दे से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये आंख के कंचे से रिलेटेड है, तो इसलिए आप नेत्रदान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु आप अपने आप को सही कर सकते हैं
0: जी। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आप निकट के कोई भी नेत्र चिकित्सक के पास जाकर पहले एक बार अपना चेकअप करा लें और नेत्रदान करने में कोई समस्या नहीं आएगी, डॉक्टर साहब आपको बता रही हैं। एक प्रश्न आया है डॉक्टर साहब मैसेज के माध्यम से, राकेश कुमार हमें लिख रहे हैं। नमस्कार शालिनी जी, खरखौदा सोनीपत हरियाणा में रहते हैं मैम, मुझे नजदीक का चश्मा लगा हुआ है, उम्र है 44 ईयर्स, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूँ? ये इनका प्रश्न है।
2: कोई भी चश्मा हो, कितने भी नंबर का हो, तो सब नेत्रदान कर सकते हैं। 44 उम्र पे तो सबको नजदीक का नंबर लग ही जाता है, तो ये आप समझ लें कि चश्मा पहनने वाले लोगों को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेत्रदान करने की
0: जी। तो जैसा आपने बताया कि कोई भी उम्र हो नेत्रदान किया जा सकता है, तो ये भी बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसे वर्ग भी हो सकता है जो नहीं कर सकता है? कुछ ऐसा कारण बन सकता है कि कोई नेत्रदान चाहे पर कर ना सके?
2: कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसके कारण डेथ हुई होती है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, HIV, रेबीज, और कुछ ऐसे दिमागी के वायरस होते हैं जो कि नेत्रदान वो वाला कॉर्निया जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, तो डोनर में आ सकता है। सिमिलरली आंख की जो कोई कैंसर होता है या वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम वो बहुत कम होती हैं, तो मेरी राय में सभी को नेत्रदान करना चाहिए। ये जिसको नहीं करना है वो डॉक्टर जब उसको प्रोसेस करते हैं तब डिसाइड कर लेते हैं।
0: अच्छा, तो ये भी बताइए प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि कितना पहले कितने अंतराल में ये निकाल लेनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कहीं डोनर है जिसने अपना प्लेज किया हुआ है कि मुझे नेत्रदान करना है, तो उनके नजदीकी को पता चलता है कि वो अब नहीं है, तो कितना कैसे वो कितनी जल्दी सूचित करें और टीम आए, तो वो क्या प्रोसीजर रहता है वो भी बताएं प्लीज।
2: शालिनी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को यही रहता है कि क्या करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक फोन नंबर आई बैंक का आपके पास होना चाहिए और

0: आपके नजदीकी रिश्तेदार को पता होना चाहिए कि यह आपकी इच्छा है। अगर आपने इच्छा नहीं भी जाहिर कही है तो भी रिश्तेदार की अगर इच्छा है तो भी ये हो सकता है। वो फोन करेंगे और जैसे ही फोन करेंगे तो टीम पूरी आ जाती है। इस दौरान आप जो शरीर है उसके आंखें बंद कर दीजिए, पंखा ऑफ कर दीजिए, एसी को ऑन रहने दीजिएगा। अच्छा। उसके ऊपर गीली साफ कॉटन दोनों आंखों पे रख दीजिएगा और थोड़ा सा एक पिलो, थोड़ा सा सिर को ऊपर करके रखिएगा और 6 और 8 घंटे के बीच में ये टीम विद इन इस टाइम अंतराल में आ जानी चाहिए और उसको जो कॉर्निया और थोड़ा सा 3 से 4 मिलीमीटर स्क्लेरा उसको ले लेती है, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और उसके अंदर पर एक कैप लगा देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये डोनेट हो गया है। और जब डॉक्टर की टीम आती है तो सबसे पहले वो अपने नजदीकी रिश्तेदार से एक फॉर्म साइन करवाती है कि हम डोनेट करने के लिए राजी हैं। दूसरा एक देखते हैं कि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट और किस कारण डेथ हुई है। तीसरा वो ले लेती है कॉर्निया और फिर उसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं, अबाउट 10 ml सैंपल लेके जाते हैं जिससे ये जो मैंने बताया है वायरल मार्कर्स के लिए, क्योंकि ये वायरल मार्कर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी वो कॉर्निया रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो सकता है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए डोनेट करना हर एक के बस में है और
1: करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि रिसर्च भी बहुत जरूरी है और जब तक रिसर्च नहीं होगी तो कई बीमारियां जो हैं उससे संबंधित उसका हल हमें नहीं मिलेगा। आपने बताया कि उन्हें फोन करना चाहिए, तो मैं ये भी चाहूंगी कोई ऐसे फोन नंबर्स हो जहां पर लोग कॉन्टेक्ट कर सकें, वो आई बैंक के जो आप बताना चाहें इस मंच के माध्यम से।
0: हमारा दिल्ली में तो नेशनल आई बैंक एम्स का है जो 24 घंटे खुला रहता है, उसके नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। दिल्ली का अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 011 आएगा, उसके बाद 2659-3060 या 011-2658-9461, ये नेशनल आई बैंक है। इनसे आप किसी स्टेट से भी अगर कर रहे हैं तो भी इनसे पूछ सकते हैं कि उनके नजदीकी कौन सा आई बैंक जो कि आके टीम डोनेशन ले
1: इस नंबर पर और अधिक जानकारी भी इनको मिल जाती है। तो हमारे वो श्रोता जो इस कार्यक्रम में भी आप ये कॉन्टेक्ट नंबर सुन रहे थे डॉक्टर से, वो अगर नहीं लिख पाए हो मैं पुनः इसको एक बार रिपीट करूंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। हमारे श्रोता जुड़ गए हैं फोन लाइन के माध्यम से। हेलो।
2: हाँ जी, हेलो
1: जी, आप है रेडियो डॉक्टर में, हम सुन पा रहे हैं, आप प्लीज अपना नाम बताएं।
2: हाँ जी मैम, सुनील कुमार बोल रहा हूँ उत्तमनगर से।
1: जी जी सुनील जी बताएं, प्रश्न करें।
2: मेरी आंख में होली के दिन रंग गिरने से फंगल इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद राइट साइड की जो आई है उसके अंदर अभी जो ना फंगल इन्फेक्शन तो ठीक हो गया मगर जो ना अब दिखता नहीं मेरे को, तो डॉक्टर कह रही हैं कि जो है ना ये आपका आई का जो कॉर्निया है ये चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा। सरकारी डॉक्टर में कहते 1-1.5 साल लग जाएगा आपका चेंज करने में, कोई समाधान बताएं प्लीज, मैं तो काफी परेशान हूँ क्योंकि अकेला ही रहता हूँ। जी
1: जी जी मैम आपको बता रही हैं, प्लीज आप सुने रेडियो पर।
0: ये जो आपने बताया ये सबसे कॉमन कॉज होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का, क्योंकि अल्सर हो गया है और जब वो हील करता है तो एक ओपेसिटी, एक उसमें अंधापन छोड़ जाता है। इसमें जैसे मैंने बताया है कि जो कॉर्निया दान करते हैं वही कॉर्निया आपको मिलेगा, पर जैसे अगर हम जाने तो ऑलमोस्ट 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये कॉर्निया का डोनेशन चाहिए और हर साल तकरीबन 20,000 से कम डोनेशंस होती हैं, तो इसलिए ये लंबी वेटिंग लिस्ट चलती रहती है और ये वेटिंग लिस्ट में से पहले उन लोगों को बुलाया जाता है जिनकी दोनों आंखों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो। जो एक ही आंख में जिसको ओपेसिटी होती है उनको फिर थोड़ा नीचे लिस्ट में रखा जाता है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। और जागरूकता ये भी कहेंगे कि कॉर्निया डोनेट करें, क्योंकि 75 लाख डेथ्स इंडिया में होती हैं, अगर सभी के कॉर्निया डोनेट हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी ही नहीं।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो मैडम ये कह रहा मैं लेडी हार्डिंग में भी ये सुविधा है जहाँ पे मैं कॉर्निया चेंज करा सकता हूँ।
0: हाँ जी, लेडी हार्डिंग में भी ये कॉर्निया चेंज होता है, परंतु जैसे मैंने बताया है कि आपका नाम थोड़ा वेटिंग लिस्ट में ही आएगा क्योंकि जो दोनों आंखों से ब्लाइंड है पहले उनको कॉर्निया दिया जाता है।
2: जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।
1: तो यही हमारा आज उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो नेत्रदान करें इसके लिए हम परसुएट कर पाए और साथ ही साथ वो मिथ्स भी बर्स्ट कर पाए जिसके कारण वो नहीं कर रहे हैं। तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर शालिनी मित्तल के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान पर। हमारी आज की विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सरिता बेरी। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं और काफी अवेयर हो रहे हैं आपकी इन बातों से जो आप बता रही हैं। नेत्रदान से संबंधित जो आपने मिथ्स बताए हैं उनको भी हमें समझने में बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बातें, और हमारे श्रोता हमें लिखकर भेज रहे हैं वापस कि उन्हें ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है। एक श्रोता एक समस्या के साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, आइए इनसे पूछ लेते हैं। हेलो
2: हेलो मैडम जी, मेरा नाम शाहरुख है
1: जी।
2: हेलो।
1: हाँ शाहरुख जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न करें। कहाँ से कहाँ रहते हैं आप
2: जी? मंगलपुरी में रहता हूँ मैं।
1: अच्छा जी, आप प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: मैडम जी मेरी समस्या ये है कि जो सफेद रंग की हमारी आंखों के सामने गुब्बारे फूटते हैं और दो ब्लैक कलर के लट्टू से घूमते हैं। मैम 5% हमारी आंखों में रोशनी बताई गई थी, तो रोशनी आगे तक बनी रहे तो इसके लिए कुछ सलूशन है?
3: शाहरुख जी आपने बताया कि आपके आंख के आगे कुछ काले काले धब्बे से घूमते हैं और मैं समझ रही हूँ कि सिर्फ 5% रोशनी या 95% आपकी रोशनी जा चुकी है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको काला मोतिया है या फिर आपको शुगर के कारण आंख के पर्दे में प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके कारण आपको खून के धब्बे आ रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों का इलाज करेंगे तो आपकी इतनी निगाह बरकरार रह सकती है, और इसमें कॉर्निया ठीक होता है यूजुअली, और कॉर्निया डोनेशन किया जा सकता है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आंखों की रोशनी बनी रहे उसके लिए,
3: उसके लिए अगर जो भी बीमारी है उसका पूरा इलाज करिएगा, जैसे काला मोतिया है तो उसकी दवाइयां होती हैं, और अगर शुगर के कारण पीछे काले धब्बे

0: हैं तो उसमें भी लेजर होता है, कुछ आंख के अंदर दवाइयां डाली जाती हैं जिससे ये बिल्कुल ठीक तो नहीं होगा, पर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ठीक
0: जी
1: है मैम, थैंक यू।
0: जी और शाहरुख जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि ये कंट्रोल हो सकता है, और दूसरी बात ये बोली कि आप भी आई डोनेट कर सकते हैं जी। और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है, लिखने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने जानना चाहे कि गुड आफ्टरनून ये लिखा है, मैं इनके शब्द पढ़ देती हूँ। दोज पर्सन्स हु कैनॉट सी दिस वर्ल्ड थ्रू देयर आईज नीड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आई डोनेशन। माई क्वेश्चन इज कि अगर कोई आई डोनेट करना चाहता है तो इनकी क्वेरी ये है कि ब्रेन डेड को कहा जाता है कि वो आई डोनेट कर सकते हैं, या कोई डेड हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डज इट मेक्स अ डिफरेंस? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप जान लीजिए कि जो किडनी, जैसे बहुत सारे हमारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग, लिवर, ये सिर्फ जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर संचार है, तभी हो सकता है। तो वो ब्रेन डेड जो होता है, उसको अपनी कोई सुध-बुध नहीं रहती है, वो शरीर से निकलने वाली है आत्मा, परंतु उसी स्टेट पे ये जो ऑर्गन्स हैं डोनेट हो सकते हैं। जैसे मैंने फिर बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर। परंतु जैसे आंख है, त्वचा है, बोन्स हैं, ये मृत शरीर से भी निकाल के डोनेट हो सकती हैं। इसलिए इनका डोनेशन सिंपल है, आसान है, और जागरूकता फैलने की जरूरत है, क्योंकि इसमें तो 100% डेथ हो चुकी है। ब्रेन डेड में फिर भी लोग समझते हैं, रिश्तेदार सोचते हैं कि शायद इसमें जीवन आ जाए, उनका डोनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: तो ब्रेन डेड कर सकता है, ये चीज है, और आपने डिफरेंस भी बताया कि क्या है। मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे श्रोता एक फोन लाइन पर जुड़े हैं, पर उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो आप बता रहे हैं, ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है, इसकी सक्सेस रेट क्या होती है, कि ये 100% सक्सेसफुल हो जाता है?
0: जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम करते हैं, तो जो हमारा कॉर्निया होता है, जो आगे का कंचा हम समझ रहे हैं, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो जैसे हम कंपेयर करें किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो रिजेक्शन हो जाती है अगर हम एक दूसरे आदमी का लगाते हैं, तो
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सारी दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि
1: जी
0: रिजेक्शन ना हो।
1: जी
0: ये रिजेक्शन कॉर्निया में नहीं होती, इतनी आम नहीं है, फिर भी इसमें रिएक्शन जरूर होते हैं। तो एक साल तक ये रिएक्शन ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। तो इसलिए ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मरीज को बार बार आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो यूजुअली 1-2 साल तक उनको आंख के डॉक्टर के पास जाते रहना होता है, और अगर जरूरत पड़े तो बाद में भी चश्मा भी लग जाता है, परंतु निगाह काफी अच्छी आ जाती है, नियरली 80% सक्सेस रेट हो जाता है।
1: जी, एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो,
1: जी
2: नमस्कार मैम, मैं आरती सुराना बोल रही हूँ।
1: जी आरती जी, कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं दिल्ली से बोल रही हूँ।
1: क्या
2: मेरा
1: प्रश्न
2: प्रश्न
1: पूछना
2: था
1: चाहेंगी?
2: डॉक्टर जी से कि
1: हाँ
2: मेरा हाई मायोपिया है और मेरा पावर भी -16 है, मतलब -16, तो क्या मेरा चश्मा हट सकता है या मेरी आंखें ठीक हो सकती है? बिकॉज एक बार ही डॉक्टर ने ये तो कहा था कि लेंस बदलने के बाद ठीक हो सकता है, पर हाई मायोपिया और नंबर ज्यादा होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ।
0: जी आपका जो प्रश्न है, -16 नंबर के साथ भी आपकी निगाह तो अच्छी है, तो इसमें आप कांटेक्ट लेंस लगा सकते हैं। और
2: कॉन्टेक्ट लेंस से होता क्या है डॉक्टर, मेरे को ना थोड़ा टाइम बाद दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मैं एक दिन जैसे लगा लिया, जब मैं उसे रिमूव करती हूँ ना, उसके बाद मेरे आई पेन होगा, मेरे हेडेक होगा, तो मैं इसलिए उसे अवॉइड करती हूँ, मुझे लगा नहीं पाती मैं
0: ठीक है,
2: उसे।
0: अगर कांटेक्ट लेंस नहीं लगा सकते तो कुछ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती हैं, आपने भी
2: हाँ
0: सुना
2: जी
0: होगा,
2: हाँ
0: जिसके
2: जी
0: जिसमें हम कॉर्निया में तब्दीली ला देते हैं, जिसके कारण आपको फिर चश्मे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक
2: जी
0: फेकिक आईओएल भी होता है अंदर आंख में, एक आपके नॉर्मल लेंस के ऊपर एक और लेंस लगा दिया जाता है, जिसके
2: हाँ
0: कारण
2: जी
0: आपका जो हाई नंबर है वो भी चला जाता है। ये दो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आजकल काफी सक्सेसफुल हैं।
2: तो डॉक्टर, क्या परमानेंटली ठीक हो सकती है मेरी आईज, या आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है,
0: नहीं,
2: जिस तरीके से है?
0: आगे जाके नंबर तो शायद इतना ना बढ़े, परंतु पर्दा जो है वो तो वैसे ही रहेगा आपकी आंख का, तो पर्दा दिखाते रहना पड़ता है,
2: हाँ
0: क्योंकि
2: जी वो हाँ जी
0: पर्दे में कमजोरी रह सकती है।
2: हाँ जी तो मतलब सर्जरी जो लेजर होता है उसके बाद मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं?
0: लेजर भी एक आम लेजर नहीं होगा, -16 में एक
2: हाँ
0: डिफरेंट तरह का
2: जी
0: लेजर होगा।
2: अच्छा, मतलब ठीक हो सकती है ये
0: ठीक हो
2: है?
0: सकती है, बिल्कुल।
2: अच्छा, थैंक यू सो मच
0: थैंक
2: डॉक्टर,
0: यू,
2: थैंक
0: थैंक यू
2: यू।
0: फॉर कॉलिंग एंड टॉकिंग टू आर एक्सपर्ट। और हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो
1: सर नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछ लें, नाम बताकर।
3: डॉक्टर साहब।

0: नाम रमेश है
1: जी,
0: मैं अपर यूपी से बोल रहा हूँ
1: जी। रमेश जी प्रश्न करें।
0: डॉक्टर साहब, जब मेरे आंखें खुलते हैं रात को ब्रात को,
1: हाँ,
0: तो मेरे आंखों के जैसे ताए होते हैं ना, वैसे झिलमिल जाती है आइस क्यूब वगैरह।
1: अच्छा, आपने बताया कि अगर आपकी रात को नींद खुल गई तो आपके आंखें आगे झिलमिला दिखती है,
0: हाँ जी, जैसे तो, तारे होते ना छोटे मोटे।
1: हाँ, तो जब हम सोते
0: तो
1: हैं,
0: नजर आते हैं आज के वगैरह।
1: अच्छा, एक तो है कि जब झिलमिलाहट से दिखती है थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, वो आंख की ड्राइनेस,
0: हाँ,
1: के कारण होते हैं, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारी आंख के पानी थोड़ा सूख जाता है, आंख खोलने
0: हाँ
1: पे
0: जी,
1: एकदम ड्राइनेस होती है, तो वो दवाइयों से ठीक हो जाती है। ये
0: हाँ
1: कोई
0: जी,
1: ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दिखाएंगे तो इजिली इलाज हो जाता है,
0: तो कोई दवाई है
1: बहुत
0: आपके पास?
1: बहुत आसानी से, पर परंतु मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लीजिए।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है,
2: हम यहाँ पर दवाई का नाम इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका जब तक चेकअप ना हो किसी चिकित्सक के पास, तब तक आप कोई दवाई किसी के कहने पर प्लीज ना लें, क्योंकि डॉक्टर साहब इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे
1: बिल्कुल
2: बैठ के,
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि कई बार कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप चेकअप करते हैं उसके बाद ही कोई दवाई देते हैं। ये हमें आनंद कुशवाहा ने डॉक्टर साहब मैसेज किया है एमपी रीवा से, ये लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आईज कब तक जिंदा रहती हैं, अगर आदमी डेड हो जाता है तो कब तक उसकी आईज जिंदा रहती हैं। और दूसरा मैं अपना एक ऐड करना चाहती हूं, जैसा आपने बताया कि आईज निकाल ली है, कॉर्निया निकाल कर कितनी देर तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है जी, बताएं।
1: आपका प्रश्न दो तरह लिया जा सकता है, एक तो आप कह रहे हैं कि अगर आईज डोनेट कितनी
2: हाँ,
1: देर तक कर सकते हैं, तो वो तो मैंने जैसे पहले बताया था कि 6 और 8 घंटे मरणोपरांत
2: बताया,
1: कर
2: हाँ जी,
1: सकते हैं, परंतु उसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि अगर गर्मियों का मौसम है या उसमें थोड़ा कम हो जाता है टाइम, तो एसी कमरा है या मॉर्चरी में भी कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं तो थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है। सर्दियों में 8 से 10 घंटा है क्योंकि वैसे ही ठंड का मौसम है, फिर भी जो आप कॉटन रख रहे हैं उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दीजिएगा और तो 1 घंटा और आगे जाया जा सकता है, और फिर भी मॉर्चरी में जो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं उसमें आजकल और 12 घंटे तक रखा जा सकता है। और ये जो कॉर्निया निकाल के जब हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालते हैं तो हम उसको 3 दिन तक जिंदा रख सकते हैं,
2: 3 दिन तक उसको
1: इस्तेमाल
2: किया
1: जा सकता है। आजकल रिसर्च के दौरान और लंबा लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है, पर इंडिया में हम 3 दिन ही रखते हैं
2: जी।
1: उसके अंदर ही आई बैंक डॉक्टर्स और रजिस्ट्रेशन में जो पेशेंट्स हैं उनको बुला के उसको टिश्यू को दे दिया जाता है
2: जी। और ये जो आपने 3 दिन का समय बताया ये प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी बताइए कि आई बैंक का क्या रोल होता है, जैसे प्रिजर्वेशन के अलावा भी कोई उनका रोल होता है इसमें?
1: बिल्कुल, ये आई बैंक्स जो होते हैं इनमें इनका बहुत बड़ा रोल है कि वो एक तो जैसे बताया कि कॉर्निया रिट्रीव करेंगे, उनके पास एक पूरी टीम होती है, जब फोन आता है तो वो जाके उनमें डॉक्टर्स होता है, ऑफकोर्स ड्राइवर होता है और एक हेल्पर होते हैं जो जाके वहां पर थोड़ा ग्रीफ काउंसलिंग भी करते हैं, और फिर कॉर्निया को जब लेना होता है तो डॉक्टर्स देखते हैं कि उनके कॉज ऑफ डेथ क्या था, फिर उसके साइन करवाते हैं कि हाँ हम डोनेट कर रहे हैं, एक ब्लड सैंपल भी ड्रॉ करते हैं, और इसके बाद फिर वो ले जाके अपने आई बैंक में एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि वो कॉर्निया देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, जो हमारे ब्लड सैंपल है उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है कि इसमें कोई वायरस नहीं है, तब वो कॉर्निया एक रजिस्ट्री जो हमने रखी हुई है पेशेंट्स को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये कॉर्निया आ गया है, पेशेंट आ गया है, तो अब इसके ऊपर ऑपरेशन करके इसको बदल दिया जाए
2: जी। तो एक पर्सन अगर अपनी आई डोनेट करता है तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है?
1: एक पर्सन अगर करता है तो मिनिमम 2 लोगों को फायदा है, क्योंकि एक आंख एक को जाएगी, पर हमारे पास ऐसे भी है कि कुछ आंखें 8 लोगों तक भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कॉर्निया के भी अब बड़े हिस्से हो गए हैं जिसको एंडोथेलियम, डेस्मेंड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, एपिथेलियम, और इवन कॉर्निया के कंजंक्टिवा के साथ वाले कंजंक्टिवल टिश्यू भी यूज किया जा सकता है। तो ये प्रशिक्षण के बाद ही पता चलता है कि ये कॉर्निया कितनों को लग सकता है, 2
2: अच्छा।
1: को तो मिनिमम लग ही सकता है और ज्यादा को भी लग सकता है,
2: तो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं,
1: बहुत तरह की बीमारियों को हेल्प कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और साथ में रिसर्च भी आपने बोला कि उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो,
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार,
3: आप शालिनी जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहे हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जी मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, दिल्ली छावला से। जी
2: जी राजकुमार जी, आप प्रश्न करें, समय हमारे पास थोड़ा कम है।
3: जी जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है जी।
1: नमस्कार नमस्कार
3: मैडम जी, हमारी बेटी है करीब 38 साल की है, उनकी आँख में कुछ ऐसे लग गया था जी।

0: गिर गई थी, तो जी उनको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है जी, बिल्कुल आंख कह रहे हैं चली गई है, ठीक नहीं होगी जी, और सफेद हो रही है जी, क्या वो ठीक हो सकती है क्या मैडम जी?
1: तो आपने बताया कि चोट लगी थी गिरने के कारण,
0: हाँ
1: तो गिरने के कारण आंख के आगे की परत पे प्रॉब्लम कॉर्निया पे आई है या रेटिना पे आई है, ये पहले तो देखना होगा। अगर कॉर्निया पे आई है तो फिर उसको आई डोनेशन जो होती है उसके साथ उसको बदल के उसको ठीक किया जा सकता है, पर अगर पर्दे पे आई है तो उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा
0: जी। डॉक्टर साहब ने बोला है हो तो जाएगी लेकिन ये आंख बदली करनी पड़ेगी जी, बदलनी पड़ेगी।
1: हाँ, तो अब उससे पता चल रहा है कि आई डोनेशन वाली ही आई लग सकती है इसको।
0: तो वो आई डोनेशन वाले फ्री में हो जाता है जी मैडम?
1: ये बिल्कुल फ्री में होता है, जो भी डोनेशन करता है और जो लेता है किसी को कोई पेमेंट का इसमें अदल बदल नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री है, आई बैंक भी फ्री करता है, कोई कॉस्ट नहीं लगती इसमें।
0: तो संपर्क कहाँ से किया जाए मैडम जी?
1: आप आई बैंक को कांटेक्ट करिए, वो आपको बता देंगे कि किस अस्पताल अच्छे बड़े अस्पताल में भी कर सकते हैं आप कांटेक्ट, तो वही आपको बताएंगे कि किस आई बैंक में आपको रजिस्टर करना है।
0: जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार। जी नमस्कार, और आपके माध्यम से बहुत सी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची, आपके जो प्रश्न थे उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे सुनने वालों को पता लगा कैसे कांटेक्ट करना है और कब आई डोनेशन फायदा कर सकती है या किसकी लग सकती है। एक चलते चलते एक प्रश्न हमारे पास आया, मनदीप जी ने लिखा है रोहतक से, इज देयर एनी पैन इंडिया सेंट्रलाइज नंबर फॉर आई डोनेशन?
1: ऐसा अभी कोई नंबर नहीं है, पर ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम ये सोच भी रहे हैं कि एक ऐप बनाया जाए जिसमें कि इस तरह के नंबर्स डाले जाएं।
2: जी ये हमें मैसेज लिखा है, नाम इनका मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर टुडेज प्रोग्राम डॉक्टर एंड शालिनी मित्तल मैम एंड वी एक्सपेक्ट मोर सच प्रोग्राम्स इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हम बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे, आप इसी तरह से कार्यक्रम में जुड़े रहिए और हमसे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लेकर अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। और आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी भागीदारी की जरूरत है, आप ना सिर्फ अवेयर हों कि आप जैसे बीमारियों की हम बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि सिम्टम्स ये हैं तो उसको कैसे उपचार किया जाए, पर आज की जो बीमारी ना कह के हम उसको ये कहें कि हम कैसे दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा दान होता है आंखों का दान और वो हम मरने के बाद कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम को क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे सुनने वाले हैं, दूर दराज देश विदेश में भी इस कार्यक्रम को सुना जाता है, मुझे ये बताइए कि आप एज अ डॉक्टर, एज अ डायरेक्टर ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एज अ आई स्पेशलिस्ट, आप क्या कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते हमारे आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से कि किस तरह से ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस अ सक्सेस?
1: ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब कम्युनिटी का ही प्रेरणा होनी चाहिए कि वो अपने जो मृतक हो गए हैं, एक तो ग्रीफ उस वक्त बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के अगर आपके पास आई बैंक को फोन कर दिया जाए तो ये सब बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो पहले भी इसकी चर्चा फैमिली में होनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हम ये चाहते हैं और ये आई बैंक के नंबर्स हैं। इसको ये नहीं सोचना है कि कई लोग सोचते हैं कि हम मरने की बात ना करें, ऐसा नहीं है। आप अपना जैसे विल लिखते हैं इसी तरह से आप अपने दान का भी सबको बताएं, सब एक फॉर्म जो है वो खुद भी रखें, बैंक में भी दीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक प्लान करे तरीके से चले। बाकी जो अस्पताल में लोग होते हैं वहां पे हमारे पास ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं, वो आपको भी बताते रहते हैं कि भी देखो ऐसा हो गया है तो आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए फायदा रहेगा। और जब इस जैसे पखवाड़ा हो रहा है इसमें जो उन्होंने डोनेट किया होता है उन फैमिलीज को फेलिसिटेट भी किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है बुला
2: जी,
1: के
2: जी।
1: तो ये भी एक आई बैंक का जरूरी काम होता है और आई डॉक्टर्स भी, तो थोड़ा उत्साह मिलता है।
2: बिल्कुल, और ये एक एहसास होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए जिससे कि, और आदमी चला जाता है उसकी आंखें रहती हैं उस आंखों के माध्यम से, वो दुनिया फिर भी देखता रहता है किसी और के आंखों से, तो ये इस तरह से अगर आप लेते हैं इसको तो भी एक बहुत अच्छी बात है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने नेत्रदान पर बहुत सारी जानकारी डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाई और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता बेरी को, आप डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और डायरेक्टर प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विभाग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। चलने से पहले तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको पुनः बता रही हूं, एम्स के ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आई बैंक के हैं 0112359 3060 और दूसरा नंबर है 2658-9461, इस पर आप डायल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर बेरी, आप यहां आई और समय निकाला और इतनी जानकारी आपने पहुंचाई।

0: और स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

वो स्टूडियो घड़ी में समय हुआ है, शाम के 4 बज गए हैं। लीजिए पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के पुस्तक प्रकाशन उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपये था। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थे आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। कार्यक्रम शुरू हो गया है अल्फा जेन, और अल्फा जेन यानी कि अल्फा जेनरेशन, इनकी होगी बात, इनके मतलब की करेंगे यहाँ पर ढेर सारी बातें, किस तरह से आज की अल्फा जनरेशन जो है वो किस तरह की सोच रखती है, जीवन में क्या हासिल करना चाहती है। और ट्यूसडे को ख़ास तौर से जो हम बात करते हैं वो उनके करियर एवेन्यूज़ की बात करते हैं, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट, किस तरह की ड्रीम्स एस्पिरेशन, और किस तरह की डिस्कवरी करना चाहते हैं अल्फा जनरेशन। तो अगर आप भी 2010 के बाद आपका जन्म हुआ है तो लगभग आप आज 16 साल के होंगे, और अगर उससे 2-4 साल पीछे भी हैं तो हम चलिए 20-22 साल के लोगों को भी इसमें ले लेते हैं। ये हमारा अपना भाई मन है, क्या कर सकते हैं, 2-5-10 साल आगे पीछे, 10 साल ज़्यादा हो जाएगा 2-4-5 साल अगर आप उससे एज से पहले से हैं, आपका जन्मदिन आता है, या आप अपने आप को अल्फा जनरेशन समझते हैं, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। और ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ, क्योंकि प्रोग्राम स्पेशली आपको सोच के बनाया जाता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अल्फा जन और मैं हूं आपके साथ रंजन। और ढेर सारी बातें करनी हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जनरेशन अल्फा की, तो इनकी जो सोच है उसे आप नहीं पकड़ सकते, बिकॉज ये यंग माइंड्स हैं और मोस्ट ऑफ देम आर टीनेजर्स। तो क्या सोचते होंगे जब वो स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, जब स्पेशली साइंटिफिक सोच रखते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन धरती की जो इतनी सारी हमारी अर्थ की प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे किसी और जनरेशन पे ज़्यादा अगर विश्वास हो कि ना हो, अल्फा जनरेशन पे ज़रूर है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है चांद के ऊपर बस्ती बनाने में ये लोग कुछ ऐसी नई खोज करें। ऐसी आज मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज़ कह लीजिए, साइंस की देन कह लीजिए, या फिर वो चीज़ें जो आज हमें कहीं ना कहीं संभव नहीं लगती हैं, असंभव के दायरे में दिखती हैं, हो सकता है उसे संभव करे। और कौन करेगा? अल्फा जनरेशन। आपसे होगी ढेर सारी बातें, यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी के संग, सुनते रहें रेनबो।

जी हाँ, हमने सब हर किसी ने कभी ना कभी ये ललबाए लोरी तो सुनी होगी, चंदा मामा दूर के पोहे पगाए चूर के, समथिंग लाइक दैट। तो हमने चांद को कितने ही तरह से बुलाया है, उसको एक रिश्ता भी दिया है, लेकिन जब हम बात करते हैं चांद की, जब हम बात करते हैं मून की, तो एक चीज़ है कि अब फिर से कहीं ना कहीं ये सोच बनाई जा रही है, बहुत से देशों में इस पे प्लानिंग चल रही है, जिसमें भारत भी एक है, कि क्यों नहीं चांद के ऊपर इंसानी बस्ती बनाई जाए। टू बिगिन विद, आई थिंक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, साइंसदान जाएंगे, जाहिर सी बात है साइंटिस्ट जाएंगे, और वहाँ कॉलोनी बनाने की सोची जा रही है। तो ऐसे में अल्फा जनरेशन यहाँ पर क्या कर सकती है, जो इस समय पढ़ रहे हैं बच्चे और साइंस में बहुत बेहतरीन उनकी सोच है, कुछ ऐसा सोच सकते हैं जहाँ वहाँ पे बहुत रेडिएशन होती है, वहाँ आपका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, जैसे दिन और रात का धरती का टेम्परेचर होता है उससे बहुत अलग होता है, तो आपको बाकायदा सूट्स चाहिए, उस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए कि इंसान वहाँ रह सके, जी सके। तो क्या किया जा सकता है, कुछ ऐसा नई सोच आपकी सोच में कोई ऐसी बात आती हो टेक्नोलॉजी से लेके, या फिर सिर्फ आप वही पार्टी वार्टी की बात ही सोचते रहते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि सुबह से दोपहर तक स्कूल हो गया, शाम को जो है पार्क में गए, कुछ खेल लिए, जो आप बहुत कम जाते हैं क्योंकि आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा है,

0: the boot knot. Relax, man. Come party with the boot.
1: It's your boy, Yo-Yo Honey Singer.
2: देखिए जितना हमें पता है चांद के बारे में मून के बारे में, वहाँ पर इक्का दिक्का देश ही वहाँ पर पहुँच पाए हैं। भारत ने भी अपना रोवर वहाँ पे पहुँच दिया है, डोंट यू वरी। बट हम जो मैन्ड मिशन भेजने वाले हैं उसमें अभी समय है, और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अल्फाजन के लोग ही उसमें जाएंगे, ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि भाई ये यंग हैं, देश का जवां खून है इसके अंदर, एक अलग ही रवानगी है, एक ताजगी है, एक नई सोच है। चाहे लूनर साइंटिस्ट बने, जियोलॉजिस्ट बने, एस्ट्रोनॉट बने, इंजीनियर बने, या फिर कोई रोबोटिक स्पेशलिस्ट बने, हैबिटेट स्पेशलिस्ट बने। मैं इतनी सारी बातें क्यों गिनवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए चांद वैसे होने को तो सबका है, पूरी दुनिया का, उस पर आपका हक है, एक टुकड़ा आपका भी है। ऐसा थोड़ी ना कि मिठाई है और आपने खा ली, लेकिन जो देश वहाँ पहले पहुँचेगा या फिर वहाँ बस्ती बनाएगा, जाहिर सी बात है, इट विल बी द फर्स्ट वन, द पीपल वुड बी द फर्स्ट टू नो रीच देयर। जानते हैं हम कि वहाँ रहना मुश्किल है, मार्स की भी सोच है क्या आप? चलिए मैं गिवन अ चॉइस, स्पेशली अल्फा जेन से मैं पूछता हूँ, अपने मन में ही सोचिएगा, खुद से ही जवाब दीजिएगा कि चांद पे जाने को मिले एज अ करियर ऑप्शन, या फिर मार्स पे, मंगल ग्रह पे, आपका मन कहाँ ज़्यादा अपनापन महसूस करता है, या फिर यहीं धरती पे ही रहना है, क्योंकि हमने कहाँ जाना है, हमें हमें तो धरती पे रहना है, बिकॉज हम दूसरे ग्रह में सिर्फ दूर से अभी देखते हैं। और वो सोच कुछ लोगों में होती है, वो कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो पंक्ति में सबसे आगे बढ़ के कहते हैं कि हाँ, हमें मार्स तक भी जाना है। और जो पार्टी भूतनाथ के साथ आपने की, हो सकता है, बिकॉज चांद का जो एनवायरनमेंट है बड़ा एलियन सा है, वहां की ग्रेविटी अलग है, मंगल का भी वैसा ही अलग हिसाब किताब है, तो पार्टी करना वहां वैसे कैसा रहेगा? डिफरेंट होगा ना दुनिया से, इस अर्थ से। आप सुन रहे हैं अल्फा जेन आकाशवाणी रेनबो पर। हमारा ऑन एयर ऐप आप डाउनलोड करना चाहें तो न्यूज ऑन एयर ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्मार्टफोन में रखिए हमें अपने साथ, 2400 घंटे सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

आपको पता है जब हम अपनी इस प्यारी सी धरती से दूर जाते हैं तो अगर चांद से हम देखते हैं अपनी धरती को तो जो फासला है, धरती हमें बड़ी प्यारी दिखाई देती है जैसे रात में हम चांद को देखते हैं अपनी धरती से. सेम वे व्हेन यू आर ऑन द मून यू विल बी गेजिंग अर्थ फ्रॉम देयर. और आप सच में यकीन मानिए आपको अपनी इस प्यारी सी पृथ्वी से प्यार हो जाएगा. जितना खूबसूरत चांद दिखता है उससे कई गुना खूबसूरत आपकी प्यारी सी पृथ्वी है, ये धरती है, ये धरती माँ है जिसने आपको जीवन दिया, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए कितने प्रकार के भोजन वगैरह वगैरह. और इसको सबको सही रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अल्फा जेन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ये तो हम जानते ही हैं. और मैंने आज आपसे कहा कि आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके करियर से भी रिलेटेड होंगी, चाहे आप एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहें, चाहे आप जियोलॉजिस्ट बनना चाहें, चाहे चांद पर जाके कई तरह तरह की तरकीब लड़ा के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करना चाहें तो क्यों नहीं ऐसा कभी सोचते. मैं बहुत सोचता हूँ, बचपन से सोचता था और मैं जानता हूँ कि आप भी सोच के ऊपर कभी अंकुश मत लगने दीजिएगा. चलिए चलते हैं मिलके टाइम मशीन बना लें. अब आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो, ये थोड़ा पॉसिबल है. नेवर से नेवर, यू नो, नेवर से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो होती है रियलिटी में आने से पहले आपके दिमाग के अंदर उस चीज का यू नो सृजन होता है. तो टाइम मशीन क्या है, क्या ये पॉसिबल है? फिजिकली पॉसिबल है प्रिंसिपल में, अभी हम ये कहेंगे, प्रिंसिपल साहब की बात नहीं हो रही है, इन प्रिंसिपल मूलतः ये पॉसिबल है. आइंस्टाइन

आइंस्टीन की अगर रिलेटिविटी की थ्योरी के हिसाब से हम बात करें, तो अगर आप कोई ट्रेवल करते हैं बहुत स्पीड से और लाइट की जो स्पीड है उससे भी अगर हम आगे निकल जाते हैं, तो ये ट्रेवल करना, फ्यूचर में ट्रेवल करना, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं, दिस इज वेरी मच पॉसिबल. तो मैं आज साइंस फिक्शन की भी बातें करूंगा, क्यों नहीं करूं, मुझे आज कोई ना रोके ना टोके, बिकॉज ये दिल है, इसे

प्यारे नन्हे मुन्ने अल्फा जनरेशन के पंखों को फड़कने दो, ये ले सकते हैं एक ऊंची उड़ान। इनके पास है तीर, इनके पास है कमान।

जी हाँ, दिल धड़कने दो। दिल के अपने जो ख्यालात हैं उन्हें बिल्कुल नहीं रोके,

0: लोग क्या कहेंगे ऐसे सारे बहाने छोड़ के, क्योंकि वो जो चार लोग जो कहने वाले हैं वो आज तक हमें तो मिले नहीं, आपको मिले हो तो उनसे नहीं मिलना वही बेहतर है। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, आप जुड़े रहे आकाशवाणी के कार्यक्रम अल्फा जैन के संग।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुँच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से

0: के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशन
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आपको ये सोच रखनी होगी, वो हवाई सोच जिसे कहते हैं। एक कार्यक्रम हवा महल भी आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं मतलब बच्चों ने तो नहीं, बड़ों ने ज़रूर सुना होगा। बट जब तक आपके पास वो सोच नहीं है, तब तक आप उस तक पहुंच कैसे पाएंगे? और सबसे ज़रूरी है, आज के जीवन में हम सब घिरे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, और स्पेशली ये अल्फा जेन है जो डे वन से कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन्स, कंप्यूटर से एकदम घिरी रहती है। और यहाँ पे उनके माँ बाप की भी पूरा पूरा उसमें वो कसूरवार रहते हैं कि बच्चा खाना खाए इसलिए मोबाइल फ़ोन उसको सामने दिखाया जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ जिससे वो चलती है उसे कहते हैं चिप्स, और ये सिलिकॉन वेफर की बने रहते हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और ऐसी चिप्स आ गई हैं जो स्पेशली आपके हर चीज़ को, चाहे आपकी कार हो, आपका कोई रोबोट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसके अंदर लगेगी। और उसको बनाने के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लाइट यानी एक बीम फेंकी जाती है लेज़र के माध्यम से, या उससे भी कई गुना तेज़ कुछ एक तरीके से उसे बनाया जाता है। और वो चिप्स जो हैं वो उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उस पे चिप के ऊपर अंकित करती है। तो ऐसी मशीनें कुछ एक देश के पास हैं फिलहाल, उसमें अमेरिका है, आई थिंक ताइवान है, कोरिया आई थिंक एक है देश, और अब चाइना भी उसके अंदर उसने शुरुआत की है कुछ दिन पहले। और भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं इसके अंदर, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्फा जेन के पास बहुत बहुत नई तकनीक है, बहुत बहुत नई आइडियाज़ हैं जिससे कि हम हो सकता है अपने देश में अपनी तकनीक से हाल में मौजूद जो मैन्युफैक्चरिंग तरीका है उसको बेहतर करते हुए या फिर उसे बीट करते हुए कुछ नया बना पाएं। यही तो उम्मीद है हमारी अल्फा जेन से।

country, huh? कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए आपकी सोच में. मैं क्यों इस तरह से कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इफ़ देयर इज हेल्दी कॉम्पिटिशन तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. और जो मैंने बताया ना, चिप मेकिंग मशीन है जो बहुत सारे देशों के पास नहीं है, वो जाहिर सी बात है किसी के साथ वो शेयर भी नहीं करना चाहते, फॉर द सिंपल रीज़न कि उनकी जो यू नो चिप्स हैं वो हमेशा डिमांड में बनी रहें. एंड इट्स वेरी फास्ट इवॉल्विंग, बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर चेंज आता है और नई नई तकनीक आती जाती है और पुरानी जो चीज़ें हैं वो दूर कहीं छोड़ दी जाती हैं. और ऐसी ही एक सोच लेके हमारी भारतीय एक लड़की ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है हमारे देश में. अब आई थिंक वो विदेश तक पहुंच गई हैं. और डीएनए तो आपने सुना होगा, तो डीएनए बेस्ड स्टोरेज चिप्स के बारे में कुछ वो सोच वो रखती हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज रहती है बाइनरी है, जीरोज एंड वंस है, लेकिन अगर डीएनए के ऊपर लिखा जाए तो ATCNG, इसके चार बेसिस होते हैं जो यूज़ करता है डीएनए, केमिकल बेसिस. तो ये तो हुआ ह्यूमंस, जिससे हम और आप बने हैं, हमारे अंदर सब में डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर ही कुछ यू नो आर्टिफिशियल डीएनए बना के जिसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाए तो बहुत सारी जगह बच सकती है. यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, नैनो

पार्टिकल्स की, यानी सब कुछ छोटा छोटा छोटा छोटा होता चला चला जाता है। और हमारे पास हमारी पुराने इतना ज्ञान है, हमारे देश में हमारे इतने ग्रंथ हैं जिनमें जिसमें इन सब चीज़ों की बातें की गई हैं, और हमें बस एक बार फिर से अपने आप को रिफ्रेश करना है और उसको साइंस के नज़रिए से, साइंस के चश्मे से देखना है। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल वेयर एन आई थिंक अल्फा जनरेशन will always say, yes, we can do it.

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, न नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अल्फा जेन, जहां हम बात करते हैं जनरेशन अल्फा की और जनरेशन अल्फा किस जद्दोजहद से दिन भर काम करती है, यानी स्कूल में पढ़ाई, उसके बाद बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और कुछ अचीव करने की तरफ अग्रसर और बहुत सारे सपने, जहां कई तरह के सपने आप बुन सकते हैं। जैसा मैंने कुछ एक कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं को छूने की कोशिश की, जैसे कि चांद पे बस्ती बनाना, हो सकता है इंसान

वहाँ खुद ना जाना चाहे, हम रोबोट्स को वहाँ भेजें, इतनी चिप्स बनाए, इतने रोबोट्स बनाए और वो हमारे लिए जाके वहाँ सब काम करें। मार्स तक की जो सोच है इंसान की, वहाँ अल्फा जेन अपना पूरा का पूरा सहयोग दे सकते हैं आने वाले दिनों में, जब ये और जवा होंगे और रवा होंगे। क्योंकि मैंने जैसा कहा 16-1 साल अभी तक की जो एज हम समझ पाएंगे, 2010 से जो व्यक्ति पैदा हुआ है, तो 2-5 साल अगर हम आगे पीछे भी कर लें तो हमारे भारत से ही एक यू नो स्टार्टअप निकला है जिसने DNA के अंदर ये कोशिश की है, वो इस पर बाकायदा काम कर रहे हैं कि DNA के ऊपर स्टोरेज की जा सके, तो फिर ये चिप्स का मसला कुछ और एक नया लेवल पे चला जाएगा। इसी तरह की बातें क्वांटम जो फिजिक्स के अंदर चीजें किस तरह से बिहेव करती हैं, यानी एक चीज जो है वो एक साथ होके दो जगह हो सकती है, या फिर उसका जो आउटकम है इस बात पे भी निर्भर करता है कि क्या उसे कोई देख रहा है। यस, यू हर्ड इट राइट, पार्टिकल्स बिहेव वेरी डिफरेंटली उस समय जब उन्हें कोई देख रहा होता है या जिस समय उन्हें कोई नहीं देख रहा होता है। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे भीतर हूं, ये फिलॉसफी है भारत की। इसको लेके अगर चलेंगे और साइंस से कहीं ना कहीं जोड़ेंगे तो बहुत सारी खोज है जो अल्फा जेन कर सकते हैं। यहां पे दीजिए मुझे इजाजत, मैं आपके साथ था रंजन, अगला कार्यक्रम रहेगा सुषमा के साथ सिटी लाइट्स। यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी के संग और सुनते रहें 24 घंटे। टेक केयर, बाय बाय, और अपनी सोच की उड़ान को कभी भी मत थामिए, उसे पंख दीजिए, उसे उड़ने दीजिए।

AIR FM रेनबो पर पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। पुदुचेरी सरकार ने आज व्यापार सुधार विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक मुख्य रूप से लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME और उद्यमिता पर केंद्रित है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमरीकी डॉलर का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। गुतरस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। और अंत में मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार FM रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और ये है सुषमा की वाणी आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, जो लेकर आ गई है प्रोग्राम सिटी लाइट्स, यानी शाम होने वाली है आपकी बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि गाने भी कुछ ऐसे ही मैं प्ले करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। वैसे तो बहुत कुछ ये हो रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो ये है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है। क्यों पड़ा है बीमार, क्या कारण है, ये सब भी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले शाम को खूबसूरत बनाने के लिए ये रहा गीत।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या बकिंगम पैलेस टू साउथ हार्ट चंडीगढ़ लुधियाना, एवरीबॉडी इज फॉलिंग इन लव।

जी हाँ, गला गुनिया मेरे साथ भी आप कर ही रहे हैं। प्रोग्राम सिटी लाइट सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सुषमा। और चमचम चमचम चम चमकती शाम है। बिल्कुल, जब मैं आ जाती हूँ ना रेनबो पर, तो शाम तो वैसे भी चमकने लगती है मेरी तरह। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। और शाम जब चमकती है, जब आपका रास्ता बिल्कुल खाली हो, साफ सुथरा हो, किसी भी तरह का ट्रैफिक ना हो, तब तो कहते हैं कि भाई शाम चमक गई है। लेकिन क्या करें, दिल्ली में एक जबरदस्त मूसलाधार बारिश जो है वो ऑफिस जाने वालों के लिए आफत बन जाती है। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो क्या बोलूं उसको, मैं कह सकती हूं कि डबल ट्रिपल हो जाती है ये प्रॉब्लम। वो इसलिए क्योंकि जहां बारिश है वहां वायरस, जो स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, वो भी दिक्कतें कर रहा है। उसके बारे में भी आपको बताने वाली हूं, लेकिन पहले ट्रैफिक की बात।

नहीं करूंगी आपसे। और जहां तक टेम्परेचर की बात है, मौसम की बात है, तो आज तो जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बारिश का जो ऑरेंज अलर्ट है वो अभी भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे एरियाज में तो अभी भी बारिश है, तो दिल्ली कहाँ छूती रह सकती है। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, शाम को जब आप घर जा रहे हो और बारिश ना हो तो मौसम तो सुहाना हो ही जाता है ना, अच्छा लगता है ना। चलिए गाना भी कुछ ऐसे ही लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स अपनी दोस्त सुषमा के साथ।

न जाने किस मूड पर अफसाने बन जाए, वो इसलिए भी बन जाते हैं जब आप ट्रैफिक में कई कई घंटों खड़े रहते हैं। रेड लाइट्स तो है ही आपके लिए खड़े रहने के लिए, लेकिन कई बार जाम जो है वो भी आपको बहुत देर तक खड़ा रखता है। अब दिल्ली में कहाँ कहाँ जाम लग जाता है।

है, थोड़ा सा आइडिया तो मैं भी दे सकती हूँ। बाकी अगर आप भी कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज भेजना चाहें तो मुझे भेज दीजिए, बता दीजिए कहाँ फंसे हुए हैं आप, मैं बता दूंगी बीच में प्रोग्राम के। नॉट राइट नाउ नंबर है 9868107070, ये नो नंबर है आप ही के लिए, आप इस पर भेज सकते हैं कोई भी बात। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैडम यहाँ फंसा पड़ा हूँ, थोड़ा बता दीजिए लोगों को, मेरी तरह और भी कोई ना फंसे। लाजपत नगर अगर आप जा रहे, देखिए जहाँ भी रक्षाबंधन के आसपास का टाइम होता है जाम लगना तो लाजमी है। लाजपत नगर यहाँ तो जाहिर सी बात है, फिर छतरपुर की तरफ भी है, द्वारका साइड अगर एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हो यहाँ पर भी जाम बता रहा है हमारा ये जो मैप है। मोती नगर, करोल बाग, आनंद विहार की तरफ भी बहुत जाम है, शालीमार बाग, पीतमपुरा, नांगलोई की तरफ, और फिर बहादुरगढ़ की तरफ भी बढ़ रहे ना आप अगर, तो वहां भी आपको जाम मिल सकता है भाई, ध्यान से चलना। साहिबाबाद की तरफ भी आपको देखा जा सकता है, शाहदरा की तरफ भी। अब देखिए इतनी सारी मार्केट्स हैं आसपास, तो यहाँ तो जाम लगना लाजमी है ना। हाँ बिल्कुल है, एक बारी आपको देखना है मैप और फिर अपने आप को ले जाना है आगे। आप सुन रहे हैं AIRFM रेनबो पर प्रोग्राम सैटेलाइट्स, अपनी दोस्त HMV सुषमा के साथ। अब आप सोच रहे हैं ये HMV कौन है भाई, हनी मिक्स्ड वॉइस, आप ही जैसे लोगों ने मुझे ये नाम दिया है।

बिल्कुल, एक बारी आप अपने दोस्त को बुला सकते हो, लेकिन स्वाइन फ्लू एक बारी नहीं, बार बार आ जाता है आप ही के पास, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस चीज के लिए अब देखिए H1N1 ये जो वायरस जब आता है तो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स को लक्षण भी नहीं पता चलते हैं, और आज कल देखा जा रहा है कि बच्चों की चपेट, मतलब बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा ही आ रहे हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं आपके लिए। कई बार बुखार तो होता ही है, खांसी भी होती है, गला जो है वो खराब हो जाता है, और कई बार नाक जो है बहती है या बंद नाक में भी सांस लेने में तकलीफ। ये छोटे छोटे लक्षण होते हैं ना, ये बहुत सिम्टम्स जो होते हैं पहचानने के लिए काफी होते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा समझदारी से काम करना है। अब क्या करें क्या ना करें ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूं कि अगर छींक आ रही है या खांसते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुंह और नाक पर अपना रुमाल या कोई भी कपड़ा जरूर उससे ढकें, ताकि और भी लोगों को इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपने हाथ पानी से साबुन से अच्छे से बीच बीच में जरूर धोते रहें, और बार बार ना छुएं। आदत होती है लोगों को यहां इधर उधर उंगली करने की, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। और क्या होता है कि एक से अधिक जब लोग जुड़ते चले जाते हैं, हाथ मिलाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल ये बहुत है, क्योंकि हाथ से ही ये जैसे कोविड फैलता है ना, वही कुछ कुछ ये लक्षण इसके भी देखे जा सकते हैं कि हाथ मिलाने से भी कई बार ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिशन इसका हो जाता है। और हाँ, पानी जरूर पिएं, पानी खूब पीना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पानी के साथ साथ कि आप पौष्टिक आहार भी लेते रहें। अब ये छोटी छोटी चीजें जब आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना ही होगा ना, अब इतने छोटे बच्चे नहीं हैं आप, है ना। जेंजी की बात अगर मैं करूँ, या जो अभी अल्फा जिन की बात करूँ, जो 2010 के बाद जो बॉर्न हुए, 2010 से बॉर्न हुए, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये खाने पीने का अपना कई बार ख्याल नहीं रख पाते। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी, रंजन ने बहुत कुछ बताया कि बच्चों की जो है बिल्कुल फितरत ही बदलती है, अलग ही विचारधारा के ये लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ख़ासतौर पर इस तरह की जब बीमारियाँ हो जाएँ तो पौष्टिकता अपने भोजन की थाली में बरकरार रखें।

0: प्यारा सा गाना जब प्ले होता है तो मुझे लगता है आप सब के सब गुनगुना रहे होंगे इस गीत के साथ, है ही इतना खूबसूरत। और जहां तक नाम तक भी आपने बताया नहीं, आहा क्या लाइन होती है। लेकिन मैं बता देती हूं आपको कि मैं हूं आपके साथ सुषमा और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स प्रोग्राम ओनली ऑन एफएम रेनबो 102.6। जी हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ फिर आती हूँ आपके पास।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ Good morning Delhi NCR, always wherever you are, 102.6 आपके लिए।

0: बिल्कुल रोना नहीं है, हंसना भी नहीं है बहुत ज़्यादा। जब किसी की कोई ऐसी बात हो, लोग अक्सर हंस जाते हैं और वो सामने वाला समझता है कि ये मुझका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट और भी है आपके लिए, वो ये कि भाई आप जानते हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। अब आप ये कहें कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो भाई अपना जो कूड़ा है ना आपके घर का, वो हमेशा बाहर किसी पड़ोसी के आसपास ना रखें, डस्टबिन में ही डालें, और गीला और सूखा कूड़ा भी अलग रखें। घर, दुकान और अपने आसपास का एरिया जो है उसे भी साफ रखें। और प्रतिभागी भी बन सकते हैं आप, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं भाई? स्वच्छता अभियान बहुत सारी जगहों पर होते हैं, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और क्या ना करें ये तो आपको पता है, ये बताना पड़ेगा, लेकिन आप है कि फिर भी नहीं मानते, करते अपनी मर्जी की ही है। अब कहते हैं कि पब्लिक जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी कोई भी रैपर फेंक दिया, कोई भी गंदगी फैला दी, थूक दिया, कुछ भी कर सकते हैं आप। आप ऐसा ना करें, दूसरों को भी सजग करें इस बारे में। तो अगर आप खुद नहीं करते हो, दूसरों को भी कहते हैं कि भैया ऐसा ना करो, हमारी दिल्ली है ये, हमारा देश है ये, हमारा समाज है, आप घर को साफ रखते हो तो अपने आसपास क्यों नहीं साफ रख सकते, कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ आप ही के पास।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कर दो। देखिए आबादी की ही बात करेंगे हम, आपकी बर्बादी की तो बिल्कुल भी बात करने वाले नहीं है प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। और मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी और एग्जाम भी आप ही को देने पड़ेंगे। मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ, स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ जो इस समय पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते रहते हैं, और ये करना भी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई से काम नहीं चलता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ में करनी भी चाहिए। अब चलिए इन्फॉर्मेशन दे दूं कुछ जरूरी कॉलेजेस के बारे में। वो ये कि अब IPU यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है, अब ऑनलाइन कोर्सेज का भी विकल्प

उसने खोल दिया है आपके लिए और इस पहल की शुरुआत बीबीए और बीकॉम प्रोग्राम्स के साथ की गई है और दोनों ही कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और पहला बैच 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है आपके लिए। तो आईपीयू जल्द ही बाकी के कोर्सेज यानी पीजी लेवल के 3 और नए ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए लेकर आ सकती है, इसकी प्लानिंग चल रही है और इनमें दाखिले के इच्छुक आईपीयू की वेबसाइट जो है उसके जरिए आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, सारी डिटेल्स भी आप पता कर सकते हैं।

0: बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ आपसे दूर, लेकिन अगले प्रोग्राम के लिए भारती स्टूडियो में आ चुकी हैं, तो उनके साथ भी रहना होगा आपको। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने में जरूर जा रही हूँ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: बिल्कुल, तेरे नाम का जो आप गाना सुन रहे थे उससे मुझे कॉलेज तो अपने ही याद आए जाते हैं। आप लोग भी अगर कॉलेज में हैं तो आपको भी बहुत सारी यादें हैं आपके कॉलेज के। लेकिन इस समय कॉलेज जो यानी DUSU यानी डूसू की अगर हम बात करें तो इस समय तैयारियां हो रही हैं एग्जाम्स की, नहीं बिल्कुल चुनावों की तैयारियां हो रही है।

बिल्कुल, अब मेरा भी वक्त हो गया है कि मैं जाऊं आपसे कहूं बाय बाय, क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर आ चुकी हैं भारती डेंग, तो उनके साथ रहेंगे ना आप। मैसेज मसाला मिक्स, ये प्रोग्राम आपके लिए, आपका प्रोग्राम जहां बहुत सारे मैसेजेस भेज सकते हैं भारती को और पूछ सकते हैं भाई क्या है आज का टॉपिक। वैसे इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ, अब क्या करूं, मैसेज मसाला मिक्स तो है नहीं जो मैसेजेस लेती रहूं आपके, लेकिन जिसने भी मैसेज भेजे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा सा गाना छोड़ के जा रही हूं आपके लिए, जल्दी ही मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।

नमस्ते इंडिया। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम 2 महीने का समय मिलेगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील बालकृष्ण शुक्रे ने आज महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन पेश किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। नौसेना ने 31 अगस्त को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण का जलावतरण करेगी। अमरीका के गृह सुरक्षा विभाग ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमरीकी डॉलर का नया शुल्क प्रस्तावित किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरस ने

वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। गुतरस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। और अंत में मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थे अब तक के हमारे मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट लिसनर्स, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारें। यस ऑफ कोर्स, फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा जिंदगी में करना है, आपका मेरा वादा है। इस वादे के साथ बस यही इरादा है कि जितना हो सके आपको एंटरटेन कर सकें, जितना हो सके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकें, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इससे हम सीधा आपके मैसेजेस के थ्रू आपसे जुड़ जाते हैं। यानी कि ये है मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स की हमारी आज की सीरीज में आप सभी का वेलकम कर रही है आरजे भारती। एंड मैसेज आपको कहां करना है बता देती हूं, 9868107070 पर, 9868107070 पर। वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, आ ही रहे होंगे, लेकिन आज का पहले क्वेश्चन तो सुन लीजिए। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हम किसी ना किसी टॉपिक पे जरूर बात करते हैं। तो आज एक खास विचार मेरे मन में आया जब मैं मेट्रो से यहाँ पर पहुँच रही थी, और वो विचार ये था कि हम लोग एक दूसरे से बहुत कम कनेक्ट कर पा रहे हैं अब अजनबियों से, मतलब हमारे साथ में जो कोई ट्रैवल कर रहा है उससे, मतलब कोई स्माइल नहीं, कोई बात नहीं। उसका कारण ये है कि सब कुछ तो हमारे मोबाइल में है, सब कुछ तो हमारे गैजेट में है। तो बस आज आप मुझे सिंपल सी बात ये बता दीजिए कि किसी दिन ऐसा हो कि आपके गैजेट्स जो है वो गायब हो जाएँ या इंटरनेट ही नहीं रहे, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, तो आप अपना पूरा दिन कैसे बिताने वाले हैं। सो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं इस एक विषय पर और बन सकते हैं हमारी आज की मैसेज मसाला मिक्स की सीरीज का हिस्सा। फिलहाल टेक इट अवे।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: ऑल राइट लिसनर्स, तो आज मैसेज मसाला मिक्स की हमारी आज की सीरीज में बिल्कुल से मैंने आपसे यही पूछा है छोटा सा सवाल कि अगर चला जाता है इंटरनेट या आपका गैजेट जो है, आपका प्रिय मोबाइल जो है वो गायब हो जाता है तो क्या करने वाले हैं आप। सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं हमारे रेडियो के लिए कि दिन भर रेडियो सुनेंगे, बट इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड से मिलना है तो कैसे मिलेंगे, फ़ोन तो है नहीं, मैसेज कैसे करेंगे। सो ऐसे बहुत

सर, ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे ना, तो कुछ अनोखे, कुछ यूनिक से और कुछ मज़ेदार से जवाब जो हैं वो आज हम यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। फिलहाल बहुत सारे जवाब मेरे पास हैं। बिल्कुल से पढ़ना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज जो आया है वो सबसे पहले आया है, मैं तो सबसे पहले अच्छे से आराम करूँगा, बढ़िया नींद लूँगा, घूमने निकल जाऊँगा। प्रवीण चौहान का, खरगोन मध्य प्रदेश से। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि इसे एक मोबाइल के चक्कर में या इसे एक ये जो सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है ना, इसके चक्कर में हमने दुनिया को देखना या दुनिया की तरफ जाना और दुनिया को अपनी नज़र से देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर हम कहीं जाते भी हैं ना, घूमने भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे हाथ में फ़ोन होता है। हम उस मेमोरी को इस कदर कैप्चर कर लेना चाहते हैं कि शायद ये मेमोरी दोबारा हमारी ज़िंदगी में आएगी नहीं, या हमें अपने लिए अपने वो हमारे उसमें पड़ी रहती है बस हमारे फ़ोन में, हम शायद ही उसे दोबारा कभी देखते हों। लेकिन हाँ, हमें बाकी लोगों को दिखाने के लिए वो मेमोरीज या वो पिक्चर ज़रूर चाहिए होती हैं। तो कुछ इस तरीके की ज़िंदगी और दुनिया हो गई है। अनिल शर्मा जी का मैसेज है, सरिता विहार से लिखा है कि इंटरनेट बिना मोबाइल फ़ोन जो है वो 2 दिन क्या, मतलब दिन तो क्या, 1 घंटा भी गुजारना जो है ना वो मुश्किल लगता है। और वैसे भी हम ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, सेवाएं, काम सब ठप हो जाता है, और ऐसा मैंने कई बार देखा है। बिल्कुल देखा है, लेकिन पहले भी ये सब काम चलते थे। बट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कुछ बहुत यूनिक से जवाब कि अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जाए, आई मीन जस्ट फॉर अ डे, तो आप क्या करने वाले हैं, मतलब कैसे उस एक कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। और वो जो एक क्रेज़ी फीलिंग होती है ना सबको कि कहाँ है मोबाइल, कहाँ है मोबाइल, कहाँ है, जल्दी चेक करो उसको, आराम से लेट जाओ, उससे कैसे आप निपटेंगे। तो कुछ ऐसे जवाब, यूनिक जवाब मुझे आज चाहिए। रंजीत कुमार मंडल का सिकटी अररिया बिहार से मैसेज है, किसी यदि 1 दिन के लिए मेरा मोबाइल मुझसे दूर हो जाए तो उस दिन को मैं किताबें पढ़कर बिताना चाहूँगा। बहुत ही प्यारी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। और पता नहीं कहाँ चली गई हैं हमारी किताबें, कहाँ चले गए हैं वो कागज़, उस कागज़ की खुशबू जो कभी ना कभी मतलब एक टाइम पर ज़रूर हमारे आसपास रहती थी। अगला जो मैसेज है शबनम का है, बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, लिखा है कि आपने जो गाना अभी बजाया वो मेरे पसंदीदा गानों में शामिल हो गया। अच्छा ठीक है, आज गाने को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अरे आप मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देती। ये गाना बहुत ही प्यारा है और गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि ज़िंदगी को बयां कर देते हैं। चलिए, आपको पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक्स है उन लोगों को जिन्होंने गाना बनाया, मुझे नहीं। अगला जो मैसेज है वो पंकज का है, अमरावती महाराष्ट्र से। गुड इवनिंग मैडम, कार्यक्रम मैसेज मसाला में एक साझे मैडम जी। अरे बापरे, आप सीधा सीधा सीधा सिर्फ जवाब लिखिए, इतना सब कुछ ना लिखिए। जिस दिन कोई भी इंटरनेट कनेक्शन ना मिला तो उस दिन मैं पूरा दिन अपने पुराने रेडियो पर आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनूंगा और किताबें पढ़ने लग जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि वो जो पुराने जो हमारे सेट थे ना, रेडियो सेट, उन सबको हमें निकाल लेना चाहिए और उन्हीं पर उन गानों को सुनना चाहिए या उन्हीं पर रेडियो को सुनना चाहिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो, अगर आप एक जगह पर बैठे हैं तो। एंड यस, किताबें पढ़नी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना आज थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेंगे कि ऐसा मान ही लेते हैं कि थोड़े देर के लिए मोबाइल हमारे पास नहीं है तो हम अपने उस टाइम को कैसे यूज़ करने वाले हैं। वेल लिसनर्स, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस का मुझे इंतज़ार है। 9868107070 पर आप जुड़िए मेरे साथ। और फिलहाल ये गाना आप सबके लिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ऑल राइट लिसनर्स, और आज के मैसेज बजाला मिक्स की हमारी आज की सीरीज में बस हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे आप अगर एक दिन के लिए मोबाइल आपसे कोई छीन के ले जाए। वैसे मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही इंटरनेट के खिलाफ हूँ, ना इससे मिलने वाली सुविधाओं के खिलाफ हूँ, लेकिन इसके वजह से जो हम बहुत सारे बातों से, बहुत सारे हमारे जीवन की जीवंतता से दूर होते जा रहे हैं ना, उसको याद करने की कोशिश है। और बिल्कुल मेरी ये कोशिश सफल हो गई है, क्योंकि ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास आ गए हैं। सो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया कि मैम, पहले जब मोबाइल नहीं था तब लोग कैसे जी रहे थे? माना कि जब मोबाइल नहीं होगा मेरे पास तो कम से कम एक दिन का सुकून जो है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, एक दिन सुकून से कटेगा। तो अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हम इतने ट्रैप्ड हो गए हैं और अगर एक दिन नहीं होगा तो सुकून से कटेगा, तो फिर तो डेफिनेटली हमें सुकून की तलाश में जाना ही पड़ेगा। और अगला ये जो मैसेज है मेरे पास, ये भी हमें कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से हम अपने गेम्स से, अपने खेलों से हम दूर हो गए हैं। तो ये है कि मैं तो हॉकी, बैडमिंटन, यू नो, खेल कर यहाँ टाइम गुजार लेता हूँ। ये नया पारा भिरे से बसंत कुमार ठाकुर का मैसेज है, और अभी भी वो लिखते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात बोली है सही है कि तब याद आएगा कि कैसे रियल फ्रेंड्स जो हैं हमारे, नॉट हमारे यू नो इंटरनेट फ्रेंड्स, हमारे जो रियल फ्रेंड्स हैं उनकी याद आएगी, उनके पास हम जाएंगे और वो भी

पसंद हैं उनको निकालूंगी, बुक्स को रीड करूंगी, डांस करूंगी और कुछ और चीज़ें करूंगी जैसे हम ज़िंदगी में हमेशा करते थे। आज की डेट में हम शायद ये सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारी कभी कोई हॉबी रही होगी, या अगर कोई हमसे पूछेगा आपकी हॉबीज़ क्या हैं तो डेफिनेटली हम एक मिनट के लिए रुक जाएंगे क्योंकि हमें खुद ही याद नहीं है कि हमने अपनी हॉबीज़ की तरफ रुख जो है वो कब किया था लास्ट टाइम। एक और मैसेज है, सत श्री अकाल आरजे भारती जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत तनु भी, और लिखा है कि ये जो आपकी टैगलाइन है ना, आरजे भारती जो कभी नहीं हारती, ये टैगलाइन मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, मुझे भी बहुत पसंद है और ये मेरी नहीं है, मुझे किसी ने दी है, सो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये मुझे स्पेशली रेडियो के लिए ही दी गई थी। और साथ में लिखा है कि लूडो खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे, मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे कहीं ये लूडो कैरम बोर्ड इन सबको भूल तो नहीं गए हैं, तो याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ जो टाइम है वो मैं ज़रूर स्पेंड करूँगा, वो भी हम उन्हें दे पाएंगे। बेसिकली प्रदीप सलूजा का मैसेज है जनकपुरी नई दिल्ली से, और साथ में कुछ मेट्रो स्टेशन का नाम भी लिखा है नियर। अच्छा, आप मेट्रो स्टेशन का नाम मत लिखिए क्योंकि मैं आने वाली नहीं हूँ। वेल बहुत सारे मैसेजेस हैं, हमेशा की तरह एक के बाद एक बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो सबसे पहले तो यही, किसी का मैसेज मिस हो जाए तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, डेफिनेटली उसको शेयर करने की कोशिश जो है मैं करूँगी। और आज के टॉपिक से जुड़े हुए रेलेवेंट जो जवाब हैं वो आप मुझे भेजिएगा, एक फिलॉसफी जो है ना वो लिख कर आप मुझे मत प्लीज़ भेजिएगा। एक और मैसेज ज़रूर लूँगी, गन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का मैसेज है, लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज़ो, आपको भी प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज़ है। लिखा है कि जब टेक्निक नहीं थी हम तब भी जीते थे, और ये टेक्निक नहीं होगी तो हम अपने पोते पोती के साथ टाइम पास करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको वैसे भी करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि दिन का थोड़ा समय अपने बुज़ुर्गों के साथ और थोड़ा सा समय छोटे बच्चों के साथ ज़रूर बिताना चाहिए, तो लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल एक बहुत ही प्यारा ट्रैक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, टेक इट अवे।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ऑल राइट लिसनर्स, और ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई ना कोई ये ना लिखे कि हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, बट उस नाराज़गी के लिए ये बता देती हूँ कि ना तो भाव होता है कि आपकी इंसल्ट की जाए, ना भाव होता है कि जानबूझ के आपका मैसेज ना पढ़ा जाए। मैसेजेस जो होते हैं वो इतने कंटिन्यूशन में आ रहे होते हैं और कभी कभी कोई मैसेज जो है वो स्क्रॉल हो जाता है, फिर भी पूरी कोशिश होती है कि कोई मैसेज मिस ना हो। अगर मैसेज मिस हो जाए तो आप दोबारा से प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। वेल लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि एक दिन के लिए आपका मोबाइल कोई छीन के ले जाए, आपका गैजेट ही ना हो आपके पास, इंटरनेट ना हो, गैजेट ना हो, कुछ भी आप मान लीजिए, तो आपकी ये जो दुनिया है जिसके अंदर मोबाइल ने, गैजेट ने इतना जड़ें पकड़ ली हैं, उसका इतना बड़ा रोल हो गया है कि ख़ासतौर से बच्चों में भी देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा रोल हो गया, तो नहीं होगा तो आप कहाँ लौटेंगे। तो अब तक जो मैसेजेस आ गए हैं वो ये बता रहे हैं कि वाकई हम अपनी जड़ों तक वापस लौटेंगे, और ये काम जो है ना हमें इस मोबाइल के, इस गैजेट के रहते हुए भी करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे इस समय जुड़ सकते हैं और अपनी कोई अनोखी बात कि अगर नहीं होगा आपके हाथ में ये मोबाइल तो क्या करने वाले हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैसेज मेरे पास आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन दिख रहा है नाम रॉबिन, और लिखा है कि मेरा मोबाइल यदि एक दिन के लिए कहीं खो जाए तो आपको मैसेज करने की जगह चिट्ठी लिखूंगा। चलिए, हमारा तो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है चिट्ठियों का, एक टाइम था जब चिट्ठियां ही पढ़ी जाती थी और एक या दो चिट्ठी नहीं, हज़ारों की तादाद में चिट्ठियां जो है वो आती थी। मैसेज मेरे पास आया है कि हमें 45 साल हो गए हैं, आकाशवाणी के श्रोता हैं और आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है तो ये मेरी घोर इंसल्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से। और अगर आपको ये लग रहा है कि इस मैसेज की वजह से मैं आपका मैसेज पढ़ रही हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैसेज मेरे पास बिल्कुल अभी के अभी आया है, सो कांट हेल्प इट, एंड प्लीज़ आपका मैसेज जो है वो आप मुझे दोबारा लिखकर या दोबारा सेंड कीजिए तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। और यहाँ मैसेज है मनमोहन सिंह का, यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गांव से, क्या बात है। और इन्होंने जो साफ और ईमानदारी से बात लिखी है ना, वो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे लग रहा है सबके साथ ऐसा ही होता है और इसी से हमें बचना है। इन्होंने लिखा है कि मैम, मेरे अंदर तो ये आदत हो गई है कि अगर आधे घंटे के लिए भी नेट चला जाए या मेरा मोबाइल बंद हो जाए या मेरा मोबाइल इधर उधर हो जाए, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो मेरा जो मन है ना वो बिल्कुल नहीं लगता है, उल्टा मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो बस इसी गुस्से को हमें काबू में करना है और इसी आदत को हमें बस उतना रखना है जितने में हमारा काम जो है वो इजीली चल जाए, डिजिटली हम जो जो ज़रूरी काम है वो कर सकें, और थोड़ा सा आपको जो है ना अपने दोस्तों के साथ, अपने रियल फ्रेंड्स के साथ रियलिटी की तरफ, अपने कामकाज की तरफ, कामकाज तो खैर सब करते ही हैं, तब साथ में खेलना, किताबें पढ़ना, इन सब की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। अगला जो मैसेज है लूणाराम नागौर का है, राजस्थान से, लिखा है कि ओके, जिस दिन कनेक्शन बंद हो जाएगा, गैजेट चला जाएगा, तो मैं सिंगिंग सीखना चाहूँगा, एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप उस दिन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। आपको सिंगिंग सीखनी है, डांसिंग सीखनी है, तो अच्छी किताबें पढ़नी है, तो ये सब आप साथ में भी कर सकते हैं। और साथ में लिखा, रेडियो तो सुनूंगा ही, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। और साथ में लिखा है, फ्रेंड्स और बुज़ुर्गों से बातें करूँगा, ये काम आपको अभी भी करना है और उनसे राय मशवरा लूँगा। और साथ में लिखा, वैसे मैं फ़ोन कम ही यूज़ करता हूँ, ज़रूरत हो तो यूज़ करता हूँ, तो ऐसे में आपको ये नहीं लिखना चाहिए था कि अगर बंद हो जाए तो सीखूंगा, आपको अभी से सीखना शुरू कर देना चाहिए। आपका मैसेज और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भुवनेश का मैसेज है, अशोक विहार दिल्ली से, हमारे रेगुलर लिसनर है, कम से कम मेरे पास उनका मैसेज जो है वो हमेशा आता है, सो थैंक यू सो मच। लिखा है कि स्मार्टफोन नहीं होगा फॉर अ डे, और अगर वो दिन आता है और वो दिन मेरे किसी दोस्त के बर्थडे के रूप में आता है, तो मैं वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा, आई जस्ट गोना एंजॉय, क्योंकि उस वक्त मैं फोटोज क्लिक नहीं कर रहा होऊंगा। ये भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम उस मेमोरी को अपने पास सहेज कर रख लें, कैप्चर कर लें, हम उस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय सब कुछ अपने मोबाइल की आंखों से, उस कैमरे की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए साइड में रखकर अपने फ्रेंड्स से, अपने लोगों से बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जोया का मैसेज आ गया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ये मैसेज मैं आपको सुनाऊंगी, शेयर करूंगी इस एक ट्रैक के बाद। टेक इट अवे।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ऑल राइट लिसनर्स, म्यूजिक मस्ती बिल्कुल से 8 बजे शुरू होगा, मैं रहूंगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल वापस आते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें, अभी आते हैं हम मैसेज मसाला मिक्स में और आज की सीरीज में बिल्कुल से बात कर रहे हैं कि एक दिन के लिए आपको गैजेट से दूर रहना पड़े, मोबाइल से दूर रहना पड़े, तो क्या क्या ऐसा है जो कहीं खो गया है, जो कभी आप किया करते थे लेकिन आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका गैजेट प्रेम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ के एक आदत के रूप में आपके सामने आ गया है। तो मैसेज अब पढ़ते हैं हम जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, और लिखा है कि खुदा ने मुझे बहुत ही खूबसूरत चीज़ से या यू नो नियामत से नवाजा है, और वह है कि घर के सामने मेरे पास एक पार्क है और मैं पूरा दिन नेचर में पार्क में बैठकर बहुत आसानी से अपने उस समय को गुजार सकती हूँ। मैं पूरा दिन मोबाइल की शक्ल भी नहीं देखते जब तक यहाँ मुझे यहाँ पर नहीं मैसेज करना होता है। सो दैट इज़ रियली स्वीट ऑफ यू जोया। और नहीं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल हमें और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यू नो ज़रूरी होता है, हमें कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों से कनेक्ट करता है, लेकिन जब एक आदत के रूप में हम कहीं उसको लेकर बैठ जाते हैं तो वो हमें हमारी बाकी सारी दुनिया से अलग कर देता है, और उसी को याद करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। अगला मैसेज जो है हमारे पास शम्सुल कमर राही का है, भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लिखा है कि मोबाइल नहीं होता तो उन फुर्सत के लम्हों में मैं

किताबों में खो जाता हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है किताबें पढ़ने का, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें मोबाइल से पहले छुट्टी चाहिए। मुझे लगता है कि किताबें ऐसी होनी चाहिए, इतना खो जाना चाहिए कि हमें याद ही ना रहे कि हमारे पास ऐसा कोई गैजेट भी है। वेल यहाँ पे जो मेरे पास है कि एक दिन मोबाइल फास्ट ना बहुत दूर की बात है, लोग तो वॉशरूम में भी जाते हैं तो मोबाइल लेकर जाते हैं। सो देवेंद्र पटेल का मैसेज है, देवेंद्र पटेल यूएस से लिखा है ये मैसेज, यूएस लिखा आ रहा है कि लोग तो वॉशरूम में भी लेकर जाते हैं, एक दिन मोबाइल फास्ट रखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी और रोज़ एक घंटा दो घंटा ऐसी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बट दैट्स क्वाइट फनी, थैंक यू सो मच। अगला जो मैसेज है सनी कपूर का है जर्मनी से, क्या बात है, ये जर्मनी यूएस ये मजाक तो नहीं कर रहे आप लोग। सो मैसेज है, मैं तो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बर्तनों की आवाज़ जो है साफ करने, बर्तन साफ़ करने जाऊंगा, बर्तनों की आवाज़ से मैं म्यूज़िक को समझ लूंगा। ये क्या मैसेज है मुझे नहीं समझ में आया, रियली सॉरी अबाउट दैट, बट शायद आपने कुछ ह्यूमर टच देने की कोशिश करी थी। सो अगला जो मैसेज है वो मीना का है, खरगोन मध्य प्रदेश से, उन्होंने लिखा है कि मैं बिज़ी होने के कारण अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाती हूँ, और अगर मैं गैजेट फ्री हो जाऊँ तो इसका मतलब है कि नो सोशल मीडिया और इस फ्री टाइम में मैं सेल्फ केयर करना चाहूँगी। देखिए ये भी एक बड़ी बात निकल कर आई है कि हम अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, हम बैडमिंटन नहीं खेल पा रहे हैं, हम बड़ों के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पोते पोती के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, एंड ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने फ्रेंड्स से मिलने नहीं जा पा रहे हैं, बर्थडेज पर जाते हैं तो हम फोटोग्राफ्स खींचने में बिजी हो जाते हैं, तो फोटोग्राफ के साइड में रखकर हम फ्री होकर इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिस हो रही हैं, और आज हम उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं। सो दिस इज़ रियली रियली रियली ग्रेट। अगला जो मैसेज है वो बहुत लंबा है, तो मैं कहूँगी आप छोटे मैसेजेस लिखिए ताकि मैं उसे साथ साथ पढ़ पाऊँ। तो जब तक मैं इस मैसेज को पढ़ती हूँ कि ये क्या लिख रहे हैं इतनी सारे शब्दों में, तब तक आप सुनिए ये वाला ट्रैक।

0: Hot Girl.
1: Well, listeners, but I'm definitely a good girl and I'm pretty sure about that. Well, जिस मैसेज के बारे में बात कर रही थी उस मैसेज को मैं अभी भी ठीक से नहीं पढ़ पाई हूँ because of some reason. लेकिन गुड्डू धाकर जी जो है उज्जैन से, वो ये लिख रहे हैं कि खेतों में जाएंगे और दाल बाटी बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूरी एक आइटनरी लिख दिया कि अगर मोबाइल नहीं होगा तो मैं ये करने वाला हूँ या मैं वो करने वाला हूँ. तो चलिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि सबको याद हो रहा है, याद आ रहा है कि हम ऐसा क्या क्या है जो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमने कहीं ना कहीं तज दिया है, कहीं ना कहीं छोड़ दिया है. एक और मैसेज आया मेरे पास, बहुत प्यारा सा. नाम इन्होंने नहीं अपना लिखा है, बस ये लिखा है कि मेरी मॉम का नाम भी भारती है. चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है. मैं आपको बता दूँ, जिनका भी नाम भारती है ना, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ट्रस्ट मी. ऐसा मुझे लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता है. जो भी बहुत लंबे लंबे मैसेजेस है ना, उनको मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो अब मुझे ये इशारा कर रहा है कि मुझे जो है इस पूरे हमारे मैसेज मसाला मिक्स को वाइंड अप करना पड़ेगा. लेकिन आप सभी को ये बोलूँगी कि आपने जितने भी मैसेजेस किए हैं ना, उनको आप ज़रूर एक बार खुद से पढ़िएगा, खुद से उन चीज़ों को एक्चुअल में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, वो बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जिनको भी लगा उनका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाई हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, उसके लिए रियली सॉरी. लेकिन हम फिर कभी मैसेज मसाला मिक्स की सीरीज़ में ज़रूर मिलेंगे और आपके मैसेजेस का मुझे इसी तरह से इंतज़ार रहेगा. वेल, स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग. जहाँ पर भी आपको लगता है इस शो में आप मैसेज कर सकते हैं, आप उस शो में ज़रूर मैसेज कीजिए. इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और 7 से 8 के बाद 8 से 9 का जो टाइम है वो आपका मेरे साथ ही रहने वाला है, क्योंकि म्यूजिक मस्ती में मैं आपके साथ रहूंगी और डेफिनेटली कुछ फुट टैपिंग नंबर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी. फिलहाल फिलहाल फिलहाल फिलहाल टेक इट अवे.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: Welcome back to the program. You asked for it on FM Rainbow 102.6 MHz. And the next requested track is all the way from Chennai. RJ Kostov is a regular show host in FM Chennai, and he's tuned into the program and he writes, "Play me the song Street of Dreams by U2. Thank you, Kostov. Hola. ¿Cómo estás? And I'm going to play your requested track. It was released just last month. A very sunny, upbeat song with a classic U2 rock sound. Here goes, Streets of Dreams for Kostov.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Welcome back, dear listeners. 6 more minutes to go, and here is the second last request of the evening. Pet Shop Boys, Where the Streets Have No Name. This is going out for our listener friend, Sumit, in Delhi, Noida.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: And to wrap up this session of You Asked For It, here is a song by Afrik Simon going out for Sudha Patsat in Delhi, Mr. Rajkumar in Trichy, Mr. Ravi Prasad in Hyderabad and all other listeners tuned into this program. Thank you for every request, every dedication and every message. Take care, stay cheerful and come back at 10 p.m. for a session of Music Mix. This is Lipika taking leave for now. Bye-bye.

नमस्ते इंडिया। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देश में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। जब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम अब 2 महीने का समय मिलेगा। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीटर टन प्याज ला रही है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील बालकृष्ण शुक्रे ने आज महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टर्बाइन इंजन पेश किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। नौसेना 31 अगस्त को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत निपुण का जलावतरण करेगी। और अंत में अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमरीकी डॉलर का नया शुल्क प्रस्तावित किया। तो ये थे अब तक के रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: वाणी।
1: ऑलराइट लिसनर्स, तो बिल्कुल से जैसा मैंने आपको बताया था मेरे 6 से 7 बजे के टाइम में शो में कि 8 से 9 बिल्कुल से मैं फिर से आकर आपके साथ जुड़ूंगी, तो बिल्कुल से आ गई हूँ मैं, आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती। वेल लिसनर्स, ये जो हमारा शो है ना म्यूज़िक मस्ती, ये ख़ास तौर से उन हमारे सुनने वालों के लिए है जिन्हें फुट टैपिंग नंबर्स बहुत ऐसे नंबर्स जिन पर वो शायद डांस भी कर सकें या बहुत ज़्यादा उसको इन्जॉय कर सकें, ऐसे नंबर्स हमारे जिन लिसनर्स को पसंद है, तो ख़ास तौर से जिनको पार्टीज़ करना बहुत पसंद है या जिनको एनर्जेटिक सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत पसंद है, तो उनके लिए ख़ास तौर से हमारा ये प्रोग्राम है म्यूज़िक मस्ती। और इसका पहला ट्रैक आ रहा है ये, आई जस्ट होप यू लाइक इट। आपको इसी तरह से मेरे साथ बने रहना है ठीक 8 बजे से ठीक 9 बजे तक, स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग। एंड मैसेजेस नहीं करने हैं क्योंकि ये वाला हमारा शो मैसेजेस के लिए नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ फिर भी किसी न किसी मैसेज के थ्रू अगर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी नहीं होगा। सो आप सुनते रहिए, इन्जॉय कीजिए, एंड आई जस्ट होप आज के सारे ट्रैक्स जो हैं वो आपको पसंद आएंगे।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

All right, listeners, I just hope आपको आज के सारे गाने जो है ना पसंद आए होंगे. म्यूजिक मस्ती में सच में मस्ती आपने की होगी. वेल, इसके साथ एक दो ट्रैक्स और आप सबके लिए इस

अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से $200 अरब की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार ने कहा राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। दिल्ली सरकार ने बताया कि कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद ए मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

समय हुआ है 9:10, प्रोग्राम जिसकी अभी भी शुरुआत हुई है वो है आपकी याद आती रही। बहुत से अच्छे लम्हों को याद कीजिए और ख़ुद को बहने दीजिए इन खूबसूरत गानों के साथ। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी।

0: मैं मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं।

0: 11 बजे मन की बात।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मंगल भवन मंगलहारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: और अगर आपके ऊपर पिछले गाने का असर गहरा हो गया है तो आप सबके लिए ये गाना।

और अब बजने को है 10, यानी अब आपके साथ होंगी लिपिका दास। प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का। मैं आपसे मिलूंगी ठीक एक घंटे बाद, तब तक आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की हमेशा बदलती रहने वाली धुनों को। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से एक घंटे के लिए बाय।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: Ariana Grande's latest song there, Hate That I Made You Love Me, from her album Petal. Well, a change of pace now from contemporary pop to classical. Before we finish the hour on a very high note with some foot tapping music, here's a composition called Hosanna by Placido Domingo. And this is going out for some of our listeners who have been waiting to listen to one classical piece. Thank you, Mr. Ravi Prasad from Hyderabad. And also Mr. Raj Kumar is also tuned into the program. This composition coming up right after a very tiny break.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है. सेल

एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से $200 अरब की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद ए मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

समय हुआ है 11:09 और हम आ पहुँचे हैं गज़लों की गलियों में आकाशवाणी के FM रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी, प्रोग्राम रंगे महफिल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और ये गजल उनके लिए जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए अपने होश को बेहोश हो जाने दिया। FM रेंदू पर आप सुन रहे हैं गजलों का प्रोग्राम।

0: अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में पंकज उदास का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज मेरी गज़ल गायकी के 25 साल के इस सफ़र का जश्न है और आज न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं आप सब से बातें करूं, ढेरों सारी बातें करूं, दिल की बातें, अपने इस गज़ल के सफ़र की बातें, अपनी ज़िंदगी के बारे में, साज और सुर, गज़ल और नगमा जो मैं आपके सामने पेश करते आया हूं, उसके बारे में बातें करूं। किसी एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि आज की रात नहीं शिकवे और शिकायत के लिए, आज की रात नहीं शिकवे और शिकायत के लिए, आज की रात बहुत देर के बाद आई है। पहली गज़ल जो मैंने आपके सामने पेश की वो मेरा पहला एल्बम सन 1980 में आहट के नाम से आपके सामने मैंने पेश किया था, उस एल्बम से थी। और उसी ज़माने में यानी 1980 में मुझे एक हसीन साथी मिला जो आज भी मेरा जीवन साथी है, आपके दरमियान और मेरे सामने बैठी हुई फरीदा जो मेरी शरीके हयात है, जो मेरे जीवन साथी है। और आज बहुत खुशी है कि आहट के 25 साल और मुझे आपसे मेरा जो तारुफ हुआ उसके भी 25 साल हुए। 1981 में मेरा एक दूसरा एल्बम आया जिसका उन्वान था मुकर्रर। मुकर्रर मेरे दिल के बहुत करीब है। मुकर्रर एक ऐसा एल्बम है कि जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी मुझे याद है कि जिस दिन मुकर्रर रिलीज़ हुआ मेरे वालिद, मेरे पिता अस्पताल में थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। मैं अस्पताल पहुंचा, मैंने उनको, उस ज़माने में आप जानते हैं लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स आते थे, मैंने लॉन्ग प्ले दिखाया उनको। उनको जब रिकॉर्ड दिखाया तो वो बहुत खुश हुए। मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में कोई एक चमक, एक रोशनी सी मैंने महसूस की, मुझे नज़र आई। मुझे ऐसा लगा कि उनको ये एहसास हुआ कि मेरा जो बेटा है उसने ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल किया है। उसी रात एक कॉन्सर्ट था जिसका उन्वान ख़जाना के नाम से जो कॉन्सर्ट होता था, उस कॉन्सर्ट में मैं शरीक हुआ। मैं गा रहा था, उस वक्त मुझे ये खबर मिली कि वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बड़ी कश्मकश थी, लेकिन मैंने वही किया जो हर कोई फनकार करता है और जिसको करना चाहिए। एज दे से इन इंग्लिश के द शो मस्ट गो ऑन, मैंने वही किया। और जब मैं अस्पताल पहुंचा वापस कॉन्सर्ट ख़त्म करके, तो वालिद साहब के साथ चंद लम्हे मुझे गुजारने का मौका मिला। तो ये गज़ल मैं मेरे पिता, मेरे वालिद को समर्पित करना चाहूँगा, डेडिकेट करना चाहूँगा। जनाब कैसरुल जाफरी का कलाम है।
1: देखिए पंकज उदास साहब की आवाज़ चाहे गज़ल सुनाए न सुनाए कानों को खूबसूरत ज़रूर लगती है। और अब उनकी आवाज़ के बाद आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को।
2: एक ऐसी आवाज़ जो हर शख्स की पर्सनल

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

चलिए दौर तो चलता रहेगा, लेकिन अब समय मुझे वो दौर दिखा रही है जब मुझे आपसे लेने होगी इजाज़त, पर आपको रेनबो से जाने की कहीं इजाज़त नहीं है क्योंकि खूबसूरत गानों का दौर अभी जारी है। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर, मुझसे आपकी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी कभी बात। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की कभी कभी बेसुरी हो जाने वाली धुनों पर। प्रगति वारी की तरफ से बाय बाय।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर्स से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय हो रहा है रात के 12:02 और 35 सेकंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आवर शो। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। ये कुछ खूबसूरत से गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय हाय,
1: तेरी तेरी

0: की नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बब्बल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

साथियों, आशा है ये गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। कार्यक्रम जीरो आर शो अब यहीं संपन्न होता है। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हेमा मेरा आपके साथ होंगी 1 बजे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को

भारती के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नई दिल्ली को दिल्ली में कल जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने कार्यशाला को संबोधित किया। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। और अंत में कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल FM Rainbow प्रोग्राम सुहानी रात के साथ। जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि सत्र की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने कार्यशाला को संबोधित किया। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, हमारे साथी सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:03:10। और लीजिए साथियों, अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ प्यारे से गीत जो आज भी हर दिल पर राज कर रहे हैं। तो आना लीजिए इन गीतों का नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक में। मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: कसम, खाओगे ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम, आऊंगा।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

श्रोताओं, आशा है आपको ये गीत ज़रूर पसंद आए होंगे। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भुलाए ना बने अब यहीं समाप्त होता है। अलमास रज़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 3 बजे हिमा मेरा आपके लिए लेकर आएंगी समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने कार्यशाला को संबोधित किया। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। और अंत में खेल जगत में, कोलंबो क्रिकेट स्टेट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। ये थे अब

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि सत्र की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी, जिसके तहत हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना। और अब खेल समाचार। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय आपको बताए देते हैं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 4:03:42 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सारेगामा। तो सारेगामा कार्यक्रम शुरू करते हैं मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। और कैसे हैं आप? तो लीजिए आनंद लीजिए इन खूबसूरत से गीतों का।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: चेहरे बदल जाते।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

जी हाँ साथियों, जिंदगी नाम है जिंदा दिली से जीने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे सारेगामा। इसके साथ ही कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपके साथ होंगी 5 बजे हेमा मेहरा।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इसके तहत हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही स्थिति रहने की संभावना। और अंत में कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय प्रातः के 5 बजकर और ठीक 4 मिनट हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुल